बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप ले रहे।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

खुल। दोस्तों, आदिशक्ति को सनातन, निराकार, परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास, नजरों से देखें तो कण कण में और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मशरू सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए

आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं।

0: वहाँ संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार।

बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाए समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

0: शेरवाली भजन को आवाज दे रहे थे समीर मुंबई से।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम शिव भक्ति धारा, और इस भक्ति धारा की सुरीली सिंगर हैं अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से। शिव भजनों के साथ अलका उपाध्याय को सुनते हैं इस खास प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

कोटि कोटि दिगंबरा। आप सुन रहे हैं अलका त्रिपाठी को। शिव भक्ति धारा प्रोग्राम में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।

मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा न कोई दूजा। और जिस मत में सत्यम शिवम सुंदरम बसते हैं वो मंदिर ही हो सकता है। और हम इस सावन में मन

ओम नमः शिवाय। शिव का नाम ले सुबह ले चाहे शाम ले। ओम नमः शिवाय ले इसके सिवाय

शिव भक्ति धारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अलका उपाध्याय की आवाज में। कोलकाता और वेस्ट बंगाल से हमारे साथ इन प्यारे से शिव भजनों के साथ अलका उपाध्याय।

ओम नमः शिवाय। अलका उपाध्याय की आवाज भक्ति धारा प्रोग्राम में शिव भजनों के साथ आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। अलका उपाध्याय की आवाज शिव भजनों की पहचान।

बम बम भोले और उसकी शरण में हम सभी, और ये शरणागत के गीत लेके आई अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से, प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

0: बम बम भोले की शरणम, शिव शंकर की शरणम और शिव सदा सहाय रहे। आपने सुना प्रोग्राम शिव भक्ति धारा और इसे अपने स्वर में प्रस्तुत कर रही थी जयपुर रेडियो की बहुत ही सुरीली सिंगर अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से। बहुत आभार धन्यवाद। जय शिव शंकर भोलेनाथ।
1: मानसून अपनी जवानी की रवानी पर है, बारिश का मौसम भीगा तन बदन, जमीन को रपट जाए तो हमें ना कहिए। आइए पहले गीत में मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मानसून एपिसोड को मैं लेकर आ गई हूँ आरजे भूमिका और मेरे साथ अपने सुरीले साथियों के साथ अर्जु रानू 16। पहले गीत में अर्जु रानू के साथ राजा गा रहे हैं गीत आज रपट जाए तो आगे उन्हीं से।

मौसम की आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, रुमानी मौसम का जादू है या बारिश की जवानी का आगाज है। अपने सुरीले स्वरों में सजा रहे थे राजा और जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आपकी आवाज को पहचान देने वाला ये मंच हर रात 8 बजे लेकर आता है सुरीले दो गानों का ये प्रोग्राम। और अब सुनते हैं जादू भरी आवाजों में ये अगला गीत।

0: गीत को ज्वाइन करें।
1: महान ऐसा मवाल हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आप कहीं नहीं होंगे, आपकी जमा आवाज जयपुर रेडियो पर होगी और आप जयपुर रेडियो के साथ होंगे। महालेसम और अर्चू रानू की आवाज में हमने सुना ये मशहूर सुरीला गीत। यादों के गुलदस्ते लेके आने वाले इस खूबसूरत गीत में अर्चू रानू का साथ दे रहे हैं इस मंच के अगले सिंगर। आइए सुने अर्चू रानू के संग इस अगले गीत को। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा एपिसोड में, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: अरे अरे

बबलू आर्य साथ गा रहे थे अर्जू रानू के गीत आज रपट जाए तो। भई मौसम बारिश का है, जमीन भी भीगी है और इस मौसम की पहली बरसात भी है। ऐसे में झूमते गाते मन के साथ आप सुन रहे हैं सुरीले गीतों की सौगात। आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। बबलू आर्य और अर्चुरानू के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत।

विशाल शर्मा जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चु रानू के संग आवाज में आवाज मिला रहे थे प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। दिल को देने की बात, दिल की सौगात, अपनी महबूबा के नाम इस गीत में हमने सुना। और दिल का फैसला भी खुद ब खुद ही करने वाले हैं, ओ मेरी जाने जा कहो या महबूबा कहो। विशाल शर्मा और अर्जुन रानू के संग हमने सुना ये सुरीला दो गाना। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस प्रोग्राम में आज आपने जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर के साथ अब तक चार सुरीले सिंगर्स को सुना। आप अपनी समझ और सोच के हिसाब से अपना फीडबैक सबसे सुरीले सिंगर के लिए सेंड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर। और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत स्मूलियन के साथ अर्ज।

360 के साथ अर्जु रानू को सुना आपने, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो। और हम भी यही कहेंगे कि अगर आपका गीत हो दो गाना तो अर्जु रानू के संग हो। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस सुरीले मंच पर आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आपके फीडबैक हमें जरूर प्रेषित करें। और हाँ, जिन सिंगर्स ने इस प्रोग्राम के तहत अपने सॉन्ग सेंड किए हैं उनका भी नंबर जल्द ही आने वाला है। उम्मीद है आरजे भूमिका और अर्जु रानू का संग इस प्रोग्राम में आपको भाया होगा। इसी के साथ आज के एपिसोड से विदाई, नमस्कार। मॉनसून अपनी जवानी की रवानी पर है, बारिश का मौसम भीगा तन बदन, जमीन को रपट जाए तो हमें ना कहिए। आइए पहले गीत में मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मॉनसून एपिसोड को मैं लेकर आ गई हूँ आरजे भूमिका, और मेरे साथ अपने सुरीले साथियों के साथ अर्जु रानू 16। पहले गीत में अर्जु रानू के साथ राजा गा रहे हैं गीत आज रपट जाए तो आगे उन्हीं

मौसम की आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, रुमानी मौसम का जादू है या बारिश की जवानी का आगाज है। अपने सुरीले स्वरों में सजा रहे थे राजा और जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आपकी आवाज को पहचान देने वाला ये मंच हर रात 8 बजे लेकर आता है सुरीले दो गानों का ये प्रोग्राम। और अब सुनते हैं जादू भरी आवाजों में ये अगला गीत।

0: चीज को ज्वाइन करें
1: आवाज जयपुर रेडियो पर होगी और आप जयपुर रेडियो के साथ होंगे। महालेसम और अर्चू रानू की आवाज में हमने सुना ये मशहूर सुरीला गीत। यादों के गुलदस्ते लेके आने वाले इस खूबसूरत गीत में
2: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर भूमिका सुनते हैं क्या गा रहे हैं अनुराग। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मंच के मेल सिंगर अनुराग।

0: प्यार।
1: अनुराग कह रहे हैं हम ना करेंगे प्यार, अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी बात, अपना अपना राग, अपना अपना आलाप। आइए सुनते हैं अगले गीत में क्या कह रहे हैं अनुराग।

देखो भूमिका देख लेना। पहले कहा था हम न करेंगे प्यार, और फिर कह रहे हैं प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे और गाते जाएंगे इस मंच पर जिसका नाम है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। आपने सुना अनुराग से ये सुरीला सॉन्ग। और प्यार करने के नाम से ये जमीन गाने लगी, आसमां गाने लगा और साथ पूरा जहां गाने लगा। तो हम भी गाएं और सुने अनुराग के इस अगले गीत को।

0: और अब हो चला है इस प्रोग्राम से विदा लेने का समय। तो अर्चुरानु 16 और अनुराग दोनों का आभार। सुनते रहे जयपुर रेडियो बार बार। प्रोग्राम में आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा।
1: जयपुर रेडियो पे गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम को सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं अमीषा पटेल वडोदरा गुजरात से लेकर आ गई हूँ गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम का एपिसोड नंबर 10। और मेरे साथ है आजय देवेंद्र जी। आजय देवेंद्र जी का मैं स्वागत करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे साथ इस एपिसोड को कंडक्ट कर रहे हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं इस एपिसोड को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी मेरा साथ देने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद अमीषा जी मुझे आपके साथ शामिल करने के लिए, और मैं आभारी हूँ गाता रहे मेरा दिल का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं जयपुर रेडियो में आपका साथ दूं और इस खास प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। थैंक यू सो मच।
1: जैसे कि हमने एपिसोड 9 में भी बताया था कि हमने 19 जुलाई में जो इवेंट हुई थी जिसका थीम था रेन सॉन्ग्स, हमने एपिसोड 9 भी उसी सॉन्ग्स में से लिया था और एपिसोड 10 भी हमने उसी इवेंट के सॉन्ग्स से लिया है। तो श्रोतागणों को एपिसोड 10 में भी सारे रेन सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। तो आशा करती हूँ आप सबको ये हमारी थीम भी पसंद आएगी और ये एपिसोड भी। मैं गाता रहे मेरा दिल के श्रोतागण और जयपुर रेडियो के श्रोतागण से ये बात कहना चाहूँगी कि हमारा अगला प्रोग्राम यानी कि गाता रहे मेरा दिल इवेंट जो कि वडोदरा में नेक्स्ट होने वाला है वो 6 सितंबर को हो रहा है वास्तविक ऑडिटोरियम में। ये हमारा ऑडिटोरियम में पहला शो है और इसे देखने के लिए सभी श्रोतागण आमंत्रित है क्योंकि इसमें हमने कोई चार्जेस नहीं रखे हैं सुनने के लिए। तो आप सभी जो जयपुर रेडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, गुजारिश है कि 6 सितंबर को वास्तविक ऑडिटोरियम वडोदरा में हमारे जो इवेंट होने जा रहे हैं शाम 4 बजे से 8 बजे का टाइम है और हमारे सिलेक्टिव सिंगर्स उसमें गा रहे हैं। तो आप सभी उस प्रोग्राम को सुनने के लिए ज़रूर आए। जो बड़ोड़ा में रहते हैं वो तो आए ही, लेकिन अगर कहीं और से भी कोई आ पा रहा है सुनने के लिए तो ज़रूर शामिल हो इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। तो आप सबका स्वागत रहेगा 6 सितंबर वास्तविक ऑडिटोरियम शाम 4 बजे से 8 बजे तक। चलिए तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कुछ अलग तरीके से इस बार। जी हाँ दोस्तों, इस बार पहली बार हम लेकर आ रहे हैं गाता रहे मेरा दिल का थीम सॉन्ग जो कि हम हर इवेंट की शुरुआत में गाते हैं। जब भी हमारी इवेंट होती है ये गाना हम सबसे पहले गाते हैं। गाता रहे मेरा दिल का जो टाइटल ट्रैक है वो हमारा थीम सॉन्ग है और हर बार कुछ अलग तरीके से थीम सॉन्ग को प्रस्तुत करते हैं। कभी हम दो ऑर्गेनाइजर मिलकर गाते हैं, कभी हमारे रेगुलर सिंगर्स को भी इसमें शामिल करते हैं। तो 19 जुलाई को जो इवेंट हुई थी इसमें हमने 5 लोगों ने ये थीम सॉन्ग गाया था जिसमें मिस फाल्गुनी, मिस्टर चिराग, मिस निशी, मैं यानी कि अमीषा और मिस्टर जीत वाधवा। तो चलिए सुनते हैं इस खूबसूरत गाने को जो कि हमारा गाता रहे मेरा दिल का थीम सॉन्ग भी है और मुझे बेहद खुशी है कि इस बार पहली बार हम ये थीम सॉन्ग लेकर गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम पे जयपुर रेडियो पे आए हैं। तो आशा करती हूँ श्रोतागणों को ये हमारी कोशिश अच्छी लगेगी और मजेदार भी लगेगी। तो चलिए सुनते हैं गाता रहे मेरा दिल थीम सॉन्ग।

क्या बात है, क्या बात है। गाता रहे मेरा दिल के 10th एपिसोड में आपने ये पहला धमाका किया है जो थीम सॉन्ग को चुना है। फाल्गुनी जी, चिराग जी, निशी जी, जीत वाधवा जी और आप खुद अमीषा जी, क्या जबरदस्त गाया है आपने। चलिए हम आगे वाला गीत सुनते हैं जो लॉफर फिल्म से लिया गया है और इसे रफी साहब ने गाया था। आनंद बच्चे के लिखे इस गीत को लक्ष्मी प्यारे ने संगीतबद्ध किया था और गीत के बोल है आज मौसम बड़ा बेईमान है। आइए सुनते हैं हम इसे अनिल जी की आवाज में।

क्या बात अनिल जी, बहुत ही खूबसूरत आवाज आपकी और उतना ही खूबसूरत अंदाज रहा गाने का। बहुत ही मजा आया सुनने में इस बारिश के गाने को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे गाने की तरफ। ये जो गाना लेकर आ रही है मिस योगिता। योगिता जी हमारे गाता रहे मेरा दिल इवेंट में पहली बार आई थी और बेहद ही खुशी है कि उनको हमारी इवेंट भी पसंद आई और हमें भी उनकी गायकी उतनी ही पसंद आई। तो इस बार जो गाना हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं योगिता जी की आवाज में, वो है हाय हाय ये मजबूरी। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना है, रोटी कपड़ा और मकान मूवी से लता जी का गाया हुआ। तो चलिए सुनते हैं योगिता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना।

भाई क्या बात है योगिता जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है। सब दर्शकों ने इस गीत को सुना और वाह वाह किया है। आइए सुनते हैं हम मधुर सुल्तानपुरी साहब का लिखा यह गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और मुकेश जी का गाया हुआ। मंजीत इस गीत को गा रहे हैं और गीत के बोल हैं, तोबा ये मतवारी चाल झुक जाए फूलों की डाल। बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं हम मंजीत जी की आवाज में।

0: यू।
1: क्या बात, वाह मंजीत जी, मजा आ गया सुनने का। इस गाने को आपने बेहद ही खूबसूरत तरीके से गाने को निभाया, गाया। आशा करती हूँ श्रोता गणों को भी उतना ही मजा आया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और ताल से ताल मिलाते हैं ज्योति जी की आवाज में। जी हाँ दोस्तों, ज्योति जी हमारे ग्रुप की रेगुलर सिंगर है, मेंबर है, और आपने उनको पहले भी सुना होगा जयपुर रेडियो प्रोग्राम में। इस बार वो एक बहुत ही खूबसूरत रेन सॉन्ग को लेकर आ रही है, ताल से ताल मिला, जो कि ताल मूवी से है और मजेदार गाना है और मजेदार सिंगर भी है। तो चलिए सुनते हैं इस खूबसूरत गाने को।

0: जी, आपने तो ताल से ताल मिला ली है और अपने सुरों को और जादू के रूप में बिखेर दिया है। सभी श्रोताओं के दिलों पर ये गीत राज करेगा।
1: ताल से ताल मिला,
0: बहुत खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं प्रमोद जी से निगाहें फिल्म का एक गीत, जिसे आनंद बख्शी साहब ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने संगीतबद्ध किया और इसे मोहम्मद अजीज ने गाया है। बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं प्रमोद जी से।

वाह प्रमोद जी, क्या खूबसूरत गाना सिलेक्ट किया है आपने। एक हटके गाना जो जनरली किसी कैरियोके मीट में हमने सुना नहीं है या सुनने को नहीं मिलता है जल्दी से। लगता है ये हमारी थीम का असर है कि कुछ हटके गाने चुने गए हैं रेन सॉन्ग्स के लिए। तो ये गाना भी वैसा ही था और आपने इस गाने को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया, इसलिए सुनने का भी उतना मजा आया और उम्मीद है हमारे श्रोतागणों ने भी इसे एंजॉय किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले गाने की तरफ, जो है खिलते हैं गुल यहाँ। जी हाँ दोस्तों, इस गाने में बारिश तो हो रही है लेकिन बर्फीली बारिश है। जी हाँ, तो इसमें जो बर्फीला मौसम है और जो स्नोफॉल है उस वजह से इसको भी हमने बारिश के गानों में काउंट किया है। और ये गाना लेकर आ रहे हैं विनोद जी, जो कि हमारे ग्रुप में बहुत ही रेगुलरली गाते भी है और एक बढ़िया सिंगर है। तो किशोर कुमार जी का गाया हुआ शर्मिली मूवी से गाना खिलते हैं गुल यहाँ, चलिए सुनते हैं विनोद जी की आवाज में।

उफ विनोद जी, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने इस गीत को गुंजायमान किया है हमारे जयपुर रेडियो के मंच से। दोस्तों, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाता रहे मेरे का, गाता रहे मेरा दिल का 10th एपिसोड। आइए हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अर्लिन से एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो सुबह मुद्गल के एल्बम से लिया गया है, आपके सावन ऐसे बरसे। बहुत खूबसूरत गीत है और गीत को सुनाने के लिए आ रही है अर्लिन, आइए सुनते हैं।

वाह अनिल जी क्या बात, सुबह मुग्दल का गाना और इस बेहतरीन तरीके से निभाना, सच में आपने एक मुश्किल काम करके दिखाया है और हमें बेहद खुशी है कि आप हमारी इवेंट में उदयपुर से आई और इस खूबसूरत गाने को गाया निभाया और हमने इसे जयपुर रेडियो में प्रस्तुत किया। तो आपको बहुत सारी बधाई इस गाने को गाने के लिए और निभाने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जो कि प्रोग्राम का आखिरी गाना है और इस खूबसूरत गाने को गाया है मिस्टर जवाहर ने। जवाहर जी भी बहुत अच्छे सुरीले सिंगर है और जो गाना वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है बरखा रानी जरा जम के बरसो। जी हाँ दोस्तों, मुकेश जी का गाया हुआ ये खूबसूरत रेन सॉन्ग है। तो चलिए सुनते हैं जवाहर जी की आवाज में अगला गाना।

0: डिजिटल भविष्पट का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है वो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं गाता रहे मेरा दिल का 10th एपिसोड। मेरे साथ है अमीषा पटेल जी और मैं हूँ आरजे देव, आप सबका जाना पहचाना।
1: थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत आज का ये सफर रहा गाता रहे मेरा दिल का, जिसे हमने 10th एपिसोड के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत किया। मैं हूँ आरजे देव और मेरे साथ अमीषा पटेल जी। अमीषा जी क्या कहते हैं
2: कार्यक्रम के अंत में? मैं सभी सिंगर्स जो कि गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम में अब तक गा चुके हैं उन सभी सिंगर्स का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने अपनी गायकी से इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए हैं। और मैं जयपुर रेडियो के श्रोतागणों का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए। साथ में मैं आरजे देवेंद्र जी का शुक्रिया करती हूँ मेरे साथ इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करने के लिए। जयपुर रेडियो के जो भी टीम मेंबर है, जयपुर रेडियो जो चलाते हैं, जैसे कि हरिशंकर व्यास जी हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से जयपुर रेडियो से जुड़ने का मौका देने के लिए। और आशा करती हूँ आगे भी हम इस तरह से जुड़े रहेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे ऑर्गेनाइजर मिस्टर जीत वाधवा का जो कि ये पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करने के यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो भी मदद की जरूरत रहती है उसमें मेरी मदद करते हैं। और साथ में हम पूरा जो टीम वर्क करते हैं, एक तरह से ये पूरा जयपुर रेडियो और गाता रहे मेरा दिल का टीम वर्क है। इसमें जो जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो धन्यवाद श्रोतागण इस एपिसोड को सुनने के लिए। जल्द ही मिलते हैं हम दूसरे प्रोग्राम में। धन्यवाद।
3: आपने सुना प्रोग्राम गाता रहे मेरा दिल, और आइए अब सुनते हैं मनमोहन सिंह रावत की आवाज में ये सुरीला नगमा।

जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। और ये सुरीला गीत गा रहे थे जयपुर रेडियो के सुपर सिंगर मनमोहन सिंह रावत। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। प्रस्तुत है प्रोग्राम सुपर सिंगर, और सुपर सिंगर प्रोग्राम में आज की सुपर सिंगर आई है पुणे महाराष्ट्र से, श्वेता नायर त्रिवेदी। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन आपका। आपकी आवाज आपकी पहचान।

लेकिन हम जानते हैं, आप सुन रहे हैं श्वेता नायर त्रिवेदी की आवाज और जयपुर रेडियो की जानी पहचानी आवाज। आपकी आवाज, आपकी पहचान, बैरी पिया, बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने कैसे कहूं, कैसे कहूं। और ये कह रही थी अपनी सिंगिंग के माध्यम से श्वेता नायर त्रिवेदी। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, और आज इस मंच पर जिसका नाम है सुपर सिंगर्स, और आज की सुपर सिंगर मेहमान है श्वेता नायर त्रिवेदी, पुणे महाराष्ट्र से। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

समय का ये पल थम सा गया है। सच में श्वेता, आपके गीतों को सुनने के लिए शायद समय भी कुछ देर के लिए रुक गया है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, और हमने तो गीत से पहले कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं वो अपने फीडबैक दे रहे हैं और कह रहे हैं आप बहुत ही शानदार गा रही हैं, आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम सुपर सिंगर, और आज की मेहमान सुपर सिंगर श्वेता नायर त्रिवेदी।

अपनी आवाज की नूर की रोशनी लेके इस मंच पर आज उपस्थित है श्वेता नायर त्रिवेदी। आपकी आवाज आपकी पहचान। पुणे महाराष्ट्र से हमारे संग आज की मेहमान सुपर सिंगर श्वेता नायर को आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम सुपर सिंगर में हमारे संग हमारे साथ इस मंच पर श्वेता नायर त्रिवेदी अपने सुरीले गीतों के साथ। आपकी आवाज आपकी पहचान।

अभी तो हम ये कहेंगे कि अभी आप गाओ और अभी हम सुने, हमारे श्रोता सुने कि आपके गीतों ने हमारा दिल जीत लिया। आपकी आवाज, आपकी पहचान सुपर सिंगर जयपुर रेडियो की श्वेता नायर त्रिवेदी अपने खूबसूरत गीतों के साथ। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। अगले गीत में फिर एक बार श्वेता नायर त्रिवेदी।

ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, और हम ये कहेंगे कि ये दिल सुन रहा है आपके सुरीले गीतों की जुबान। हमारे संग हमारे साथ श्वेता नायर त्रिवेदी, आपकी आवाज आपकी पहचान अपने सुरीले सॉन्ग्स के साथ। अगले गीत में फिर एक बार श्वेता नायर।

बहुत सच कहा आपने, आपकी आवाज में जादू भी है और नशा भी है, और ये चीज हमारे श्रोता महसूस भी कर रहे हैं। सुरीली आवाज की धनी हमारी आज की सुपर सिंगर श्वेता नायर त्रिवेदी को सुन रहे हैं आप। आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: और हमारे श्रोता और हम कहेंगे कि श्वेता तू थोड़ी देर और ठहर जा, तो आप ठहर जाएंगी। और यदि समय होता तो सच में आप ठहर जाती और हमें और गीत सुनाती। आपने सुना जयपुर रेडियो का प्रोग्राम सुपर सिंगर, और आज की सुपर सिंगर रही श्वेता नायर त्रिवेदी। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए आप सुनते हैं एक कहानी, सुगिया फुलवा। कहानीकार हैं विद्या सिंह।
1: कहानी का शीर्षक है सुगिया फुलवा। ध्यान नहीं आता पहले पहल उसे कब और कहां देखा था, किंतु जब से होश संभाला कभी इसके कभी उसके और अपने घर नियमित रूप से देखा। उसके चेहरे के वर्णन के लिए कुरूप शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे सीमित शब्दकोश में दूसरा शब्द है भी नहीं। मोटी मोटी झुर्रियों से भरा लंबोतरा चेहरा, दांत इक्के दुक्के, मिचमिचाती आंखें, थोड़ी थोड़ी देर में वह निचले होंठ को अंदर खींचती जैसे मुंह से गिरती लार को रोकने की कोशिश करती हो। गोद के बच्चों को डराने के लिए माएं कहती, सो जाओ नहीं तो अभी सुगिया से पकड़वा दूंगी। इस तरह सुगिया दिन रात सेवा में हाजिर रहती, दिन में साकार और रात में निराकार रूप में। 2 जून की रोटी जुगाड़ने में उसे न जाने कितने दरवाजे अगोरने पड़ते। उसकी रिरियाती हुई आवाज न मालूम प्राकृतिक थी या निरीहता वश वैसी हो गई थी, अनुमान से परे है। कुछ भी बोलने में वह अत्यंत संकुचित हो जाती। संभवतः उसे कोई बीमारी जरूर रही होगी, उसकी लार उसके वश में नहीं थी। एक बार तो उसकी इस आदत ने एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। हुआ यों कि वह पीतल के गगरे में पानी लेकर मेरे ओसारे में गोबर डाल रही थी। गोबर को गगरे के पानी से पतला करती और ओसारा लीपती हुई पीछे ही पीछे खिसकती जाती। अचानक लार गगरे में टपक पड़ी। चश्मदीद गवाह बने राघव भैया, उन्होंने गगरा भुसौरे में छिपा दिया। शाम को पानी भरने के लिए जब मनई कहार ने गगरा ढूंढना शुरू किया तो हड़कंप मचा। अड़ोस पड़ोस में पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। अंततः भैया ने गगरा भुसौरे से निकालकर प्रत्यक्ष कर दिया, साथ ही एक विस्फोट भी किया कि अब यह गगरा कुएं में डालने लायक नहीं है, इसमें सुगिया का लार गिर गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। स्थिति भांपते हुए माँ ने भैया को आंखें तरेरी, ये तो है धोखा भयल हो, इतना छोट मुंह के गगरा में लार कैसे गिर जाई। भैया अपनी बात पर अड़े रहे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। खैर, दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। माँ रसोई से उपली के ऊपर रखकर जलते हुए अंगारे ले आई और उन अंगारों को गगरे में डाल दिया। आग सब कुछ के पवित्र कह दे ले, मनई लिया एके माज के भरा पानी, अब गगरा फेंक थोड़े जाइए। अति की हद तक छुआछूत मानने वाली माँ का सहज समाधान उसकी प्रत्युत्पन्न मति की गवाही दे रहा था। दोबारा वह प्रसंग किसी की जवान पर नहीं आया, सुगिया का आना पूर्ववत बना रहा। उसकी आदत थी या तो वह कहीं काम कर रही होती या मेरे घर के ओसारे में उकड़ू बैठी आदेशित होने का इंतजार करती रहती। गांव में सभी जानते थे सुगिया कहाँ मिलेगी, जिसे जब जरूरत होती आकर बुला ले जाता। उसका बेटा फुलवा भी उसके साथ आता और ठाकुरों के घर के छोटे मोटे काम कर देता। किसी के पशु को चारा डाल देता या गोबर साफ कर देता। स्कूल का मुंह तो उसने शायद ही कभी देखा हो। दोपहर में माँ बेटे मढ़ई में चारा काटने की मशीन के बगल में बची थोड़ी सी जगह में कपड़े में बंधी रूखी सूखी रोटी पानी से निगलते। माँ दयावश अक्सर उसे कभी अचार कभी गुड़ दे देती, लेकिन वसूली करना भी न भूलती, ले रोटी खाए के उसरसो पीट दे। मौसम के अनुसार काम लेने में माँ माहिर थी। आबनूसी रंग की सुगिया का गोरा चिट्टा बेटा देखकर यकीन नहीं होता था यह सुगिया के कोख में पला होगा। सुगिया कभी ससुराल भी गई होगी, नहीं तो उसका बेटा कहाँ से आता। वह इतनी समर्थ तो थी नहीं कि जमाने को ठेंगा दिखाकर कुंवारी माँ बन जाती। वह बहुत पहले की बात होगी, मेरे होश संभालने से बहुत पहले की बात। मैंने कई बार देखा फुलवा अरंडी के पत्ते पर रखकर बासी रोटी को नमक प्याज से खा रहा होता। सुगिया टुकुर टुकुर उसे खाते हुए निहारती रहती, जैसे निवाला फुलवा के मुंह में नहीं खुद सुगिया के मुंह में जा रहा हो। उस समय सुगिया और उस गौरैया में कोई फर्क न लगता जो चोंच में दाना भरकर अपने चूजे को खिलाती है। माँ के ही मुंह से कभी सुना था, फुलवा 2-3 साल का था जब सुगिया के पति ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। विवाह के इतने दिनों बाद क्यों निकाला आज सोचती हूँ। एक कोठरी उसके माँ बाप ने उसे दे दी थी जिसमें दोनों महतारी पूत रहते थे। जब तक माँ बाप रहे तब तक तो ठीक था, उनके आंख मूंदते ही भाई भौजाई तरह तरह से तंग करने लगे कि किसी तरह कोठरी खाली कर दे। यह भी पक्की जान, कितनी बार उसके बर्तन चोरी गए, पकती दाल में भौजाई नमक झोंक देती, पर कोठरी नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। हार कर भाई ने घर के पिछवाड़े की खाली जमीन पर एक छप्पर डलवा दिया और सुगिया ने मिट्टी खोद खोद कर 4 कच्ची दीवारें भी खड़ी कर ली। इस तरह बन गया था माँ बेटे का आशियाना। भौजाई को फिर भी चैन कहाँ था, वह सुगिया को निकालने के नए नए तरीके आजमाती, लेकिन सुगिया मोर्चे पर डटी रही, उसने हार नहीं मानी। अब फुलवा भी कुछ बड़ा हो गया था, काम भी उसे मिलने लगा था। कभी पहलवान मामा की हलवाही करता, कभी चिरकुट नाना के खेतों में हल के पीछे पीछे बीज डालता, कभी मोटक भैया की भैंस नहलाने नदी ले जाता। गरज यह कि साल भर उसके काम की जुगत भीड़ ही जाती, पूरा गांव उसका ननिहाल था। उम्र के हिसाब से मामा नाना भैया नानी मामी भौजी बहन का संबोधन वह स्वयं चुन लेता। फुलवा जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका रंग रूप और निखरता गया। ठाकुर टोले का शायद ही कोई लड़का इतना हृष्ट पुष्ट हो जितना फुलवा। नहीं बदली तो उसकी आवाज, उसकी उम्र के लड़कों की आवाज में भारीपन आ गया था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी बारीक लड़कियों सी थी। बच्चे उसका खूब मजाक बनाते और बात बेबात तरह तरह से छेड़ते। कई बार तो सुगिया चिढ़कर उन्हें गालियां तक दे देती, लेकिन बच्चे मुफ्त का मनोरंजन कहाँ छोड़ने वाले थे। अब फुलवा की उम्र शादी लायक हो गई थी। जहाँ उसके हम उम्र ठाकुरों के सौदे लड़कों के लिए देखुए मोटी रकम के साथ कन्या देने को उतावले रहते, फुलवा की उसकी बिरादरी का कोई लड़की देने को राजी नहीं था। सुगिया आए दिन गांव में नई नई बहुओं को देखती तो उसके दिल में अरमान मचलने लगते। अरमान बेटे के सिर पर सेहरा देखने का, अरमान आंगन में बहू के पैरों की रुनझुन सुनने का। कई साल इंतजार करने पर भी जब देखुए उसके दरवाजे पर नहीं आए तो वह निराश होने लगी। अब गांव के शरारती तत्वों की बन आई, वे सुगिया से कहने लगे, हम तोरे सुगवा का ब्याह कराए दे, लड़की वालन के 1500 देवे की पड़ी। माँ बेटे अपना पेट काट काट कर बचाते, इधर उधर से कुछ उधार बाढ़ी करते और रकम बड़ी उम्मीद से ब्याह कराने का भरोसा देने वाले हाथों को सौंप देते। इंतजार में सुगिया की आंखें पथरा जाती, रकम लेने वाले कोई न कोई बहाना बना देते और अंत में हजम कर जाते। एक बार तो गांव के दुधुआ नाई ने, जो खुद 40 की उम्र में कुंवारा बैठा था, उसे वचन दिया कि वह फुलवा का ब्याह कराएगा। दुधुआ अपने अजीबो गरीब कारनामों से हमेशा गांव की चर्चा में बना रहता। एक बार तो जिद पर अड़ गया कि गांव की पोखरी के किनारे किनारे जो बिजली के खंभे गड़े हैं, जिनसे होकर कई तार जा रहे हैं, वह उन्हीं में से किसी एक खंभे पर बैठकर सुतली काटेगा। उन दिनों गांव में बिजली नहीं थी। समझदार लोगों ने रोका कि इन तारों से बिजली का करंट पास होता है, यह उसी की लाइन जा रही है, लेकिन वह कहां मानने वाला, करंट होता तो दिखता नहीं, मैं नहीं मानता करंट वरंट। और उसने लोगों की बात अनसुनी कर दी। एक दिन उसने घोषणा की, आज हम सुतली काते जाव, जेके देखे को होए चले हमरे संगे। फिर क्या था, देखते देखते बच्चों की टोली दुधुआ के पीछे। वह बच्चों का हीरो बना, सन बगल में दबाए, सुतली कातने की चरखी हाथ में लटकाए चल पड़ा। औरतों ने सुना तो उसकी किस्मत पर तरस खाकर रह गईं। आज कोई आगे पीछे होता तो जरूर रोकता। विधवा बड़ी सावधानी से खंभे पर चढ़ रहा था। नीचे से सांस रोके बच्चे उसे ऊपर और ऊपर चढ़ता देख रहे थे। उसने ज्यों ही ऊपर पहुंचने के लिए एक हाथ से तार पकड़ना चाहा, उंगलियां तार से चिपक कर रह गईं। थोड़ी देर में उसे ऐसा जोर का झटका लगा कि वह धड़ाम से नीचे जमीन पर आ पड़ा। बच्चे सहम गए। पास ही जुलाहों के घर थे। हल्ला सुनकर बहुत से वहां इकट्ठा हो गए और चारपाई पर लाद कर उसे उसके घर पहुंचाया। पड़ोसियों ने गरम राख से न जाने कितनी देर तक उसके तलवे हथेलियां मली, तब जाकर उसके अचेत शरीर में चेतना लौटी। तब से उसकी एक हथेली हमेशा हमेशा के लिए मुट्ठी की शक्ल में बदल गई। फुलवा का विवाह कराने का वचन देकर एक बार फिर वह चर्चा में आ गया था। सुगुआ ने दुधुआ नाई की राय से साड़ी, पेटीकोट, जम्पर, चप्पल, क्रीम, पाउडर और तमाम बहुओं के इस्तेमाल में आने लायक सामान खरीद कर उसे दे दिया। उसे नकद पैसे भी दिए। एक दिन अचानक लोगों ने देखा दुधुआ की कोठरी में ताला लटक रहा था। अकेले आदमी का क्या, जहाँ चाहे वहाँ चल दे। लेकिन जब महीना भर हो गया और ताला नहीं खुला, तब गांव वालों को खटका हुआ। सुगिया के मन में उम्मीद जगी कि इस बार तो वह जरूर फुलवा के लिए लड़की ढूंढ कर लौटेगा। दुधुआ लौटा, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ उससे कम से कम 20 साल छोटी लड़की थी, जिसे वह न मालूम कहां से भगाकर लाया था। एक दिन उसने गांव भर में न्योता भिजवाया कि वह अपनी रिश्तेदारी की एक अनाथ लड़की से शादी कर रहा है और गांव के लोग मुंह जुठारने जरूर आए। गांव में यह बात फैलते देर नहीं लगी कि जो साड़ी उसने सुगिया से हथियाई थी, वही साड़ी उसकी होने वाली बीवी ने शादी की रात पहनी थी। असल में वह साड़ी सुगिया ने रवि पंडित से मंगाई थी और उन्होंने ही दुधुआ की शादी के मंत्र पढ़े थे। सुगिया ने जब यह सुना तो वह कट कर रह गई। उसने रवि पंडित को भी जी भर कर सरापा, जिन्होंने दुधुआ का सहयोग किया था। गांव के शरारती लड़के उसे अलग छेड़ते, फिल्मी हीरोइनों की तस्वीरें दिखाकर पूछते, इस लड़की से करोगी सुगवा का ब्याह? धीरे धीरे सुगिया सबकी मंशा भाप गई। वह समझ गई कि बेटे के सिर पर सेहरा देखना उस जैसी माँ के नसीब में नहीं होता। इस बीच फुलवा को न जाने कौन सी बीमारी लगी कि उसकी कुंदन सी चमकती रंगत नीली पड़ने लगी। शरीर भी दिनों दिन गिरने लगा। देखते देखते वह सूख कर कांटा मात्र रह गया। सिर के घने काले काले बाल इस तेजी से झड़ने लगे कि उसकी खोपड़ी जगह जगह से गंजी हो गई। सुगिया ने उसके बाल घुटवा दिए। अब तो वह एकदम पहचान में नहीं आता था। बच्चे अब दूसरी तरह से सुगिया को छेड़ने लगे थे। एक बार मेरी सहेली ने कहा, ए सुगिया, तोर फुलवा मर गया, हम अपने आँख से देख ली है। तू मर जा तो हर महतारी बाप भाई बहन मर जाए, हमार फुलवा कहे के मरी? फिर मेरी ओर देखकर अत्यंत कातर स्वर में उसने कहा, देखा था बहिनी, हमरे फुलवा के का कहत आई, ओकरे मरले ई का पई है। ऐसे न जाने कितने क्रूर मजाक उसे सहन करने पड़ते। गांव में यारू साई ने, जिसके अपनी कोई आस औलाद नहीं थी और बीवी भी वर्षों पहले गुजर गई थी, चंदा मांग कर अपनी कब्र बनवा ली थी। कब्र के चारों ओर उन्होंने पक्की दीवारें चिनवा दी थी। बाकी पैसा गांव के प्रधान के पास जमा कर दिया था कि जब वे मरे उनका शरीर उसी में दफनाया जाए और उनकी कब्र पक्की करा दी जाए। बिगड़ाए लड़के सुगिया को चिढ़ाते, जब यारूसाई मरी है तब का तब देख जाई, अब ही चल तू दोनों महतारी पूत के दफनाए दिहल जाए। दोनों के लायक काफी जगह हुई। सुगिया की बड़बड़ाहट चालू, तू जा कबर में तो हर महतारी बाप जाए, हम फुलवा कहे के जाए। आखिरी बार मैंने जब उन्हें देखा, फुलवा आगे आगे मटमैली अंगोछी से सिर ढके, अपने नाप से दुगनी ढीली ढाली कमीज पहने, लाठी पर अपना भार संभाले, धीरे धीरे अपनी बस्ती की ओर जाने वाली पगडंडी पर चला जा रहा था। उसके पीछे पीछे सुगिया चल रही थी। न मालूम कब बेटे को उसकी जरूरत पड़ जाए। दोनों खुसर पुसर करते जा रहे थे। मेरी जिज्ञासा ने सिर उठाया और मैं अपने को पूरी तरह कान में परिवर्तित हुई, कब उसके पीछे पीछे चलने लगी मैं खुद नहीं समझ पाई। फुलवा, तू पहले मर जाते बचवा, तो तुर तेरे ही कह के हम आराम से मरित, कम से कम तू भगवान के पास शांति से रहते। जवाब में फुलवा का स्वर उभरा, नहीं माई, महतारी बाप को तेरे ही करे का फर्ज लड़का का होला, पहले तू मर जाती तो तोर तेरे ही हम खूब धूमधाम से करी। जिस सहजता से माँ बेटे मौत की बातें कर रहे थे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस दशा को माँ बेटे पहुँचे थे, क्या उसमें सिर्फ उन्हीं का दोष था? यह प्रश्न मुझे आज भी कचोकता है। फुलवा की हंसी और उसकी बातें मेरे कान में आज भी कैद हैं। और इतु मौत के बाद कहाँ से ले आईली, अभी तो हम 100 वर्ष जी अब, हा। और फुलवा चेष्टा पूर्वक हंसने लगा था। सुगिया फुलवा जब न तब मेरी चेतना के चौखट पर दस्तक देते हैं, इसे उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि समझी जाए। धन्यवाद।
0: आपने सुनी कहानी सुगिया फुलवा। कहानीकारा रही विद्या सिंह। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है।

0: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा?
0: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
1: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
0: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
1: जयपुर रेडियो? पर बेटा, हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर
0: चाचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
1: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, क्या नाम बताया उस ऐप का?
0: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
2: लम्हा दर लम्हा गुजरता ही चला जाता है, वक्त खुशबू है बिखरता ही चला जाता है। ऐसे ही लम्हों को बटोर कर आपके लिए लाए हैं हम इन बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा और आज के एपिसोड में तकनीकी सहयोग के लिए हमारे साथ श्री ओपी शर्मा। मेरा मन सुकून पाता है जब ये दिल कोई गीत गुनगुनाता है, क्योंकि संगीत मानव जीवन की एक मधुर धारा है, जज्बातों की भाषा है। तो आज इसी भाषा के एक वैज्ञानिक से है हमारी बातचीत। 1998 में सारेगामा शो का मेगा फाइनल जीतने वाले, अपने एल्बम से संगीत की दुनिया में ऐसे छाए कि यश चोपड़ा ने उन्हें साइन किया वीर ज़ारा के लिए। आपको याद होगी वो कव्वाली,
3: जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ,

0: आया तेरे दर पर दीवाना, तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शैदाई, तेरे इश्क में है इसे मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना।
1: जी हाँ, ये पुरकशिश आवाज जिसमें रागदारी भी है और रूहदारी भी, प्रिंस ऑफ गजल अवार्ड से सम्मानित मोहम्मद वकील साहब की। नमस्कार मोहम्मद वकील
0: नमस्कार सुषमा जी, आप कैसे हैं?
1: जी। मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी आवाज को सुनकर और भी अच्छा महसूस कर रही हूँ। मतलब
0: बहुत बहुत
1: सुकून
0: शुक्रिया,
1: सा मिल गया आपकी आवाज और
0: बहुत
1: ये सुर
0: शुक्रिया
1: सुन के। जी, बात
0: जी।
1: जब सुरों की होती है तो मैं ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि वो कौन सी उम्र थी जब आप में सुरों की समझ पैदा होने लगी, संगीत आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया।
0: इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आपके जितने भी लोग मुझे आपके माध्यम से सुन पा रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, संगीत की समझ तो ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम रोज रियाज करते हैं तब भी हम पूरी तरह संगीत को नहीं समझ पाते, लेकिन हाँ, संगीत पसंद जो आपने फरमाया वो हम बहुत खुशनसीब हैं कि जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, जिस परिवार में मेरी पैदाइश हुई, वो एक ऐसा परिवार जिन्होंने संगीत की इबादत की है, और जो जितने भी हमारे पूर्वज गुजरे हैं सबने भारतीय संगीत की सेवा की है, और उसी कदम पर उसी विरासत को लेके मैं भी चल रहा हूँ। और जो मेरे नाना जी थे स्वर्गीय उस्ताद मोहम्मद अब्दुल हुसैन जयपुर वाले, दादाजी उस्ताद मोहम्मद इस्माइल साहब भी बहुत बड़े फनकार थे महाराजा राम सिंह जी के जमाने में। उसके
1: जी
0: बाद फिर मुझे संगीत की शिक्षा मिली पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब से, तो माहौल संगीत का मिला, तो इसलिए माहौल से इंसान को काफी फर्क पड़ता है। माहौल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों प्रभाव डालते हैं। तो बचपन से ही आंखें खोली तो संगीत का माहौल आसपास देखा, तो संगीत ये समझ लीजिए कि बचपन से ही पसंद बन गया।
1: बिल्कुल, आपके कानों में अजान के साथ साथ संगीत भी गूंजा, ये हम मानते हैं। तो वो एक ऐसा वक्त था मोहम्मद वकील जी जब जबरदस्त रियाज पर ध्यान दिया जाता था, तो तब क्या मन करता था उस छोटे से मोहम्मद वकील का कि रियाज करूं या खेलने जाऊं बाहर दोस्तों के साथ।
0: जी देखिए, हम जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आंखें खुली तो संगीत ही देखा और सुना, तो

पेश करना चाहूंगा। दोस्तों, वो दिन भी क्या दिन थे जब तपती धूप में हमें खेलते देख सूरज भी हमसे जुड़ता था, जब तपती धूप में हमें खेलते देख सूरज भी हमसे जुड़ता था, और जिस राह पे मुड़ती थी अपनी साइकिल साथ में चांद भी मुड़ता था। जब बरगद की जटाएं भी हमी से झूला झूलती थी, जब बरगद की जटाएं भी हमी से झूला झूलती थी, आलम कुछ ऐसा था दोस्तों कि तितलियां भी हमसे खेलती थी। कागज की कश्ती की तरह अपने सपने भी डोलते थे, कागज की कश्ती की तरह अपने सपने भी डोलते थे, और ख्वाब भी इतने सतरंगी थे कि उनमें हम परियों से भी बोलते थे। सचमुच दोस्तों, न रोने की कोई वजह थी और न हंसने का कोई बहाना, न रोने की कोई वजह थी और ना ही हंसने का कोई बहाना। आज महसूस होता है कि कितना सुहाना था वो जमाना। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बचपन की। मां की लोरी से यादों की डोरी तक जो सफर हम सब ने तय किया है, आइए आज इसे फिर से दोहराते हैं इस खूबसूरत गीतमाला के साथ। तो कार्यक्रम की शुरुआत में चलिए सुनते हैं 1975 की फिल्म मिली का एक बेहद खूबसूरत गाना, जिसे लिखा है योगेश जी ने, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन जी ने, और गाया है लता मंगेशकर जी ने। आज इस खूबसूरत गाने को आपके सामने प्रस्तुत कर रही है अपनी सुरीली आवाज में गिरिजा जी और तनुजा जी।

दोस्तों, इस सुरमई सफर में जो अगला गीत अब हम सुनेंगे उसका अंदाज ही कुछ निराला है। ये गाना है पापा और मम्मी के प्यार के बारे में। और वैसे भी दोस्तों, 1971 में प्रदर्शित फिल्म अंदाज का अंदाज भी कुछ निराला ही था। बतौर निर्देशक ये रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म थी। बतौर लेखक ये सलीम जावेद के हिट जोड़ी की पहली फिल्म थी। और दोस्तों, यही फिल्म बनी संगीतकार जय किशन जी के जिंदगी की आखिरी फिल्म। तो चलिए सुनते हैं हतरक जयपुरी द्वारा लिखित, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाया हुआ और शंकर जयकिशन जी ने संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत। प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी सुमधुर आवाज में किशोर जी और श्वेता जी।

दोस्तों चलो ये तो सुन ली हमने मम्मी और पापा के प्यार की कहानी, लेकिन कई बार माँ बाप के आपसी रिश्ते बच्चों की मासूमियत पे एक गहरा घाव भर देते हैं। कुछ यही दिखाने की कोशिश की थी 1980 के दशक में आई हुई मूवी मासूम ने। निर्देशक शेखर कपूर की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो धूम मचा ही दी थी और कई सारे अवार्ड समेट लिए थे, लेकिन खास करके इसके गाने इतने मशहूर हुए कि आज भी हम उन्हें गुनगुनाते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं गीतकार गुलजार के शब्दों में आरडी बर्मन जी द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ एक ऐसा ही मासूमियत भरा गाना, जिसे आपके सामने प्रस्तुत कर रही है अपने सुमधुर आवाज में डॉली जी और हीना जी।

दोस्तों, अब मासूमियत की बात छिड़ ही चुकी है तो जरा सोचिए उस दौर में हम कितने मासूम हुआ करते थे कि चिड़िया, कौवा, हाथी, भालू, बंदर अपने दोस्त हुआ करते थे। ऐसे ही मासूमियत को छलकाया था 1957 की एक फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं ने, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी की बेगुनाही साबित करने के लिए सीधा दिल्ली का रुख करता है ताकि वो प्रधानमंत्री से मिलके उन्हें अपने मन की बात सुना सके। तो चलिए संगीता जी और कविता जी की लुभावनी आवाज में हम भी खो जाते हैं चिड़िया, कौवे, भालू और बंदर की दुनिया में। आइए सुनते हैं अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म का एक गाना, जिसके गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीत से नवाजा है दत्ताराम वाडकर जी ने।

दोस्तों, जब हम भालू, बंदर, चिड़िया, कौवे जैसे अपने बचपन के दोस्तों से मिल चुके हैं, तो हम बचपन के उस एक दोस्त को भला कैसे भुला सकते हैं, जिसके बिना हमारी एक भी रात नहीं गुजरती थी, जिसकी कहानियां सुना के माँ हमें सुलाती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चांद की। इतना गहरा था हमारा रिश्ता कि कई गानों ने तो उसे हमारा मामा बना दिया था। कभी हम उसके घर जाते और वहां अपनी दुनिया बसाते, तो कभी उसको धरती पे अपनी दुनिया में बुलाते। आज हमारे होनहार गायक नमित सिन्हा जी और धन्या संतोष जी ऐसी ही एक चांद के सफर पे आपको लेके जाएंगे। तो लीजिए, सुनते हैं उन्हीं की आवाज में फिल्म जख्मी का ये गाना। बोल है गौहर कानपुरी के और संगीत दिया है बप्पी लहरी जी ने।

दोस्तों, उन दिनों हमारे खेल भी बड़े अजीब हुआ करते थे। छोटी छोटी शरारतों से हमें बड़ी खुशियां मिलती थी, जैसे माँ को बिना बताए डिब्बे से लड्डू चुराना, गर्मियों की छुट्टियों में खेतों में टहलते टहलते पेड़ से आम या अमरूद चुराना, कागज का हवाई जहाज बना के चुपके से उसे क्लास में उड़ाना, या फिर जीप की अजीब सी पहेलियां बुझा के अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना। क्या नहीं समझे? अरे समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ, समझ समझ के तुम नहीं समझे, मेरी समझ से तुम ना समझो। कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं आज के हमारे अगले गायक राजेंद्र जी और मनीषा जी फिल्म फना के इस गाने के साथ, जिसे लिखा है प्रसून जोशी जी ने और संगीत दिया है जतीन ललित जी ने।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंको, पिंको पकड़े पका पपीता। बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
2: कपड़ा।

दोस्तों, ऐसी पहेलियां बुझा के शरारत और मनोरंजन करने का सिलसिला सिर्फ आज के दौर का नहीं है, और ना ही ये मनोरंजन या बच्चों तक सीमित है। अब यही देखिए ना, हमारे वेदों के ऋषियों ने भी नासदीय सूक्त जैसी काव्यात्मक पहेलियां बुझा के पूरे संसार की रचना का पाठ हमें पढ़ाया। खैर दोस्तों, इतना दूर नहीं जाते। अब यही देखिए, 1955 में कवि शैलेंद्र जी ने कुछ ऐसी ही पहेलियां लिखी। शंकर जयकिशन जी ने उसे संगीत दिया, लता जी और मुकेश जी ने उसे गाया, और बस होना क्या था, बन गया एक सुपरहिट गाना जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि रशिया, चीन, इजराइल जैसे कई देशों में हिट हुआ। तो चलिए सुनते हैं फिल्म श्री 420 का यही गाना मनप्रीत जी और अनूप जी की मनमोहक आवाज में।

0: बोलो क्या
1: तुम?
0: हम
2: ऐसे बेहद लुभावने गीत सुनने के बाद दोस्तों दिल में एक ख्याल आता है कि आखिर बड़े होकर हमने क्या पाया, या फिर यूं कहिए कि जितना भी पाया शायद उससे कई ज्यादा खोया। किसी ने खूब कहा है दोस्तों, ए उम्र अगर है दम तो कर दे इतनी सी खता, ए उम्र अगर है दम तो कर दे इतनी सी खता, बचपन तो छीन लिया तूने बचपना छीन के बता। सचमुच दोस्तों वो दिन भुलाए नहीं भूलते, और भाई इतनी सुनहरी यादों को भुलाए भी क्यों। शायद यही कहना चाहते हैं हमारे अगले गीत के गायक MD त्यागी जी और गायत्री जी। तो लीजिए उन्हीं की आवाज में सुनते हैं शकील बदायूनी द्वारा लिखित और नौशाद जी ने संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म दीदार का ये गाना।

चलिए दोस्तों, बचपन का ये सुहाना सफर तय करते करते अब हम उम्र के उस पड़ाव पे आते हैं जहां थोड़ी बहुत जमाने की समझ हमें भी आती है और थोड़ी दुनियादारी भाई हम भी सीख लेते हैं। रोने और हंसने के अलावा अब हमें रूठना और अपनी बात मनवाना भी भले खूब आता है। ये उम्र का वो नाजुक पड़ाव है दोस्तों जो आपके भविष्य की नींव बनती है। यहां कोई अच्छा सलाहकार मिले तो आपकी जिंदगी बनती है या फिर बिगड़ती है। हमारे अगले गायक बिश्वजीत जी और विद्या जी भी शायद आपको यही बताना चाहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव को कैसे पार किया जाए। तो सुनते हैं उन्हीं की सुमधुर आवाज में फिल्म अपना देश का ये गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी जी ने और संगीत से नवाजा है आर डी बर्मन जी ने।

अब देखिए ना दोस्तों, बचपन की यादों की बौछारों में भीगते भीगते वक्त कैसे बीता इसका पता ही नहीं चला, और हम पहुंच गए हैं इस सुरीली महफिल के अंजाम तक। दोस्तों, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिंदगी की दौड़ में दौड़ते दौड़ते हम दौड़ना तो भली भांति सीख गए हैं, पर शायद जीने का मकसद कहीं छूट गया है। और शायद यही जिंदगी का फलसफा सिखाती है हमें यह गजल, जिससे आज हम अपनी सुरीली महफिल की समाप्ति करेंगे। सुदर्शन फाकीर की ये बेहद खूबसूरत पंक्तियां, जिन्हें संगीत और सुरों से नवाजा है जगजीत सिंह जी ने, आज आपके सामने पेश करेंगे हमारे दो सुरीले होनहार फनकार, बिमल जी और अपर्णा जी।

0: दोस्तों, वक्त का तकाजा यह कहता है कि अब आपसे अलविदा कहने का समय हो गया। मैं आशा करता हूं कि जितनी खुशियां इन गीतों को आप तक पहुंचाने में हमें मिली, उतनी ही खुशियां आपको भी इन्हें सुनने में आई होंगी और आप भी अपने बचपन की सुनहरी यादों में खो गए होंगे। किसी ने खूब कहा है दोस्तों, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे किसी मुसाफिर की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती है रुके हुए रास्ते की तरह। तो चलिए, इसी ख्याल के साथ मैं मंगेश आपकी आज की शाम का आपका मेजबान आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। फिर से एक बार आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुनते रहिएगा जयपुर रेडियो, क्योंकि यही तो है आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: झूमे गाए।

संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की शाम हम एक ऐसे कलाकार को नमन करेंगे जिन्होंने 38 साल में 100 से ज्यादा हिंदी और बंगाली भाषी फिल्मों को न सिर्फ संगीत दिया पर गाया भी। हम बात कर रहे हैं सचिन देव बर्मन जी की, जिनको हम सब एसडी बर्मन के नाम से जानते हैं। एसडी बर्मन त्रिपुरा के शाही खानदान से थे। उनके पिता नवदीप चंद्र देव बर्मन त्रिपुरा के शाही खानदान से थे और उनकी माता निर्मला देवी मणिपुर की राजकुमारी थी। एसडी बर्मन का झुकाव शुरू से ही संगीत की तरफ था और उन्होंने 1932 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन में बंगाली लोकगीत गाकर अपना सफर शुरू किया। उनकी पहली फिल्म 1935 की एक बंगाली फिल्म थी जिसमें उन्होंने गाया भी और एक्टिंग भी की। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 1957 की एक सुपरहिट फिल्म 9-2-11 से, जिसमें देवानंद और कल्पना कार्तिक थीं। इस फिल्म के बेहद खूबसूरत गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने और इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए, जिनकी महक आज तक बरकरार है। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं मनु मृदुल और आबा जी की मधुर आवाज में।

क्या खूबसूरत गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1962 की फिल्म बात एक रात की से है, जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान थी। ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने और गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं दीपशिखा जी और किरण जी की मधुर आवाज में।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो हम सुनेंगे वो 1963 की फिल्म तेरे घर के सामने से है, जिसमें देवानंद के साथ नूतन थी। इस फिल्म के गीत लिखे हसरत जयपुरी जी ने और फिल्म का मधुर संगीत दिया एसटी बर्मन जी ने। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग में नूतन जी को एक ग्लास में दिखाया गया, जब उन दिनों कंप्यूटर्स नहीं थे स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, पर विजय आनंद जी ने वो कर दिखाया। लीजिए इसी फिल्म का ये मधुर गीत सुनते हैं संगीता जी और एमडी त्यागी जी की मधुर आवाज में।
1: चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे धरती फूट जाए, चाहे हस्ती ही क्यों न मिट जाए, फिर भी मैं
2: फिर भी मैं

वाह, क्या खूब गीत पेश किया। फिल्म तेरे घर के सामने के सारे गीत खूब सुपरहिट हुए। अब जो गीत आप सुनेंगे वो इसी फिल्म से है जिसे कुतुब मीनार के अंदर से शूट किया गया था। गाना दो दो बार शूट किया गया क्योंकि एक लीडर जो फॉरेन कंट्री से आए हुए थे उनको शूटिंग दिखानी थी और उन्हें नाराज नहीं करना था। आइए उसी गीत को सुनते हैं जूही जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। आइए अगला गीत सुनते हैं एसडी बर्मन की एक सुपरहिट फिल्म गाइड से। इस फिल्म में देवानंद जी के साथ वहीदा रहमान थी। ये देवानंद जी की पहली कलर फिल्म थी। इस फिल्म को 14 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, जैसे कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एक्सेट्रा। ये एक फिल्म थी जो हिंदी में बनने के बाद इंग्लिश में भी बनाई गई। इस फिल्म का खूबसूरत म्यूजिक दिया गया एसडी बर्मन जी के द्वारा। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं संजीव कुमार जी और संजय हारने जी की मधुर आवाज में।

दोस्तों, गाइड फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो आर के नारायण के 1958 के द गाइड नॉवल के ऊपर बेस थी। इसके सभी गाने खूब सुपरहिट हुए और इनका म्यूजिक दिया था एसडी बर्मन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं, मेरी और मुकेश गुलानी जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत आप सुनेंगे 1967 की फिल्म ज्वेल थीफ से, जिसमें देवानंद और विजयंती माला थीं। फिल्म का बेहद मस्ती भरा संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने, और आप जो गीत सुनेंगे वो एक इंग्लिश गाना द ब्रिज ऑफ द रिवर क्वाई से प्रभावित है। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं वरुण जी और विद्या जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूब गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1973 की फिल्म अभिमान से है, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुरी थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने, जिसके लिए उनको फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड भी मिला। और इस फिल्म के गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने, जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं किशोर जी और गायत्री जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत पेशकश। अगला गीत इसी फिल्म का एक और नायाब गीत है जिसे मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा। ये गीत पहले मुकेश जी को गाना था, पर उन्होंने जब मनहर उदास की आवाज में ये गीत सुना तो उसे बदलना ठीक नहीं समझा। आइए इसी गीत को सुनते हैं श्वेता सम्बा सिवन और अनूप शर्मा जी की मधुर आवाज में।

क्या खूब गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी से है, जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान थी। इस फिल्म के रसीले गीत लिखे नीरज जी ने और संगीत से सजाया एसडी बर्मन जी ने। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं, कविता जी और अनिंदो जी की मधुर।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूं कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूं।
1: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हमारे संग है, हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह गोहिल। वेलकम है नरेंद्र जी, और हमारे श्रोता आपके गीत सुनते हैं बराबर और जानते हैं आपका नाम जयपुर रेडियो के सिंगर के रूप में। आइए सुनते हैं आपका पहला गीत और इस प्रोग्राम को देते हैं एक स्पीड।

कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी, जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जो जासूस करे महसूस के दुनिया

0: जरा समझो जरा संभल के रहियो जी, जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी, जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है।
1: कह देना बहुत आसान है कि दुनिया बहुत खराब है, पर दो जासूस महसूस करते हैं तो कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। और ये खूबसूरत गीत गा रहे थे नरेंद्र सिंह गोहिल गांधीनगर गुजरात से, और आपका साथ दे रहे थे आपके सहगायक अजय पाठक। आप सुन रहे हैं वो गीत जो दो गाने हैं और मुकेश जी ने जिन गीतों को गाया है। अगले गीत की ओर चलते हैं और देखते हैं नरेंद्र सिंह गोहिल क्या लेके आए हैं, क्या अफसाना है, क्या कहानी है, क्या फसाना है।

मामला लेकर आए हैं नरेंद्र सिंह गौहिल गांधीनगर गुजरात से, और इस गीत में साथ दे रही थी जसबीर कौर। प्यार का आगाज मुकेश जी के वो गीत जिन्हें दो गानों के रूप में आप सुनते हैं, और उन्हीं गीतों का एक संकलन लेके आए हैं नरेंद्र सिंह गोहिल, हमारे आज के कलाकार। आपकी आवाज आपकी

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और इस गीत में आपका साथ दे रही थी, यानी नरेंद्र सिंह गोहिल का साथ दे रही थी, सीमा कदासिया। आइए सुनते हैं युगल गीत माला का अगला सॉन्ग।

ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी दुनिया में हैं जिसका नाम है जयपुर रेडियो वर्ल्ड और जिसे सुनती है पूरी दुनिया। नरेंद्र सिंह गोहिल का साथ दे रही थी इस गीत में हेमांगिनी। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

सुन रहे हैं वो गीत जिन गीतों को आवाज दी थी मुकेश जी ने, और आज वो आवाज नरेंद्र सिंह गोहिल दे रहे हैं अपने को सिंगर्स के साथ।

नजारों में, और ये दो गाना गा रहे थे तमन्ना और नरेंद्र सिंह गोहिल। और आइए भावना के साथ नरेंद्र सिंह गोहिल, मुकेश जी का ये खूबसूरत गीत भावना अवस्थी और नरेंद्र सिंह गोहिल लेके आए हैं ये सुरीला सॉन्ग।

ये प्यार का अफसाना सुना रहे थे अपने गीत से नरेंद्र सिंह गोहिल और भावना अवस्थी। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गीत। इस गीत में साथ दे रही हैं सीमा

तुम प्यार से प्यारे हो और प्यार से प्यारा है जयपुर रेडियो वर्ल्ड, जहाँ से सुनते हैं आप अपने सुरीले सॉन्ग। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच, और आपने सुना अभी नरेंद्र सिंह गोहिल के साथ सीमा कदासिया का युगल स्वर। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं तक। बहुत धन्यवाद कहेंगे, आभार कहेंगे नरेंद्र सिंह गोहिल को कि आप इतने सुरीले सॉन्ग लेके इस मंच पर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। सुनते रहें जब रेडियो, बार बार आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। मैं हूँ आरजे प्रीत और लेकर के आई हूँ एक म्यूजिकल शो जिसका नाम है मेरी प्रीत अमर कर दो। आपकी आवाज आपकी पहचान में हमारे साथ हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट श्री ओपी शर्मा जी।
1: आज हम स्वागत करते हैं अपने नए मेहमान का जिनका नाम है आशुतोष तिवारी जो सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं। बहुत स्वागत है आशुतोष आपका हमारे म्यूजिकल शो में। कैसे आप?
2: नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ।
1: ये बताइए कि जयपुर रेडियो के मंच पे ये पहली बार आप आए हैं या पहले भी आ चुके हैं?
2: ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जयपुर रेडियो के मंच में अभी पहली बार ही आ रहा हूँ। गाने तो कई बार मेरे प्रसारित हो चुके हैं
1: जी, लेकिन आपका इंटरव्यू फर्स्ट टाइम है, पहली।
2: जी जी बिल्कुल।
1: तो जयपुर रेडियो के लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा, आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन है?
2: जी जरूर, मैं आशुतोष तिवारी सिंगरौली मध्य प्रदेश से हूँ। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेरा एक व्यवसाय है दवा का। और मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी है नीलम, दो बच्चे हैं और वाइफ भी मेरी जॉब में है।
3: तो बचपन से ही गाने का शौक था मुझे, बस जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, म्यूजिकल प्लेटफॉर्म, तो मैं उसमें गाने लग गया। धीरे धीरे कुछ कार्यक्रम भी अटेंड करने लग गए हैं, म्यूजिकल शो वगैरह, इस तरीके से जर्नी चल।
1: जी जी जी, नहीं तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि आपको म्यूजिक तो पसंद था, फिर ये दवा की व्यवसाय से आप कैसे जुड़ गए? आप मुझसे इस टाइम बता रहे हैं ना।
3: होता क्या है कि ये देखिए, ये हमारा एक शौक होता है, लेकिन आगे यदि हमें बढ़ना है करियर में, तो मैंने पढ़ाई की थी बी फार्मा नागपुर से, उसके बाद मैं जॉब में था कुछ दिन, फिर मेरी श्रीमती जी है यहाँ पे कोल इंडिया में डाइटिशियन के पोस्ट में, तो हम दोनों अलग अलग थे शादी के बाद, तो फिर मैंने अपना व्यवसाय स्टार्ट किया।
1: तो मतलब कि फिर संगीत से जुड़ा हुआ तो होता चला गया है ना?
2: हाँ बिल्कुल, संगीत तो हमेशा सोल है हमारी, वो तो उससे हम जुड़े हैं बचपन से ही, और अब तो और भी कुछ ज्यादा ही फैसिनेट हो गए हैं।
1: हाँ जी, जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर सुन रहे हैं आशुतोष जी को जो कि सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं। देखिए जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर्स को मालूम है कि हमारे इस शो में जो आते हैं मेहमान वो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम नए नए सिंगर्स को आमंत्रित करें और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से उनकी आवाज दूर दूर तक जाए। और आशुतोष जी, आज आपको देश दुनिया के कोने कोने में सुना जा रहा है, तो पहले तो बताइए आपके फेवरेट सिंगर कौन है? बातें तो हम बहुत करेंगे पर फेवरेट सिंगर के बारे में तो जान ले।
2: बिल्कुल प्रीत जी, वैसे तो कहा जाए तो हमारी जो बॉलीवुड की दुनिया है उसमें एक से एक सिंगर कलाकार हैं और आते जा रहे हैं, तो ये कह पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है कि मेरे फेवरेट सिंगर कौन है। बचपन से हमने रफी साहब को, मुकेश साहब को सुना है ना, किशोर जी को सुनते हुए बड़े हुए, इधर फिर बाद में अभिजीत, सोनू निगम, कुमार सानू, ये सब हुए, तो मतलब कहना तो बड़ा असंभव है, सभी अच्छे लगते हैं।
1: वही मैं बोलना चाह रही थी कि सभी सिंगर फेवरेट है ना। वैसे तो सच बात है कि सिंगर्स के लिए कोई ऐसा खास पसंद नहीं होता, लेकिन ये है कि हाँ कभी कभी होता है ना कि किसी किसी के दिमाग में एक सिंगर गूंजते रहते हैं बस, कि अरे मुकेश जी हैं या रफी जी हैं।
2: किशोर कुमार जैसे, उनके गाने मतलब सुनने के बाद दिल एकदम खुश हो जाता है, और जैसे अभी सावन का मौसम भी है तो एक गाना मुझे याद ही आ रहा है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर्स सुन रहे हैं आशुतोष तिवारी को, और चलिए पहले उनका पहला सॉन्ग सुनते हैं।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। देखिए सुनिए, इतना मौसम, मतलब मौसम तो है ही बारिश का, और सॉन्ग इतना खूबसूरत है ना ये, कि बस समा बांध देता है सावन में, चार चांद लग जाते हैं और हमारे जो लिस्टर्स है ना वो चाय और पकोड़े लेकर के बैठे हुए इस मौसम में और इस सॉन्ग का लुत्फ उठा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत पसंद आया होगा सॉन्ग, और आपकी सिंगिंग वाकई बहुत अच्छी है। तो चलिए हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप सिंगर है, आपका फार्मासिस्ट मतलब दवाइयों का बिजनेस है, राइट ना?
1: जी जी जी
0: इस बीच में आप टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन तो काफी बिजी होते हैं ना, उनका तो कोई टाइम ही नहीं होता है, जब भी चाहे तब तब तक काम चलता है।
1: ये मैनेज करना करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने यदि किसी शौक को रखा, और अब तो मैंने बताया कि काफी पैशन बिल्कुल हावी हो गया है संगीत के लिए, तो उठते जागते सोते जब भी खाली समय मिलता है तो बस ध्यान उधर ही जाता है। और बीच बीच में तो हम कार्यक्रम भी अटेंड करने जाते हैं, म्यूजिकल इवेंट, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है बिजनेस में, क्योंकि हमारे पास कोई छुट्टियां नहीं होती है, हमें मैनेज करना पड़ता है। यदि हमको अपने शौक को जारी रखना है और ये हमको अपने मूड को फ्रेश रखना है, तो जरूर हमें समय निकालना पड़ेगा उसके लिए।
0: घर परिवार का सहयोग मिलता है आपको, आपकी सिंगिंग
1: बिल्कुल
0: जब होती है
1: संभव
0: तो
1: ही नहीं है कि हम कुछ कर पाए ऐसा, तो सहयोग मिलता है,
0: हाँ
1: और हमारे शॉप में भी कुछ कर्मचारी हैं,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल वो हमें हमेशा सहयोग करते हैं। कभी भी मेरा इवेंट रहता है, मैंने पहले से प्री प्लांट बता देता हूँ कि मुझे ऐसा करना है, तो बराबर मुझे सबका सहयोग मिलता है, मेरे धर्म पत्नी का हमेशा सहयोग मिलता है, साथ में मेरे गाती भी हैं लोकल प्रोग्राम में हमारे साथ, वो भी गाती हैं, तो एक
0: शिवा,
1: इंकरेजमेंट मिलता है। हाँ बिल्कुल
0: जब जब पति पत्नी दोनों गाते हैं तो फिर रुकावट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, सही
1: सही है, बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: ना? तो चलिए
1: बिल्कुल
0: एक सॉन्ग और हो जाए इसी बात पर, लिसनर्स को सुनाइए।
1: बिल्कुल। बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं इस बॉलीवुड में, और मेरे अभी के जैसे कहा जाए 90s के फेवरेट सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य जी हैं,
0: जी
1: तो अभी मौसम भी इतना सुहाना है तो वो गाना मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, मैं सुनाना चाहूंगा अपने लिसनर्स को।

0: हाँ, कितना सुंदर सॉन्ग है ये, और कितना मतलब सच में मेरा भी बहुत मतलब फेवरेट है ये, बहुत पसंद है मुझे ये सॉन्ग। और हमारे
1: बिल्कुल
0: जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स आशुतोष जी को सुन रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको भी ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा होगा। सावन का महीना और सावन के गीत, मतलब सोने पे सुहागा है ना,
1: ये
0: क्योंकि
1: कॉम्बिनेशन में जरूर लेके चलना चाहता था अपने लिसनर्स के साथ में कि मेरे फेवरेट सिंगर और ये जो मौसम चल रहा है सावन का सुहाना मौसम, ये दोनों साथ में मेरे लिसनर अच्छे से एंजॉय कर सकें।
0: बिल्कुल, और वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आरजे प्रीत लेकर के आती है म्यूजिकल शो जिसका नाम है मेरी प्रीत अमर कटो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी बातों ही बातों में बताया था कि आप म्यूजिकल इवेंट्स में जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो कोई ऐसा वाक्या म्यूजिकल इवेंट में जो आपके साथ हुआ हो, कुछ जयपुर रेडियो के लिस्टर्स के साथ आप साझा करना चाहें, उन्हें बताना चाहें, कुछ है ऐसा कुछ?
1: जयपुर रेडियो के लिसनर्स जो है हमारे ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल से, और कई बार हम लोग साथ में मिले भी हैं म्यूजिकल इवेंट में। और देखे जब हम स्टेज परफॉर्म्स करते हैं, वैसे तो करीब लगभग 5-6 सालों से मैं जा रहा हूँ, लेकिन कई बार जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है और एक बेस्ट सिंग मेमोरेबल ही रहेगा, तो एक ही ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि 3 गाने थे और बहुत ही अच्छा हुआ था मेरा परफॉर्मेंस और मुझे वहां पे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। तो वो वाकया तो मैं बिल्कुल अपने साथ ही हमेशा लेके ही चलूंगा।
0: वाह, ये खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि प्रोफेशनल सिंगर तो है नहीं, आप शौक के लिए गाते
1: जी
0: हैं है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: शौक शौक में गाने पर जब कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है या कुछ ऐसा सुना, मतलब लोग तारीफ करते हैं, तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है। तो मुझे बताइए।
1: हमें ऐसे जब छोटे छोटे इवेंट पे हम लोग जाते हैं, बिल्कुल आपने कहा कि हम लोग प्रोफेशनल सिंगर तो हैं नहीं, बट एक कोशिश रहती है कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएं, और उस बीच में यदि हमें कोई रिकॉग्निशन मिलता है तो हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो डेफिनेटली
0: बिल्कुल
1: एक
0: आशुतोष
1: बूस्ट
0: जी,
1: मिलता
0: क्योंकि
1: है।
0: हाँ, जो देखिए जो प्रोफेशनल सिंगर नहीं होते ना, वो उनके अंदर सारी कलाएं होती हैं, वो सोनू निगम भी होते हैं, रफी सर भी होते हैं, मुकेश जी भी होते हैं, क्योंकि वो अपनी शौक के लिए कितना ऊपर तक सिंगर्स को लेके जाते हैं, उनके सॉन्ग्स को याद करते हैं, गाते हैं, और अपनी खुशी के लिए बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं उनको, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रोफेशनल सिंगर का तो काम होता है सिंगिंग करना, लेकिन जो मतलब आप जैसे सिंगर हैं, जो प्रोफेशनल नहीं है सिंगर, अपनी खुशी के लिए गाते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर सुन रहे हैं आशुतोष तिवारी जी को, जो कि मध्य प्रदेश से हैं,
1: जी
0: आपके शहर का नाम सिंगरौली।
1: सिंगरौली मध्य प्रदेश, ऊर्जा धानी कहा जाता है इसे, कैपिटल ऑफ एनर्जी।
0: हाँ, मैं वही क्वेश्चन में आ रही थी कि ये बताइए मुझे कि किस लिए प्रसिद्ध है आपका सिटी।
1: ये माइंस के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे माइंस भी है, कोल इंडिया की माइंस है यहाँ पे। और वैसे सिंगरौली का नाम मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, श्रृंगी ऋषि थे, उनकी तपस्थली कही जाती है, तो उनके नाम से
0: जी
1: पड़ा है सिंगरौली का नाम। और यहाँ पे एनटीपीसी के पावर प्लांट हैं और कुछ प्राइवेट पावर प्लांट हैं, करीब लगभग 7 पावर प्लांट हैं यहाँ पे, तो
0: अच्छा,
1: इसलिए इंडिया के लगभग 30% इलेक्ट्रिसिटी यहीं से प्रोड्यूस होती है, इसलिए प्रसिद्ध है
0: मतलब
1: सिंगर।
0: कि घूमने वाली जगह है, या फिर हमारे जयपुर रेडियो के लिसनर्स को आमंत्रित करेंगे घूमने के लिए कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल हम तो चाहेंगे, लेकिन बस यही है, छोटा सा टाउन है, वाराणसी से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, और पहाड़ियाँ यहाँ पे बन गई हैं, कोल माइंस का जो भी निकलता है वो भी वगैरह, तो उससे यहाँ पे पहाड़ बन गए, बाकी काफी खूबसूरत है, छोटा सा शहर है, तो घूम सकते हैं, 1-2 दिन के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत वैसा तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन कभी आएंगे जरूर अच्छा लगेगा, लोगों को यहाँ नई नई चीजें देखने को मिलेंगी।
0: बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई सिंगरौली के बारे में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर्स सुन रहे हैं ध्यान से, और वो तपोभूमि है तो कह सकते हैं एक बार जाया जा सकता है वहां, छोटे टाउन है तो क्या हुआ, एक बार जाया जा सकता है वहां, छोटे टाउन है तो क्या हुआ, लेकिन घूम सकते हैं, है ना आशुतोष
1: बिल्कुल
0: जी?
1: बिल्कुल प्रीत जी, हमने एक म्यूजिकल इवेंट भी किया था यहाँ पे
0: ओके, हाँ
1: पैन इंडिया से, तो
0: अच्छा,
1: घूम के भी गए हैं अभी। हाँ तो हम लोग करते रहते हैं बीच बीच में, ये साल में एक बार एनुअल
0: हाँ
1: मीट होती है यहाँ पे।
0: अच्छा, तो मतलब कि इस मुलाकात हो जाती है काफी पुराने लोगों से जो जान पहचान के हैं और
1: जी
0: सिंगिंग से जुड़े हुए
1: जी
0: हैं ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो जयपुर रेडियो के सभी लिसनर सुन रहे हैं मेरी प्रीत अमर कर दो, मैं हूँ आरजे प्रीत, और हमारे आज के मेहमान कलाकार आशुतोष जी। आशुतोष जी, अब लिस्टर्स इंतजार कर रहे हैं कि सावन के महीने में जो सॉन्ग्स वो सुन रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करते हुए एक सॉन्ग और हो जाए।
1: बिल्कुल। और ये गाना है जो ये
0: जी
1: हमारे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब का है, क्योंकि हम लोग बचपन से उनके गानों को सुन के जो मन में तरंग बजती है और उनके गाने जो एक अलग स्टाइल होती है, तो मुझे
0: हाँ
1: हमेशा बचपन से ही पसंद थे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब। और उनका एक गाना है, एक मूवी आई थी साजन,

0: वाह, जो कभी हम मिले तो बहुत प्यारा सॉन्ग, और ये बहुत फेमस सॉन्ग है। और मुझे लगता है कि जयपुर रेडियो के जितने भी लिस्टर्स है ना, जो आपको अपने देश से, विदेश से, दुनिया के कोने कोने से सुन रहे हैं ना, इंजॉय कर रहा है उन्होंने ये सॉन्ग। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग और बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग, और मुझे लगता है एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक मतलब सभी जानते हैं, कोई किसी से छूता नहीं है ये सॉन्ग। तो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनाया आपने, बहुत अच्छा लगा। अब आप ये बताइए, जयपुर रेडियो के लिस्टर्स के साथ कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ अपनी कोई मोमेंट शेयर करना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, जयपुर रेडियो के लिसनर्स तो हमारे हमेशा ही जयपुर रेडियो के साथ जुड़े हैं, और पूरे पैन इंडिया और पूरे देश विदेश से आजकल जयपुर रेडियो को हमारे सुना जा रहा है। मैं भी लगभग 3 सालों से लिसनर हूँ जयपुर रेडियो का, तो हमें तो
0: वाह,
1: एक से एक पूरे सिंगर सभी सुनने के मिलते हैं। मेरे भी कुछ गीत पहले बजे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जयपुर रेडियो में जब आप जैसे हमारे आरजे जो कोने कोने से, देश से और विदेश से खोज के लाए जाते हैं हमारे जैसे सिंगर को, और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हम बहुत आभारी हैं जयपुर रेडियो के, और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही नए नए कलाकारों को आप मौका देते रहिए।
0: जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने लिस्टर्स को नए नए सिंगर से मिलवाते रहें, उनके बारे में जानकारी मिलती रहे, उनके सिटी के बारे में जानकारी मिलती रहे, एक इंटरेस्ट बना रहता है हमारे लिस्टर्स का। और हमारे लिस्टर्स जानते हैं कि जयपुर रेडियो हर जगह सुना जाता है, तो आपकी आवाज आज हर जगह जा रही है। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी?
1: बस मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो जयपुर रेडियो के साथ ही ये सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो भी सिंगर हैं जयपुर रेडियो से जुड़िए और अपनी कला को आगे निखारिए, और बस संगीत है, संगीत का आनंद लेते रहिए। संगीत से बढ़ के शायद ही दुनिया में कोई माइंड बूस्टर हो सकता है आपके लिए।
0: आजकल के टेंशन भरे माहौल में संगीत वाकई में बूस्टर का काम करता है, और इसीलिए तो एक होता है ना, बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके सुकून चाहिए तो संगीत सुनिए, लाइट्स ऑफ करिए, कमरे में एकांत में बैठ जाइए और संगीत सुनिए, आपके सारी टेंशन दूर, सारी प्रॉब्लम्स दूर, है ना आशुतोष जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपने जैसे बोला ना कि एक लाइट बंद कीजिए और सुकून के साथ जो गीत का आनंद लीजिए, एक गाना मुझे बहुत ही प्यारा केके जी का याद आ रहा है,
0: जी
1: बहुत ही शानदार
0: बिल्कुल,
1: गाना है।
0: सुनाइए सुनाइए, हमारे लिसनर्स
1: तो
0: इंतजार
1: मुझे
0: कर
1: ऐसा
0: रहे
1: लग
0: हैं।
1: रहा है कि हमारे सभी लिसनर्स बहुत ही पसंद करते होंगे। आप सुनिए इस गाने को, आप खो जाएंगे इस गाने में।

हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट श्री ओपी शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। सुनते रहिए जयपुर रेडियो, जयपुर रेडियो को रेटिंग देना ना भूलें, जयपुर रेडियो पर ऐप पे कमेंट देना ना भूलें, और ये म्यूजिकल शो चलता रहेगा और ये कारवां ऐसे ही काफिला बढ़ता रहेगा जिसका नाम है मेरी प्रीत अमर कर दो। थैंक यू सो मच, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम गीत लाजवाब, और इस प्रोग्राम को लेके आई हैं सियाटल यूएसए से, यानी सियाटल अमेरिका से, समृद्धि चतुर्वेदी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृद्धि सियाटल से, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के प्रोग्राम जिसका नाम है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब के एपिसोड नंबर 5 में। आज के हमारे एपिसोड का नाम है प्यार की नोकझोंक। आज के गीतों में कोई बड़ी बड़ी मोहब्बत की बातें नहीं होंगी। आज प्यार थोड़ा नखरीला है, थोड़ा शरारती है और खूब सारी नोकझोंक करने वाला है, क्योंकि कभी कभी प्यार की शुरुआत मैं तुमसे प्यार करता हूँ से नहीं होती है, बल्कि शुरुआत होती है तुम ऐसे क्यों हो, और जवाब आता है अच्छा और तुम कौन सी कम हो। तो आज देखते हैं इन सवाल जवाबों के बीच कब शिकायत प्यार में बदल जाती है। तो हमारी कहानी में लड़की की नजर पहली बार इस जनाब पे पड़ती है।

और पहली नजर में प्यार? बिल्कुल नहीं। पहली नजर में तो बस एक ही फैसला है, उफ ये लड़का है कैसा। कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी, कुछ ज्यादा ही शरारती और शायद कुछ ज्यादा ही ध्यान भी दे रहा है। लेकिन कहानी में एक छोटी सी दिक्कत है। जिस इंसान से हमें कोई मतलब नहीं होता, उसकी हरकतों पर इतनी नजर भी नहीं रहती, तो शायद शिकायत के पीछे कहानी कुछ और है। 1977 की हम किसी से कम नहीं के इस गीत में आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत आरडी बर्मन का। चलिए देखते हैं ये दीवाना आखिर इतना दीवाना क्यों है।

जब किसी लड़की को लड़के की बात समझ से बाहर लगे तो जनाब भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। लड़के को लगता है मैं ही क्यों समझाऊं, पहले तुम खुद को तो समझो। और बस अब मामला एक तरफा शिकायत से निकलकर दो तरफा बहस बन जाती है। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, दोनों को लगता है सामने वाला अजीब है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है दोनों बातचीत बंद करने की बजाय बातें कर रहे हैं। 2004 की हम तुम का यह गीत अलका याग्निक और शान की आवाजों में है, साथ ही उनका साथ दिया है सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ने, बोल प्रसून जोशी के और संगीत जतिन ललित का। और इस गाने को गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। तो चलिए बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों

0: दिन में नजरें इनकी इधर उधर सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: आई एम नॉट विद हर।
0: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: ओके दैट्स इट।
2: अब तक दोनों सिर्फ बहस कर रहे थे, लेकिन लगता है बहस का बहाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है, क्योंकि अगली मुलाकात में जनाब जरा और करीब आ गए हैं और उन्हें छेड़ रहे हैं, और वह भी उन्हें रोकने का नाटक कर रही हैं। और फिर अचानक याद आता है, अरे यहाँ और भी तो लोग हैं। अब समस्या छेड़ने से कम है, पकड़े जाने से ज्यादा, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया से छिपाने की कोशिश में उनकी असली मिठास होती है। 1964 की गंगा की लहरें का यह गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है, गीत मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत चित्रगुप्त का। इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

अब जरा तस्वीर देखिए। कहने को तो दोनों की खूब नोकझोंक है, लेकिन फिर वह चली गई और थोड़ी देर बाद जनाब फिर वहीं दिखाई दे गए। अब कोई भी पूछेगा, जब इतनी शिकायत थी तो फिर वापस आए किस लिए? और यही तो इस कहानी का मजा है। कभी कभी हम किसी से मिलने के लिए कोई बहुत अच्छा बहाना ढूंढते हैं, लेकिन सामने वाला उस बहाने को पहचान लेता है। 1971 की कल आज और कल का यह शानदार सवाल जवाब आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है, बोल नीरज के और संगीत शंकर जयकिशन का। तो सुनते हैं मेरे साथ देते हुए पंकज जी को। आप यहाँ

कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। इतनी सारी मुलाकातों के बाद, इतनी बहसों के बाद, इतनी छेड़खानी के बाद, एक दिन इंसान सामने वाले से नहीं खुद से सवाल करने लगता है, मैं आखिर हर बार इसी इंसान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और फिर शायद अपने दिल को समझाने के लिए दुनिया भर के उदाहरण देने लगता है, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। शायद प्यार सच में बहुत अजीब चीज है। इंसान जानता है कि इसमें बेचैनी भी होगी, इंतजार भी होगा, कभी दिल भी दुखेगा, फिर भी जब कोई खास इंसान जिंदगी में आ जाए तो उससे दूर रहना उससे भी मुश्किल लगता है। 2001 की दिल चाहता है का यह गीत उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है, बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। मेरा साथ देते हुए फिर से रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी

और फिर इतनी बहस के बाद भी अगली मुलाकात तो हो ही जाती है। दोनों आमने सामने हैं, पिछली सारी बातें याद है, किसने किसे छेड़ा, किसने किससे नाराजगी दिखाई, सब याद है, लेकिन कोई भी पिछली लड़ाई का जिक्र नहीं करता। बस एक मुस्कान और एक बहुत ही साधारण सा सवाल, हाल कैसा है जनाब का। 1958 की चलती का नाम गाड़ी का यह शानदार गीत आशा भोसले किशोर कुमार ने गाया है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत एसटी बर्मन का है। इस संगीत में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। शायद हमारी आज की कहानी का सबसे प्यारा जवाब भी यही है, प्यार हमेशा इजहार से नहीं पहचाना जाता, कभी कभी किसी का हाल पूछने की बेचैनी भी काफी होती है। तो आइए सुनते हैं हाल।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम गीत लाजवाब, और इस प्रोग्राम को लेके आई हैं सियाटल यूएसए से, यानी सियाटल अमेरिका से, समृद्धि चतुर्वेदी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृद्धि सियाटल से, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के प्रोग्राम जिसका नाम है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब के एपिसोड नंबर 5 में। आज के हमारे एपिसोड का नाम है प्यार की नोकझोंक। आज के गीतों में कोई बड़ी बड़ी मोहब्बत की बातें नहीं होंगी। आज प्यार थोड़ा नखरीला है, थोड़ा शरारती है और खूब सारी नोकझोंक करने वाला है, क्योंकि कभी कभी प्यार की शुरुआत मैं तुमसे प्यार करता हूँ से नहीं होती है, बल्कि शुरुआत होती है तुम ऐसे क्यों हो, और जवाब आता है अच्छा और तुम कौन सी कम हो। तो आज देखते हैं इन सवाल जवाबों के बीच कब शिकायत प्यार में बदल जाती है। तो हमारी कहानी में लड़की की नजर पहली बार इस जनाब पे पड़ती है, और पहली नजर में प्यार बिल्कुल नहीं। पहली नजर में तो बस एक ही फैसला है, उफ ये लड़का है कैसा, कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी, कुछ ज्यादा ही शरारती और शायद कुछ ज्यादा ही ध्यान भी दे रहा है। लेकिन कहानी में एक छोटी सी दिक्कत है, जिस इंसान से हमें कोई मतलब नहीं होता उसकी हरकतों पर इतनी नजर भी नहीं रहती, तो शायद शिकायत के पीछे कहानी कुछ और है। 1977 की हम किसी से कम नहीं के इस गीत में आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत आरडी बर्मन का। चलिए देखते हैं ये दीवाना आखिर इतना दीवाना क्यों है।

0: जब किसी लड़की को लड़के की बात समझ से बाहर लगे तो जनाब भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। लड़के को लगता है मैं ही क्यों समझाऊं, पहले तुम खुद को तो समझो। और बस अब मामला एक तरफा शिकायत से निकलकर दो तरफा बहस बन जाती है। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, दोनों को लगता है सामने वाला अजीब है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह, दोनों बातचीत बंद करने की बजाय बातें कर रहे हैं। 2004 की हम तुम का यह गीत अलका याग्निक और शान की आवाजों में है। साथ ही उनका साथ दिया है सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ने, बोल प्रसून जोशी के और संगीत जतिन ललित का। और इस गाने को गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। तो चलिए बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं।
1: लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों

0: ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले झगड़े जैसे पास पास मन रहा है, बड़ा फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर्किया
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है। दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मर
0: जाए।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती,
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: दोनों सिर्फ बहस कर रहे थे, लेकिन लगता है बहस का बहाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है, क्योंकि अगली मुलाकात में जनाब जरा और करीब आ गए हैं और उन्हें छेड़ रहे हैं, और वह भी उन्हें रोकने का नाटक कर रही हैं। और फिर अचानक याद आता है, अरे यहाँ और भी तो लोग हैं। अब समस्या छेड़ने से कम है, पकड़े जाने से ज्यादा, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया से छिपाने की कोशिश में उनकी असली मिठास होती है। 1964 की गंगा की लहरें का यह गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है, गीत मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत चित्रगुप्त का। इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

अब जरा तस्वीर देखिए। कहने को तो दोनों की खूब नोकझोंक है, लेकिन फिर वह चली गई और थोड़ी देर बाद जनाब फिर वहीं दिखाई दे गए। अब कोई भी पूछेगा, जब इतनी शिकायत थी तो फिर वापस आए किस लिए? और यही तो इस कहानी का मजा है। कभी कभी हम किसी से मिलने के लिए कोई बहुत अच्छा बहाना ढूंढते हैं, लेकिन सामने वाला उस बहाने को पहचान लेता है। 1971 की कल आज और कल का यह शानदार सवाल जवाब आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है, बोल नीरज के और संगीत शंकर जयकिशन का। तो सुनते हैं मेरे साथ देते हुए पंकज जी को। आप या

कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। इतनी सारी मुलाकातों के बाद, इतनी बहसों के बाद, इतनी छेड़खानी के बाद, एक दिन इंसान सामने वाले से नहीं खुद से सवाल करने लगता है, मैं आखिर हर बार इसी इंसान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और फिर शायद अपने दिल को समझाने के लिए दुनिया भर के उदाहरण देने लगता है, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। शायद प्यार सच में बहुत अजीब चीज है। इंसान जानता है कि इसमें बेचैनी भी होगी, इंतजार भी होगा, कभी दिल भी दुखेगा, फिर भी जब कोई खास इंसान जिंदगी में आ जाए तो उससे दूर रहना उससे भी मुश्किल लगता है। 2001 की दिल चाहता है का यह गीत उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है, बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। मेरा साथ देते हुए फिर से रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी

फिर इतनी बहस के बाद भी अगली मुलाकात तो हो ही जाती है। दोनों आमने सामने हैं, पिछली सारी बातें याद है, किसने किसे छेड़ा, किसने किससे नाराजगी दिखाई, सब याद है, लेकिन कोई भी पिछली लड़ाई का जिक्र नहीं करता। बस एक मुस्कान और एक बहुत ही साधारण सा सवाल, हाल कैसा है जनाब का। 1958 की चलती का नाम गाड़ी का यह शानदार गीत आशा भोसले किशोर कुमार ने गाया है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत ST बर्मन का है। इस संगीत में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। शायद हमारी आज की कहानी का सबसे प्यारा जवाब भी यही है, प्यार हमेशा इजहार से नहीं पहचाना जाता, कभी कभी किसी का हाल पूछने की बेचैनी भी काफी होती है। तो आइए सुनते हैं हाल।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी।

0: Perfect.
1: Perfect.

दोस्तों, ये थे प्रशांत अरोड़ा, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्निकल एक्सपर्ट श्री जगदीश अरोड़ा जी के सुपुत्र। पिछले लगभग 6 वर्षों से प्रशांत पंजाब के संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे सिर्फ एक बेहतरीन गायक ही नहीं बल्कि अपने गीतों का संगीत भी स्वयं तैयार करते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को सुरों में पिरोकर श्रोताओं तक पहुंचाना उनकी पहचान बनता जा रहा है। प्रशांत अपने संगीत को अपने YouTube चैनल परफेक्ट, जिसको हम स्पेल करते हैं PRFKT, परफेक्ट के माध्यम से भी श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, जहां उनके मौलिक गीत और संगीत, उनकी रचनात्मक सोच और संगीत के प्रति समर्पण की एक सुंदर झलक प्रस्तुत करते हैं। आज की उनकी ये प्रस्तुति ने ये साबित कर दिया है कि प्रतिभा, समर्पण और निरंतर मेहनत मिलकर सपनों को नई उड़ान देते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्रशांत अपनी कला से संगीत की दुनिया में और भी ऊंचे मुकाम हासिल करेंगे। हमारी पूरी टीम की ओर से प्रशांत अरोड़ा को ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें सफलता, सम्मान और अपार लोकप्रियता प्रदान करे और उनके सुर यूं ही हर दिल को छूते रहें।

0: नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप लोगों का मनपसंद प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगु, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देव गुप्ता, और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। दोस्तों, कहते हैं संगीत वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाता है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे मेहमान जिनके लिए गायन सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में सुकून और हौसला देने वाला साथी है। ये मूल रूप से पुणे महाराष्ट्र से हैं, पेशे से एक वरिष्ठ प्रोजेक्ट इंजीनियर यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन इनके दिल की धड़कन हमेशा संगीत की लय पर चलती है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान आनंद मिसाल जी का। आनंद जी, जश्न सितारा गीत गुफ्तगु प्रोग्राम में मैं आरजे सपना देव गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ।
1: धन्यवाद धन्यवाद सपना जी, नमस्कार, और तमाम जयपुर रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को भी तहे दिल से धन्यवाद।
0: तो हमारे श्रोता बेहद उत्सुक हैं जानने के लिए कि आनंद जी जो आज हमारे मेहमान हैं, उन्होंने सबसे पहले जो उनका बचपन पुणे की गलियों में बीता, वो उन यादों के बारे में जानना चाहते हैं जिन यादों ने मिलकर आज के आनंद मिसाल को बनाया है।
1: पहले तो मैं जयपुर रेडियो का शुक्रिया अदा करूंगा
0: जी
1: कि एक आपके मंच के जरिए एक मौका मिला है आप तक पहुंचने का। रही बात मेरे बचपन की, तो यस, आप सभी की तरह बहुत अच्छा बचपन गुजारा है मैंने। पूना से 35 किलोमीटर गांव है मेरा
0: जी
1: उरुली,
0: जी
1: सो वहां पे मेरा 10th तक एजुकेशन वहां पे ही हुआ है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: उसके बाद मेरा जो इंजीनियरिंग हो पूना में हुआ,
0: जी
1: पुणे में हॉस्टल लाइफ मेरा स्टार्ट हुआ, जहाँ पे ही मेरा एज अ सिंगर में थोड़ा वहाँ निखार आया। मैं जहाँ तक गुनगुना करता था कॉलेज में आके, मैंने फिर वहाँ कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि फिर गाने के भी शौक चढ़ गए, फिर
0: जी अक्सर
1: संगीत।
0: ये देखा ही जाता है कि जब हम कॉलेज में आते हैं तो जो हमारे अंदर की छुपी हुई टैलेंट्स होते हैं वो उभर के बाहर आते हैं। तो
1: हाँ,
0: जी, तो बचपन में भी आपने कभी स्टेज पर गाया है?
1: नहीं, बचपन में एक्चुअली सिंगिंग ये भी कोइंसिडेंटली एक्सीडेंटली हुआ था। ये जो स्टोरी है, एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: कॉलेज के टाइम में हमारा गैदरिंग का सिलेक्शन चल रहा था सिंगिंग का,
0: जी
1: और हमारा जो ग्रुप था वो पीछे से सुन रहे थे, कमेंट कर रहे थे, हंसी मजाक ये वो चल रहा
0: जी
1: था।
0: जी
1: तो
0: जी
1: जैसे हम सामने जैसे कोई सिंगर आते थे, तो वही वो बचपने वाले हरकतें,
0: जी जी जी
1: इस सब ऐसे माहौल में अचानक से मेरा नाम अनाउंस हुआ था। तो इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि कभी गाया नहीं था मैंने, माइक भी कभी पकड़ा नहीं था। तो अचानक से मेरा नाम अनाउंस किया, और मैं फिर मेरी हालत तो मैं बता भी नहीं सकता आप लोगों को,
0: जी
1: लेकिन फिर भी पीछे से थोड़ा आपको पुश किया दोस्तों ने कि भाई अभी तो इज्जत
0: अब तो जाना ही पड़ेगा, अब
1: का
0: नाम
1: सवाल है।
0: अनाउंस हो चुका है।
1: हाँ
0: जी, तो कौन सा
1: तो
0: गाना गाया आपने?
1: हाँ वही, तो वहां पे फिर स्टेज पे गया, कोई दिमाग में सॉन्ग नहीं था कौन सा
0: तो
1: गाना
0: फिर
1: है,
0: भी
1: स्टेज पे गया, हालत ऐसी थी, हाथों में पसीना, पाव लड़खड़ा रहे हैं, फिर भी मैंने जो अभी भी यह सॉन्ग याद है वो मुझे मंजिल अपनी जगह है।
0: अरे वाह, क्या बात है किशोर
1: तो
0: जी।
1: उसमें हाँ जी हाँ जी, तो जैसे हमिंग स्टार्ट की तो पूरा जो हॉल था हमारा ऑडिटोरियम में पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ,
0: वाह
1: मेरे आंखें बंद थी और वो पिन ड्रॉप साइलेंस ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। तो ऐसे तैसे वो सॉन्ग कंप्लीट कर दिया मैं।
0: क्या बात है,
1: तो
0: बहुत ही रोचक पूर्ण। तो किशोर
1: इट
0: जी आपके शुरू से ही फेवरेट सिंगर रहे हैं?
1: हाँ जी, आप कह सकते हो। ऐसे बचपन में क्या होता था ना, गांव में हम ऐसे बाहर बरामदे में सोते थे पूरा फैमिली,
0: जी
1: ठीक है। तो वो टाइम में आज के तरह का माहौल नहीं था, वहां पे वो विविध भारती वगैरह चल चल रहा होता था
0: जी जी
1: कहीं ना कहीं रेडियो पे। तो वहां पे मैं सॉन्ग सुनता था, लेकिन तो एक इनकी जो वॉइस है वो मुझे अट्रैक्ट कर, पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करती थी।
0: जी जी
1: तो बाद में समझ में आया कि यार ये वॉइस किशोर दा की
0: जी उनकी इतनी जादू भरी आवाज थी कि हमेशा आपको अपनी ओर
1: है। यस
0: खींचती थी।
1: यस यस यस यस
0: तो ऐसा क्या हुआ आनंद जी कि आपने यही गाना चुना अपने पहले मंच की प्रस्तुति के लिए? यही गाना क्यों आपके दिमाग में आया, मंजिलें अपनी जगह है?
1: आई वॉज मीन्स मैं ब्लैंक था टोटली।
0: जी जी
1: तो आंखों के सामने से सॉन्ग का लिस्ट जा रहा था मेरी, बट प्रिपरेशन नहीं था, कुछ नहीं था। ये थोड़ा कंफर्टेबल था और थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल भी सॉन्ग के लिए मेरा अच्छा मुझे लगा, सो मैंने
0: जी
1: वो परफॉर्म किया। और एक खास बात
0: वैसे
1: यह है कि
0: जी
1: हमारे प्रिंसिपल साहब का मेरा एक अंतर होने के बाद में उन्होंने वो वंस मोर कर दिया और एक
0: अरे
1: दूसरा एक
0: वाह
1: सॉन्ग का रिक्वेस्ट दे गया,
0: क्या
1: तो
0: बात
1: वहां
0: है।
1: से मेरा एक्चुअल सिंगिंग का मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वहां से सिंगिंग मैंने
0: जी जी जी
1: स्टार्ट
0: जी
1: किया।
0: आपको जो इतनी अच्छी दिल से प्रशंसा मिली अपने खुद के प्रिंसिपल
1: हाँ जी
0: से,
1: हाँ जी हाँ जी
0: वो आपको काफी आगे बढ़ा के ले गई। वैसे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो गीत है ये इतना आसान भी नहीं है, मंजिलें अपनी जगह हैं, क्योंकि इसका जो इमोशंस हैं वो दिल को छू जाती हैं। और जी
1: करेक्ट, हाँ
0: सिर्फ हाई
1: इमोशन,
0: नोट्स
1: जी
0: ही नहीं
1: जी
0: है बल्कि आपको बहुत इस गीत में डूब कर गाना
1: वो
0: पड़ता है।
1: फील, करेक्ट करेक्ट। इनफैक्ट
0: जी
1: वो स्टार्टिंग से वो जो हमिंग है, ये जो है
0: जी
1: हमिंग
0: जी
1: से जो स्टार्ट होता है, तो
0: जी
1: वो फील आना वहीं से स्टार्ट होता है, और यही खासियत है उनकी।
0: यही खासियत है। वाह
1: यस
0: बहुत खूब। और इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हैं। आनंद जी, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक व्यस्त प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं। निसंदेह आपकी जो जिंदगी है बहुत ही व्यस्त रहती होगी, तो ऐसे में संगीत के लिए समय निकालना कितना चुनौतीपूर्ण लगता है आपको?
1: डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट होता है टाइम निकालना।
0: जी,
1: हाँ, लेकिन
0: अगर
1: वक्त
0: मन में
1: मिलता
0: हम
1: नहीं, वो
0: ठान लें तो कर ही
1: निकलना
0: लेते
1: पड़ता
0: हैं।
1: है। हाँ हाँ हाँ एग्जैक्टली, वक्त मिलता नहीं है, वो निकालना पड़ता है। होता क्या है, सिंगिंग मैं सुनता हूँ, जैसे मुझे फ्री टाइम होता है मैं म्यूजिक सुनता रहता हूँ। रही बात सिंगिंग की, हाँ, तो उसके लिए फिर टाइम थोड़ा निकालना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जहां पर बात रूह की खुराक की हो, जहां पर बात हो कि संगीत के बगैर हम जी नहीं
1: एग्जैक्टली
0: सकते, तो वहां तो
1: एग्जैक्टली
0: समय निकालना ही
1: एग्जैक्टली
0: पड़ता है।
1: एग्जैक्टली
0: जी, और इसी के साथ हम आपका एक और गीत लेते हैं।

0: तो आनंद जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि सिंगिंग सिर्फ आपकी एक हॉबी नहीं है, आपके दिल का सुकून है। तो क्या आपको कोई एक ऐसा वाकया याद हो या कोई ऐसा दौर याद हो जब संगीत ने सचमुच आपका हौसला बढ़ाया हो और आप हमारे श्रोताओं के साथ उसे साझा करना चाहें?
1: लाइफ में अप एंड डाउन्स देखे मैंने बहुत। होता क्या है कि हर सिचुएशन में कभी कभी हमें खुद को ही मोरली सपोर्ट देना होता है,
0: जी जी
1: क्योंकि आपको ज्ञान देने में लोग जुटे रहेंगे।
0: जी
1: आपको खुद क्या हो, खुद के लिए क्या चाहिए, क्या सही है, क्या सर गलत है, या खुद को स्टैंड अप करने के लिए, मुझे लगता है कि ये म्यूजिक इज द बेस्ट सोर्स फॉर मी।
0: जी
1: कि मैं और मैं ये फैक्ट है कि मैं 5 मिनट का सॉन्ग भी सुन लूं, थोड़ा खुद को रिलैक्स फील करूं।
0: जी तरोताजा महसूस करते हैं आप।
1: यस यस
0: वाकई
1: यस
0: इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संगीत ही एक सच्चा साथी होता है
1: करेक्ट करेक्ट
0: जो
1: करेक्ट करेक्ट
0: जी दुख
1: जिसे
0: की घड़ी में भी और सुख की घड़ी में भी
1: एग्जैक्टली
0: हमारे साथ रहता है।
1: एग्जैक्टली
0: बिल्कुल
1: संगीत जो है मीन्स देखो, छोटे बड़े मेलोडी का कोई ये नहीं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर एक इसमें आप देखोगे तो संगीत से ही जुड़े हुए
0: जी
1: डिफरेंट काइंड ऑफ मूड्स एंड सिचुएशन।
0: जी जी बिल्कुल
1: आपको वो एक थेरेपी जो बोलते हैं वो काम करता है बहुत अच्छे से।
0: बिल्कुल सही। और अगर हम अपने आसपास भी देखें आनंद जी, जो प्रकृति है वो भी संगीत से भरी हुई है। अगर आप
1: एग्जैक्टली
0: हवा
1: वो
0: के बहाव को महसूस करें या
1: यस यस यस
0: लहरों को
1: यस
0: महसूस करें, हर जगह संगीत है, हर जगह आपको
1: एग्जैक्टली
0: वही चीज
1: एग्जैक्टली
0: मिलेगी। तो आनंद जी, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि जो आपके कॉलेज में आपके मंच की पहली प्रस्तुति थी वो थी किशोर दा का एक बेहतरीन गीत, मंजिलें अपनी जगह हैं, जो कि अगर मैं गलत
1: यस
0: नहीं
1: यस
0: हूँ शराबी फिल्म से है और अमिताभ बच्चन जी पर ये
1: यस
0: फिल्माया गया था।
1: हाँ जी हाँ
0: जी
1: जी हाँ जी
0: तो इस गीत के बाद आपने और भी बहुत
1: इस
0: सारी प्रतियोगिताएं और लाइव ऑर्केस्ट्रा में गाया होगा।
1: लाइव ऑर्केस्ट्रा में ज्यादा गाया नहीं हूँ।
0: जी
1: कॉलेज टाइम में गाता था मैं।
0: जी
1: कॉम्पिटिशन्स, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन भी मैंने किए हैं
0: जी
1: पूना
0: जी
1: में।
0: जी तो कोई और ऐसी यादगार प्रस्तुति जो आज भी आपके दिल के बेहद करीब हो?
1: हाँ मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मेरा एक सॉन्ग है फेवरेट, दूसरा
0: जी
1: जो मैंने प्रिपेयर किया था, एक डुएट कंपटीशन था इंटर कॉलेज पूना में, मॉम मॉम करके ग्रुप था,
0: अच्छा जी
1: मिस्टर मोहन कुमार भंडारी जो ऑर्गेनाइजर थे, वो हर साल वो ऑर्गेनाइज करते थे। वहां पे हमारे कॉलेज के ओर से हमारा पहला एंट्री था उस कंपटीशन में।
0: अच्छा
1: तो उसमें डुएट कंपटीशन में वो एक्सपीरियंस एक बढ़िया था मेरे लिए। पूरा अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ, वो क्राउड वही था,
0: जी जी जी
1: तो
0: जी
1: वहाँ पे बहुत उन लोगों का वो शोर, वो आज भी आंखों के सामने आता है
0: जी वो जो
1: एक थोड़ा।
0: एक उत्तेजना वाला एटमॉस्फियर बना होता
1: यस
0: है,
1: यस
0: एक
1: यस यस
0: एक्सपोजर
1: वो
0: होता है।
1: एनर्जेटिक,
0: जी जी
1: करेक्ट
0: जी
1: करेक्ट, और
0: जी
1: कोई गलत गा रहा है तो उसपे
0: जी
1: हंगामा, ये वो
0: जी
1: चीजें वो सब चल रहा था।
0: जी वो तो जो
1: तो
0: दौर होता है कॉलेज के दिनों का, वो पूरी जिंदगी
1: यस
0: के
1: यस
0: सभी
1: यस
0: दौरों में से सबसे
1: यस यस
0: यादगार
1: यस यस
0: रहता है।
1: वो हाँ वो कहीं पे तो छुपा रहता है वो हमेशा के
0: जी
1: लिए।
0: जी और हमें हमेशा एक मुस्कान ही देकर
1: तो
0: जाता है जब भी हम
1: यस
0: याद करते
1: यस
0: हैं। जी
1: यस
0: हाँ
1: यस
0: जी
1: तो वहां का एक सीन ये हुआ था, हमारा अनाउंसमेंट हो गया, हम स्टेज पे गए, मेरे को पार्टनर थे, तो स्टेज पे जाने के बाद वो बोले कि आनंद मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि वो भी नए थे, ऐसे प्रोफेशनल सिंगिंग वगैरह नहीं थे। तो उनको बोला मैंने कि आप आंखें बंद कर लो 3-4 मिनट के लिए बस और गा लो। और हालांकि उनको देख के थोड़ा मैं भी हड़बड़ा गया था।
0: हाँ होता है ऐसे, इन्फेक्शियस होती है ये चीज।
1: तो फिर इंतहा हो गई उस सॉन्ग का, तो स्टार्टिंग का जो अर्डलिंग है उसका वो मैंने स्टार्ट किया, तो वहां पे भी जितना क्राउड नॉइजी था वो शांत हो गया
0: क्या बात है, क्या
1: वो
0: बात है
1: टाइम में भी।
0: जी।
1: तो बीच में वो मोहन कुमार जो थे वो खुद जज कर रहे थे कंपटीशन, तो उन्होंने ताली बजाया और रुकने को बोला, तो थोड़ा मैं वहां पे स्टॉप करके फिर रुक गया। तो उन्होंने बोला यही फिर से आप गाओ स्टार्टिंग। फिर से मैंने जैसे स्टार्ट किया, मेरे पार्टनर जो है वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गए, वो पूरा तालियां वगैरह ये वो नहीं, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा।
0: वाह
1: और परफॉर्मेंस के बाद में जो कमेंट मुझे मिला जजेस है कि उन्होंने जो डुएट कंपटीशन था उस साल से उन्होंने इंडिविजुअल भी प्राइज देना स्टार्ट किया। और वो
0: बात
1: पहला
0: है,
1: विनर बैठा वहां पे म्यूजियम में।
0: बहुत खूब।
1: तो ऐसे मेमोरीज अभी तक संभाले रखा हूँ,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: वो आज भी मैं वो
0: आपके दिल के बहुत करीब हैं।
1: गाने, हाँ, और गाने के जरिए मैं एंजॉय करता हूँ वो मोमेंट
0: जी
1: आज भी।
0: जी बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हम आपका एक और गीत लेते हैं।

0: आनंद जी, आपके पसंदीदा गायक कौन कौन है जो हमारी इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें जो प्लेबैक सिंगर्स
1: बॉलीवुड
0: हैं?
1: इंडियन
0: जी
1: ऑफ कोर्स बड़ा बॉयज किशोर दा,
0: जी जी जी जी
1: रफी साहब, लता जी,
0: जी
1: और आज के दौर पे सोनू निगम जी
0: जी जी
1: और कुमार सानू दा।
0: वाह क्या बात है।
1: तो इनको सुनने में बहुत डिफिकल्ट सिंगर्स है इनको परफॉर्म करना, बट सुनने में बहुत आसान लगता है। ये खास खास बात है, स्पेशली सोनू
0: हाँ,
1: निगम जी।
0: स्पेशली सोनू निगम जी, बिल्कुल आपने सही कहा।
1: हाँ
0: वो
1: जी, हाँ
0: जितने
1: जी,
0: हाई
1: हाँ
0: नोट्स को इतनी आसानी से ले जाते हैं
1: हाँ हाँ
0: और हम तो शायद सोच भी
1: सुनने
0: नहीं
1: में आसान
0: सकते हैं।
1: लगता है।
0: जी जी जी और
1: यस
0: बहुत
1: यस,
0: ही
1: सुनने में
0: खूबसूरत
1: बहुत
0: गीत।
1: आसान लगता
0: हाँ, बहुत ही
1: है। यस
0: खूबसूरत
1: यस
0: गीत।
1: यस,
0: हाँ, तो ये तो सारे बहुत ही महान कलाकार हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले कि इन पांचों में से आप किसी भी एक के साथ शाम बिता सकते हैं, तो आप किसको चुनेंगे और आप उनसे क्या एक सवाल करेंगे जो कि आपके हमेशा जहन में रहता हो?
1: ऑब्वियसली ये सब लीजेंड्स लोग हैं संगीत के। मैं तो कहूंगा भगवान है ये लोग।
0: जी बिल्कुल।
1: पर जैसे आपने पूछा, एक ऐसा पल मैं गुजरना चाहूंगा कि किशोर दा के साथ, और वहां पे सच को तो कोई सवाल नहीं होगा मेरा, मैं कुछ पूछूंगा नहीं। अगर पूछना होगा तो बस इतना पूछूंगा कि किशोर दा आपने जल्दी विदा ली, और बाकी तो बस लाइव उनकी आवाज सुनने को मिलता, ये काफी होता।
0: वाकई बहुत जल्दी उन्होंने विदा ले ली, और
1: हाँ जी,
0: जितने जिंदा दिली उनकी शख्सियत में थी, किस तरह वो मुस्कुरा के नाच के सबका
1: एग्जैक्टली,
0: मनोरंजन करते थे और गाते थे, अभिनय करते थे, इतना मल्टी टैलेंटेड उनकी
1: करेक्ट
0: पर्सनालिटी
1: करेक्ट
0: थी।
1: करेक्ट।
0: उनको देखते
1: तो
0: ही दिल
1: सदियों में
0: में
1: मिरेकल्स होता
0: मुस्क।
1: है।
0: जी। आनंद जी, परिवार का आपके संगीत के सफर में कितना सहयोग रहा है?
1: परिवार का बोले तो पिताजी को मेरे इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनको
0: अच्छा
1: अच्छा लगता है लेकिन इतना मोटिवेट नहीं करते थे, अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, ये क्या है, इस तरह से उनका
0: जी
1: होता था।
0: जी
1: लेकिन जब भी वो मेरे सर्टिफिकेट्स, प्राइजेस देखते या दोस्तों से सुनते तो वो उनको अच्छा लगता था, थोड़ा प्राउड फील करते थे, लेकिन
0: जी
1: उनका रुचि नहीं था इसमें।
0: जी और आपकी धर्मपत्नी?
1: मेरी धर्म पत्नी एक्चुअली, मेरा 2000 में मेरा सिंगिंग टोटली बंद था मेरा,
0: अच्छा
1: तो समाओ मेरा वो बाकी जिंदगी शुरू हुई थी आफ्टर कॉलेज,
0: जी
1: तो ये गाना थोड़ा पीछे पड़ा था। तो अभी कोविड के चलते वो मौका मिल गया, घर पे बैठे बैठे कुछ ऐप थे उसमें मैंने गाना चालू किया, तब जाके अभी बीवी को पता चले मैं गाता हूँ, उसको भी अच्छा लगा।
0: अच्छा चलिए बहुत बढ़िया।
1: तो भी
0: तो क्या
1: उसके
0: आपकी
1: पहले
0: धर्मपत्नी
1: उसे
0: भी
1: नहीं
0: गाती
1: मालूम था।
0: हैं?
1: नहीं, वो सुनती अच्छी है, गलती निकलती है बहुत
0: अच्छा।
1: वो कान से थे, बहुत बारीक बारीक गलतियां बताती है।
0: जी। तो गलतियों से याद आया कि हमारे श्रोता बेचैन हैं आपकी मधुर आवाज सुनने के लिए, तो हमारे श्रोताओं के लिए आप कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे?
1: गीत तो बहुत सारे हैं जो काफी मोटिवेशनल भी है
0: जी जी
1: और
0: दो
1: जो सफर
0: पंक्तियां
1: भी कर
0: गुनगुना
1: रहे
0: दीजिए। आज आप हमारे स्टूडियो में हमारे रूबरू बैठे हैं तो
1: हैं।
0: मैं
1: जी बेशक
0: चाहूंगी।
1: बेशक बेशक।
0: जी
1: किशोर दा का सॉन्ग है, यादगार मूवी से,
0: जी
1: 1984 को रिलीज हुई थी मूवी, तो कोशिश करता हूँ दो लाइनें सुनाने की।
0: जी जी
1: रो ना उदास हो ना, ये आंसू खो ना, यहाँ न दामन भिगो ना, कभी पाना है कभी कुछ पाना है, कभी कुछ खोना है, यहाँ जो होना है होगा वही, यही जिंदगी है, यहाँ जिए वही लोग जो सारे गम भुला के आंसुओं में मुस्कुराते हैं, आते हैं चले जाते हैं, जाने वाले कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं।
0: वाह
1: आते हैं चले जाते हैं आते हैं,
0: क्या बात है
1: बहुत
0: आनंद
1: प्यारा
0: जी,
1: सॉन्ग है।
0: आपने गाया भी बहुत खूबसूरती के साथ है,
1: थैंक यू
0: मजा आ
1: सो मच।
0: गया। तो हमारे सभी श्रोताओं और उन लोगों के लिए जो अपने सपनों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, आपका क्या संदेश रहेगा?
1: काफी मुश्किल सवाल है, बस इतना कहूंगा कि सपना देखना छोड़ो मत,
0: जी
1: सपने देखते रहो, बाकी जो ऊपर वाला देता है कबूल कर लो, सिंपल।
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत संदेश है आपका आनंद जी। आपने अपने अनुभवों और सुरों से आज की इस महफिल को सचमुच यादगार बना दिया है। हमारी शुभकामना और हमारी दुआ आपके साथ रहेगी कि आपकी आवाज यूं ही लोगों के दिलों तक पहुंचती रहे और आपके जीवन में सफलता व खुशियां हमेशा आपका साथ दें। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू
0: जी
1: सो मच।
0: जी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे जश्न सितारा गीत गुफ्तगू के एक और खास एपिसोड में, एक नई शख्सियत और संगीत की एक नई महफिल के साथ। मैं हूं आपकी आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रब राखा।
2: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो है, आपकी आवाज आपकी पहचान, और हम लेके आए हैं खूब सारे सुरीले सिंगर। और शुरुआत करते हैं जगदीश अरोड़ा साहब की आवाज में इस गीत से।

जी हाँ, आज आपको चुप नहीं रहने देंगे हम, आपको गाना पड़ेगा और जयपुर रेडियो का मंच है गाने के लिए और आप सुरीली सिंगर्स में हैं तो चुप रहने की बात तो बिल्कुल नहीं। आपकी आवाज आपकी पहचान।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड आज हमारे साथ सुरीले सिंगर्स प्रोग्राम में जगदीश अरोड़ा हैं पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से। अपने सुरीले गीत के बाद हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत है मधुसूदन जी का प्रोग्राम सुरीले सिंगर जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर।

बेहतरीन सुरीली सांझ में हम सुन रहे थे पंजाब से मधुसूदन जी का ये सोलो गीत, बहुत ही बेहद खूबसूरत गीत हमने सुना, आ गले लग जा। आइए सुनते हैं अगला गीत, आपकी आवाज आपकी पहचान, प्रोग्राम सुरीले सिंगर, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो।

वीरेंद्र जी की आवाज में हमने ये बहुत खूबसूरत गीत सुना, कोई होता अपना जिसको हम अपना कह लेते यारो। आपकी आवाज, आपकी पहचान, और आप हमारे सिंगर हैं और हम आपको अपना ही कहते हैं। और हमारे अपने एक और सिंगर हैं जिनका नाम है जगदीश अरोड़ा, गोविंदगढ़ मंडी पंजाब से। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत आपकी आवाज में, जगदीश अरोड़ा साहब की आवाज में। आपकी आवाज, आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो।

0: आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का प्रोग्राम सुरीले सिंगर्स। और अभी आपने सुना पंजाब गोविंदगढ़ मंडी के जगदीश अरोड़ा की आवाज। और इसी के साथ सुरीले सिंगर प्रोग्राम आज का यहीं तक। बेहद शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी अपनी सुरीली आवाज में इन गीतों को इस मंच पर साझा करने के लिए। सुनते रहें जब रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: Perfect.
1: Perfect.

तो दोस्तों, ये थे प्रशांत अरोड़ा, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्निकल एक्सपर्ट श्री जगदीश अरोड़ा जी के सुपुत्र। पिछले लगभग 6 वर्षों से प्रशांत पंजाब के संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे सिर्फ एक बेहतरीन गायक ही नहीं, बल्कि अपने गीतों का संगीत भी स्वयं तैयार करते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को सुरों में पिरोकर श्रोताओं तक पहुंचाना उनकी पहचान बनता जा रहा है। प्रशांत अपने संगीत को अपने YouTube चैनल परफेक्ट, जिसको हम स्पेल करते हैं PRFKT, परफेक्ट के माध्यम से भी श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, जहां उनके मौलिक गीत और संगीत, उनकी रचनात्मक सोच और संगीत के प्रति समर्पण की एक सुंदर झलक प्रस्तुत करते हैं। आज की उनकी ये प्रस्तुति ने ये साबित कर दिया है कि प्रतिभा, समर्पण और निरंतर मेहनत मिलकर सपनों को नई उड़ान देते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्रशांत अपनी कला से संगीत की दुनिया में और भी ऊंचे मुकाम हासिल करेंगे। हमारी पूरी टीम की ओर से प्रशांत अरोड़ा को ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें सफलता, सम्मान और अपार लोकप्रियता प्रदान करे और उनके सुर यूं ही हर दिल को छूते रहें।

0: नमस्कार, मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी और आप सुन रहे हैं आप सबका फेवरेट प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगु। इस प्रोग्राम में जहां हर मुलाकात में होती है एक कहानी, हर कहानी में होता है एक गीत और हर गीत में छुपी होती है दिल की एक खूबसूरत दास्तान। दोस्तों, जिंदगी की खूबसूरती शायद इसी में है कि कभी कभी हमारी मंजिल कुछ और होती है और रास्ते हमें कहीं और ले जाते हैं, लेकिन अगर जुनून दिल में जिंदा है तो इंसान अपने उस जुनून को किसी ना किसी रूप में अपने साथ लेकर चलता रहता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही दिलचस्प शख्सियत है जो पेशे से डॉक्टर हैं, कॉर्पोरेट जगत में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन दिल से आज भी संगीत के वही दीवाने हैं जो बचपन में ऑर्केस्ट्रा की पहली बीट सुनकर उसमें खो जाया करते थे। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर चैतन्य उंडे जी से और जानते हैं उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष, उनके परिवार और सबसे बढ़कर उनके संगीत के सफर की कहानी। डॉक्टर चैतन्य, जश्न सितारा गीत गुफ्तगु में मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी, मैं आज बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ आपके स्टूडियो में जश्न सितारा गीत गुफ्तगु इस कार्यक्रम में आके। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आपका और आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये हमारी खुशकिस्मती है चैतन्य जी कि आज आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ रूबरू हमसे गुफ्तगू करेंगे और हमें ना सिर्फ आपकी मीठी आवाज में आपके गीत सुनने को मिलेंगे बल्कि हमें ये भी जानने को मिलेगा कि आपके जिंदगी का सफर और संगीत का सफर कैसा रहा। तो चलिए सबसे पहले हम आपके बचपन की उस दुनिया में चलते हैं जहाँ फल्टन में आपका बचपन बीता। तो आपके पिताजी प्रेस रिपोर्टर थे और उन्हीं के कारण आपको सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ऑर्केस्ट्रा के पास मिलते थे। तो क्या आपको याद है अपना वो पहला ऑर्केस्ट्रा या वो गीत जिसने आपके मन में संगीत के लिए इतनी गहरी जगह बना ली?
1: जी बिल्कुल याद है सपना जी, वो मेरे लाइफ का इतना स्पेशल मोमेंट था। वो ऑर्केस्ट्रा बहुत ही मतलब बहुत ही गहरा असर कर गया मेरे माइंड मन पर कि जहाँ पे मैं म्यूजिक से कुछ सीख पाया हूँ और कुछ सीखने की प्रेरणा भी मिली है। उस ऑर्केस्ट्रा का नाम था ऑर्केस्ट्रा कलाकार, सुधीर सिन्हा जी उसके निर्देशक थे और प्रोड्यूसर थे। और उस छोटे से ऑर्केस्ट्रा में एक छोटी सी बच्ची ने गाना गाया था, उसका नाम था कश्मीरा शाह और उनके साथ मेल सिंगर थे मनोज जी। तो ऑर्केस्ट्रा कलाकार वॉज द फर्स्ट ऑर्केस्ट्रा तो जो मैंने सुना था और वो गीत था परदेसी परदेसी जाना नहीं। उस टाइम पे कार्यक्रमों का कुछ लिमिट नहीं होता था, टाइम लिमिट गवर्नमेंट का, तो सुबह 3-4 बजे तक भी कार्यक्रम चलते थे। तो रात को 2 बजे तक मैं जब वहां पे बैठा रहा तो मेरे पापा मुझे बुलाने के लिए आ गए, अरे तेरा दोस्त भी चला गया, कोई नहीं, तू अकेला बैठा है। तो मैं खो गया था बस उस ऑर्केस्ट्रा में।
0: तो तब आपकी उम्र क्या रही होगी?
1: तब मैं 7 या 8 स्टैंडर्ड में रहूंगा शायद।
0: तो तकरीबन 10 से 11 साल की उम्र में होंगे आप?
1: हाँ, उतना ही लगभग।
0: जी, तो आपको बड़ी बारीकियों से सारे डिटेल्स याद है अभी तक, इतनी गहरी छाप छोड़ी।
1: बहुत बहुत मतलब वो गीत ही वैसा था, कम से कम 7-8 बार उस एक गीत को वंस मोर मिला था।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी एकदम, कश्मीरा शाह नाम था उनका। आज अगर वो आपका प्रोग्राम सुन रही है तो शायद उनको भी अच्छा लगेगा।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपकी ये याद है और मैं वाकई हैरान हुई है सुनकर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मन इतना कोमल हो जाता है कि कहीं नहीं पता चलता कौन सा इंसिडेंट हमारे मन पे इतनी गहरी छाप छोड़ जाता है कि हमारी जिंदगी की जो चाल है वो बदल जाती है। बहुत खूबसूरत। तो उसके बाद फिर आपने अपने डॉक्टर बनने तक का सफर कैसे किया?
1: मैडम एक्चुअली तो ये है कि मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बचपन से मैं एक छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ पे एक महानाट्य था, डॉक्टर बाबा साहेब पुरंदर लिखित जानता राजा बोल के, तो हम घर के सभी लोग उसके कलाकार थे। तो स्टेज मेरे लिए नया नहीं था, वो लाइट्स, ऑडियंस, हजारों की ऑडियंस रहती थी सामने, तो स्टेज का कभी डर नहीं लगा। ये लगता था कि मैं आज कुछ नया करूं स्टेज के ऊपर जाकर, बहुत अच्छा फील करता था जब हजारों लोग मुझे देखते थे। तो ऐसा कुछ खास वो लगा नहीं मुझे कि स्टेज का डर वगैरह वो सब, बट तो वो मेरा एक पैशन बन गया कि मुझे हमेशा हाथ में माइक चाहिए और सामने ऑडियंस चाहिए, स्टेज चाहिए,
0: जी
1: वो सब जहन में आता रहा। तो
0: जी
1: मैं थोड़ा सा, मेरा पैशन वो बन गया था कि मुझे स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ करना है। हाँ, गाना गाना है ये तब तक फिक्स नहीं हुआ था,
0: जी
1: बट
0: जी
1: कुछ ना कुछ मुझे मिमिक्री करना है, या एक आधा छोटा सा भाषण देना है, या फिर किसी की एक्टिंग करनी है, फिल्म इंडस्ट्री में हो, या छोटी छोटी नाटिका जो हम एक अंक क्या बोलते हैं उसे मराठी में, जो एक अंक का होता है,
0: जी
1: 30-40 मिनट की एक नाटिका होती है, उसमें भी मैंने काम किया है कॉलेज के जमाने में। डायरेक्शन भी किया है उसका, मेरा दोस्त था वो लिखता था, हम लोग उसमें एक्टिंग करते थे, कभी डायरेक्शन का भी मौका मिलता
0: क्या
1: था,
0: बात है, क्या बात
1: तो
0: है।
1: वो सब भी किया है मैंने। उसके बाद में जब इंटर्नशिप में था तब एक स्टूडियो था मेरे दोस्त दोस्त का, तो आवाज में मेरी बेस होने की वजह से उसने, उनको काम मिलते थे इलेक्शन का हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री हो, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री या नॉन
0: जी
1: पॉलिटिकल हो। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत बड़े होते हैं, उसके जो
0: जी
1: सीन होते हैं, ऐतिहासिक सीन वगैरह कुछ करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं, तो उसके डायलॉग वगैरह बोलने होते, तो मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करने का भी मौका मिला।
0: अरे वाह,
1: तो वो माइक से मैं दूर नहीं गया कभी, स्टेज और माइक से। वैसे तो बनना मुझे वो था, बट घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और
0: जी
1: मम्मी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं,
0: जी
1: तो और
0: जी
1: मेरे
0: जी जी
1: पापा ऐसे थे कि देखो, उन्होंने बोला कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, समाज में अच्छी जान पहचान है, बड़े बड़े लोग जानते हैं, पॉलिटिशियंस जानते हैं, तो उनका एक सपना था कि देखो, मैंने दूसरों के बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने हाथ फैलाया है कि ये मेरा दोस्त है, इसके बच्चे के लिए कुछ कर दो वगैरह, बट मेरी एक इच्छा है कि मेरे बेटे की नौकरी के लिए मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो
0: बिल्कुल
1: तुमको जो करना है वो करो, बट ऐसा करो जिस क्षेत्र में जाओ मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा तुम्हारी नौकरी के लिए, और तुम जो भी काम करो, जो भी पढ़ाई करो, उस क्षेत्र का टॉप तुमको बन के दिखाना है। बस उनका यही गाइडेंस था मुझे, तो
0: जी।
1: मम्मी की इच्छा थी तो डॉक्टर भी बन गया मैं।
0: जी तो कहा जा सकता है कि जो आपके पिताजी की जो गाइडेंस थी और जो उनके उसूल थे, उन्होंने भी आपकी जिंदगी पे बहुत गहरी छाप छोड़ी है।
1: जी बहुत
0: जी, तो इसी के साथ हम आपका गीत लेते हैं।

0: बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हैं चैतन्य जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने पिताजी का और अपना और अपनी माता जी का डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया और अपनी होम्योपैथी की प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन फिर परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक परिस्थितियों के कारण आपको एक साथ प्रैक्टिस और नौकरी दोनों भी करनी पड़ी। तो ये दौर की कोई ऐसी याद जो अभी भी आप भूल ना पाए, वो जो संघर्ष आपने देखा है और जो कठिन वक्त था, उसने आपको क्या सिखाया?
1: सप्ता जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। लेकिन ये जो मैं प्रैक्टिस करता था और नौकरी भी करता था, ये उस टाइम पे मुझे कभी संघर्ष लगा नहीं। अब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि मैंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए थे उस टाइम पे। बट उस टाइम पे कुछ नया सीखने का मौका था। मैं मेरे पेशेंट के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकता था, बट मैं हर पेशेंट से कुछ ना कुछ सीखता गया मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में। और जो आप जैसे जानते हो, किसी भी डॉक्टर के लिए शुरुआती का दौर इतना आसान नहीं होता है। वेटिंग पीरियड होता है, पेशेंट आने के लिए भी टाइम लगता है आपके पास। तो वो सब पीरियड कम करने के लिए, और एजुकेशन लोन की रिस्पांसिबिलिटीज थी, इसके लिए मुझे जॉब करनी पड़ी, नाइट ड्यूटीज करता था मैं
0: जी।
1: और एक प्रैक्टिस भी मैं खुद के लिए भी जो मेरा मुझे एस्टेब्लिश करना था, अपना नाम कमाना करता, क्योंकि मेरे टाउन में मेरे पापा का नाम बहुत बड़ा था
0: जी।
1: तो उनके नाम को भी संभालना था और एक अच्छा डॉक्टर बन के दिखाना था, जैसा मैंने उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था, मैंने पहले बताया। तो दोनों भी करता रहा मैं। उसके बाद भी थोड़ा सा पैसे कम पड़ते थे तो एक छुट्टी लेके वीकली एक वीक में पुणे में जाता था, जो कि 110 किलोमीटर अवे है मेरे टाउन से।
0: अच्छा।
1: तो वहां पे जाके वहां पे भी पेशेंट्स देखता था मैं। बट कुछ ना कुछ सीखने को मिला वो दोनों चीजों से, प्रैक्टिस।
0: तो जो आपकी प्रैक्टिस थी और जो आपकी नौकरी थी, ये आपके होम टाउन में ही थी?
1: जी जी, दोनों एक ही जगह पे
0: जी। तो मुझे यहाँ पर एक बात बताइए चैतन्य जी, कि आजकल एलोपैथी की जो मेडिसिन हैं, वो अगर हमने जैसे क्विक रेमेडी कोई लेनी हो, जैसे जैसे स्टीरॉयड्स वगैरह भी एलोपैथी के अंडर आ जाते हैं, कभी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही होती तो डॉक्टर्स को हम खुद ही कह देते हैं कि डॉक्टर साहब कोई स्टीरॉयड इंजेक्शन दे दो या फिर कुछ ऐसा कर दो कि हमें तुरंत से आराम आ जाए, तो एलोपैथी और होम्योपैथी में आप क्या फर्क पाते हैं?

0: हैं?
1: एलोपैथी है जस्ट आपको एक, जैसे आपके ताले की चाबी खो जाती है ना,
0: जी
1: तो आप कुछ डुप्लीकेट चाबी वगैरह बना के उसको खोल के रूम के अंदर जाना, बस इतना ही है। बट वो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए, ठीक
0: जी
1: है? मतलब आप अभी मुझे पेन हो रहा है, मैं टैबलेट ले लूंगी तो दूर हो जाएगा। और होम्योपैथी से टाइम लगता है कुछ चीजों को ठीक होने के लिए, ये एक मिसकंसेप्शन है। जैसा एलोपैथी के अंदर भी कुछ ट्रीटमेंट है जो सालों साल भी चलती है, वैसा ही होम्योपैथी के अंदर भी है। होम्योपैथी के अंदर क्या है कि होम्योपैथी के पास पेशेंट एक्यूट कंडीशन में नहीं आता है। एक्यूट मतलब मुझे 2 दिन से फीवर है, तो उसके लिए कोई आता नहीं है जनरली।
0: जी
1: पहले
0: जी जी
1: पैरासिटामोल लेते हैं, उसके बाद में आते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही।
1: हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई कंजेनिटल हार्ट डिसीज है, या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग उसको यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, ऐसे बड़े बड़े बीमारी लेके आते हैं जो कि उनको 4-5 साल, 10 साल, 15 साल से होती है, और उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि 2 दिन में ठीक होना है, जो
0: जी
1: किसी भी पैथी के लिए पॉसिबल ही नहीं है परफेक्टली ठीक करना। प्लस होम्योपैथी में एक एड ऑन ये है कि उस चीज का आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा,
0: अच्छा
1: क्योंकि पूरी की पूरी मेडिसिन एक भी केमिकल से नहीं बनती है हमारी, पूरे
0: अच्छा जी
1: नेचुरल सोर्सेस है होम्योपैथी के, उसी से बनती है, और वो आपको पूरी तरह से ठीक करा देती है। तो ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में कुछ एक्यूट रेमेडीज भी है जो आपको एक्यूट जो आपके इलनेस है, डिसीज है, उसको भी ठीक करती है। 1 दिन में, 2 घंटे में भी ठीक करती है, दो तीन दिन
0: अच्छा
1: में भी ठीक करती है। और क्रॉनिक जो डिसीजेस है उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। जैसे कुछ डिसीजेस है, सोराइसिस जैसे स्किन का डिसीज
0: जी
1: है,
0: बिल्कुल
1: उसमें
0: स्किन
1: बहुत
0: का।
1: सारे, हाँ जी, और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो फिर सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है,
0: जी
1: हार्ट तक
0: जी
1: भी पहुंच सकता है वो।
0: जी
1: तो एलोपैथी में उसके लिए कुछ परमानेंट ऐसा इलाज तो है नहीं, स्टीरॉयड को
0: जी
1: छोड़कर।
0: जी जी जी
1: लेकिन होम्योपैथी में मुझे गर्व है बताने में कि इस बात का प्रॉपर तरीके से इलाज है होम्योपैथी के अंदर।
0: अच्छा, मतलब पेशेंस रखनी
1: ट्रस्ट
0: चाहिए और डॉक्टर पे पूरा ट्रस्ट रखना चाहिए तो हम।
1: करना चाहिए, होम्योपैथी ट्रस्ट का ही एक पार्ट है। जितना आप ट्रस्ट करोगे, जितना आप डॉक्टर को ट्रस्ट करके जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन बताओगे, उतना ज्यादा आपको इजी मेडिसिन देने के लिए आपके डॉक्टर को होगा।
0: नहीं, यहाँ पर मेरी एक और जिज्ञासा है। आजकल ओबेसिटी को भी बहुत बड़ा रोग माना जाता है ना?
1: जी,
0: तो एलोपैथी में अगेन अगर हम आए तो इसके कई डॉक्टर्स, या कह दीजिए कि इंडियंस को बहुत आदत होती है, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स बहुत लेते हैं, हम खुद ही अपना इलाज करते रहते हैं गूगल पढ़ पढ़ के। तो
1: जी
0: ओबेसिटी के लिए भी लोग बहुत कुछ करते हैं आजकल, तो इवन ओजेम्पिक तक ले लेते हैं, जिससे सुना गया
1: जी
0: है कि हड्डियां बड़ी कमजोर हो जाती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत
1: जी
0: जबरदस्त होते हैं। तो ऐसे
1: लोग
0: लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे होम्योपैथी के कंसर्न में?
1: देखिए, पहले तो होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, मैं तो गूगल डॉक्टर को मत रेफर करो ये बोल के बोलूंगा,
0: जी
1: क्योंकि गूगल आपको वही रिजल्ट दे देगा जो उसको फीड कराया गया है।
0: जी
1: गूगल एक एआई है जो आपको 10-15 जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कुछ ना कुछ उसके ऊपर डेटा साइंस का रूल्स इंजिन लगाया होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन लेगा। बट मेडिकल साइंस के हिसाब से हर पेशेंट अलग है, हर ताले की चाबी अलग है, जिसका ज्ञान आपके डॉक्टर को ही है। तो
0: जी
1: बिना डॉक्टर के जानकारी के वो मेडिसिन प्लीज मत ले लीजिए,
0: जी जी
1: क्योंकि डॉक्टर के लिए एक बीमारी का निदान करना, मतलब डायग्नोस करना, उसका रूट कॉज एनालिसिस करना, वो बातें इंपॉर्टेंट होती है, ना कि उस सिम्टम को रोकना।
0: जी
1: अब
0: बिल्कुल
1: जैसे सिम्टम को रोकना, पेशेंट का क्या है कि मुझे सर्दी हो गई है, नाक बह रही है, उसको बंद कर दो। तो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से नाक को, सर्दी बहने को रोकना ये बीमारी है, सर्दी बहना ये बीमारी नहीं है। अभी टॉपिक निकला है तो बताना चाहता हूँ, जैसे आपके घर में कॉकरोच घुसता है तो आप क्या करते हो, उसे मारते हो, मारने के बाद भी उसको बाहर फेंकते हो। तो कोई भी चीज जो बुरी है उसको बाहर निकाल के फेंकना ये स्वाभाविक है,
0: जी
1: जो हमारी बॉडी भी वही करती है, जो हमारा वाइटल फोर्स है बॉडी के अंदर
0: जी
1: वो भी
0: जी
1: वही करता है। जो कुछ डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स वगैरह बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं,
0: जी
1: वो चिपक जाते हैं, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक अंदर से गीला होता है, तो वो बाहर इजीली नहीं निकल पाता। तो बॉडी क्या करती है, म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रिट करती है अंदर से अपने आप, और उसमें वो पूरे डस्ट पार्टिकल, एलर्जेंस, पोलन ग्रेन जो कुछ रहेगा उसको बाहर फेंकने की काम करती है, इसलिए आपकी नाक बहती है। और आप
0: जी
1: क्या करते हो, स्टीरॉयड लेके उसको रोक देते हो अंदर, मतलब कॉकरोच तो आपने मार दिया बट वो बॉडी में ही है आपके, आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो
0: जी
1: नाक सिंपल सी बात है जो हर किसी के लाइफ में आती है 2 या 4 महीने में, सर्दी, सर्दी को रोकना उसका इलाज नहीं है, सर्दी को बहने देना, वो चीजें जो खराब है जो बॉडी के बाहर आनी चाहिए उसको बाहर निकलने देना, ये
0: जी
1: उसका तरीका है इलाज का।
0: जी
1: और
0: जी
1: इसी तरीके से होम्योपैथी इलाज कर दिया।
0: आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है हमारे श्रोताओं के लिए, तो हमारा भी श्रोताओं से अनुरोध रहेगा कि डॉक्टर गूगल के बहकावे में ना आए, और अगर आपको कभी भी कोई मेडिकली प्रॉब्लम होती है तो प्रॉपर एक डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें, ना ना कि ओवर द काउंटर अपने आप ही दवाइयां खरीद के अपना खुद का ही इलाज करें। ये बात बहुत गलत रहती है और एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली ये हमें हार्म करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। तो इसी के साथ हम डॉक्टर चैतन्य का एक गीत और लेते हैं।

0: मेरा अगला प्रश्न रहेगा डॉक्टर साहब कि आज आप इंडस इंड जनरल इंश्योरेंस में क्लेम्स ऑडिट और लीगल टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर की संवेदनशीलता और एक कॉरपोरेट लीडर की निर्णय क्षमता, क्या आपको लगता है कि आपकी मेडिकल पढ़ाई आज भी आपके काम में किसी ना किसी रूप में मदद करती है?
1: जी सपना जी, जरूर मेडिकल, क्योंकि मैं तो काम करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में।
0: जी
1: हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में क्लेम को समझना, पेशेंट की बीमारी को समझना, उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिला है नहीं मिला है वो चेक करना, कुछ बिल बढ़ाने के लिए ये होता है इंडिया में। इंडियन
0: जी
1: माइंडसेट ऐसा है, जिसके पास इंश्योरेंस है उसका थोड़ा सा मैं बिल लगाऊंगा, कहाँ पेशेंट को भी पैसे देने हैं कंपनी दे देगी, तो एग्जेजरेशन ऑफ बिलिंग होता है वहां पे
0: ये
1: जो
0: बात जो आपने
1: अननेसेसरी।
0: कही है ना डॉक्टर साहब, ये मुझे लगता
1: जी
0: है कितने ही भारतीय होंगे वो उन लोगों ने ये खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा। किसी अगर जैसे मैं आपको अपना ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, तकरीबन 2 साल पहले मुझे मेरी माता जी को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। वो बेहोश हो गई थी तो उनको थोड़ा हार्ट ट्रबल डिटेक्ट हुआ था, लेकिन वहां पर जाकर जो डॉक्टर्स ने मतलब कहा मुझे कि उन्होंने मुझे कहा कि खून की बोतल भी चढ़ गई है, पर देर वॉज नो मेंशन, उसका कोई उनकी मेडिकल रिपोर्ट में मेंशन भी नहीं था। फिर उनको इस तरह के टेस्ट करवाए गए जो कि लिंक्ड ही नहीं थे उनकी कंडीशन के साथ। तो मैं अल्टीमेटली परेशान होकर मैंने अपनी माताजी को वहां से डिस्चार्ज करवा लिया अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, घर लेकर आई और वाकई घर में 2-3 दिन के बाद ही उनकी सेहत बहुत सुधर गई। तो ये मुझे लगता है कि जहां पे इंश्योरेंस के क्लेम्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस के अंडर हम एडमिट करवाते हैं पेशेंट्स को, वहां पे हॉस्पिटल्स की भी बहुत ज्यादती होती है।
1: जी वो तो होगा ही, क्योंकि अभी प्रीवियसली क्या होता था, क्योंकि डॉक्टर के हॉस्पिटल्स होते थे,
0: जी
1: आज कंपनीज के हॉस्पिटल है। हर
0: अच्छा
1: हर डॉक्टर को कंपनी की तरफ से एक टारगेट होता है कि आपकी तरफ से इतना बिजनेस आना ही चाहिए, हम इतने लाखों करोड़ों रुपए की लैब खोल के बैठे हैं, आपकी तरफ से इतना रोज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होना
0: जी
1: ही,
0: जी जी जी जी
1: इतने रुपए का मेडिसिन आपने लिखना है, हमें फार्मेसी डिपार्टमेंट चलाना है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट चलाना है, सैनिटरी डिपार्टमेंट चलाना है।
0: जी
1: तो अब नॉर्मल फीवर का पेशेंट है, उसको ग्लोव्स पहनने की क्या जरूरत है, कैप मास्क, वो भी बिल में लिखा जाता है। तो वो सब
0: जी
1: चीजें हमें हेल्थ इंश्योरेंस में एनालाइज करनी पड़ती है, भले ही पैसे पेशेंट के जेब से नहीं जा रहे बट उसके सम इंश्योर से तो जा रहे।
0: जी
1: जब वो
0: बिल्कुल
1: फीवर के लिए अगर 1 लाख 2 लाख रुपए डाल रहा है, तो जब वाकई में उसको जब कभी बड़ी बीमारी होगी और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, तो उसका ही सम इंश्योर कम हो रहा है, उसको ही
0: जी
1: आगे पैसे नहीं मिलेंगे। तो
0: जी
1: हमें पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए मेडिकल नॉलेज जिसे है वही ये सब बातें जान सकता है कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड है कौन सा नहीं है,
0: जी
1: कहाँ
0: जी जी
1: पे
0: जी
1: बिल इन्फ्लेशन है कहाँ पे नहीं है। तो मेडिकल
0: बिल्कुल
1: की पढ़ाई तो रोज यूज होती है, हर क्लेम में यूज होती है।
0: जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम आपका एक गीत और लेते हैं।

0: डॉक्टर चैतन्य, अब हम आपके संगीत के सफर की तरफ चलते हैं। आपने तबला सीखने की कोशिश की लेकिन ये सफर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन फिर भी आपने हर जगह, स्कूल की बेंच हो, बैग हो, ताल ढूंढ ही ली। तो क्या संगीत आपके लिए कभी सीखा हुआ विषय रहा है या हमेशा से आपके भीतर स्वाभाविक रूप से ही बहता रहा है?
1: जी, कोशिश तो मैंने बहुत की सपना जी संगीत सीखने की। हर बार कुछ ना कुछ मुश्किलें आती रही, हर बार कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आता रहा और मुझे क्लासेस छोड़नी पड़ी। गाने की भी मैंने क्लास लगाई थी जहाँ पे खेलना ज्यादा अच्छा लगता था बचपन में, तो गाने की क्लास शाम को रहती थी, मुझे खेलने के लिए जाना पड़ता था, तो वो क्लास आगे नहीं पढ़ पाई। फिर मैंने तबले की क्लास लगाई क्योंकि सब दोस्तों ने लगाई थी, तो होता ना मेरे दोस्त जा रहे तो मैं भी जाऊंगा, तो मैं तबले के लिए गया तो मेरे हाथ में स्वेटिंग बहुत होती थी उस टाइम पे।
0: अच्छा,
1: तो मेरे गुरुजी ने उस टाइम पे एडवाइस किया, तुम तबला मत सीखो भी जिंदगी में कभी भी, क्योंकि जिसके हाथ में स्वेटिंग है वो तबला नहीं सीख पाएगा कभी भी। तो तुम तबला छोड़ो, दूसरा कुछ सीख लो इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे तबला भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर जिम्मेदारी आने लगी, थोड़ा सा पैसे का भी प्रॉब्लम था फैमिली में, तो फीस ज्यादा बढ़ गई थी, तो वो नहीं कर पाया। जब यहाँ पे ICICI लोम्बार्ड में पहले मैं ज्वाइनिंग किया था, तो वहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो सोचा सैटरडे संडे में गाने के क्लासेस लगा दूं। गाने के क्लासेस 6 महीना किए मैंने, मेरे अलंकार सीख कर हो गए, कम्प्लीट हो गए। जैसे राग स्टार्ट हुए, मेरी ट्रांसफर हो गई कैशलेस टीम में, जो कि टीम होती है 24/7 काम करती है, तो बोल नहीं सकते सैटरडे संडे छुट्टी होगी नहीं हुई, तो अलंकार करके मुझे वो छोड़ना पड़ा था काम। हाँ, बट तबला छोड़ने के बाद वो ताल जो होता है वो नहीं गया कभी जहन से, तो बैठे बैठे कभी बोर हो रहा था तो बेंच वगैरह बजाना स्टार्ट किया था कॉलेज में, स्कूल में
0: जी।
1: तो वो लोगों को, बाजू में बैठे वाले लोगों को थोड़ा अच्छा लगने लगा
0: जी।
1: फिर थोड़ा जोर से बजाओ, हम लोग भी सुनते हैं, तो फिर 2 हो गए 2 के 4 8 10 ऐसे लोग बढ़ते गए सुनने वाले, तू गाता भी है साथ में, बेंच भी बजाता है, बहुत अच्छा बजाता है, तो फरमाइशी आने लगी कि ये गाना सुनाओ वो गाना सुनाओ। तो जब ऑफ पीरियड वगैरह होता था तो एक छोटा मिनी ऑर्केस्ट्रा के जैसा होता था, मेरे आजू बाजू में लोग बैठे होते थे, हम 2-3 दोस्त, एक प्रशांत बोलकर एक मेरा दोस्त था, वो भी बहुत अच्छा बेंच बजाता था, ओंकार बोल के था वो फ्लूट बजाता था, तो हम ये कॉलेज में ऑफ पीरियड में चुपके से करते थे, कैंटीन में भी करते थे, कैंटीन में तो खैर कर सकते थे बांसुरी वगैरह बजाना।
0: वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है आपका जो ये छोटा सा ग्रुप था ये कॉलेज में तो खैर काफी पॉपुलर रहता होगा।
1: जी बहुत
0: जी। तो जितने भी हमारे महान कलाकार रहे हैं, जैसे कि आशा भोसले जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब या SP बालासुब्रमण्यम जी, तो आप इनमें से किस कलाकार की आवाज और गायकी से प्रभावित है ज्यादा?
1: अभी अपने नाम SP जी का ले लिया है, तो SP जी मेरे लिए सिर्फ गायक नहीं है, भगवान है, भगवान की तरह, मतलब मैं, मुझे उनको कभी मिलने का मौका नहीं मिला, पर फिर भी आप द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा तो जानते हो
0: जी,
1: बस
0: जी,
1: कुछ वैसा ही रिश्ता रहा मेरा उनके साथ में, उनके गाने सीख के, और उनके गाने से मैं विशेष रूप से प्रभावित क्यों हुआ, क्योंकि उनके गाने सुनने के बाद मुझे पता चला कि गाना सिर्फ गाना नहीं होता है, गाना एक्सप्रेस भी करना होता है। जैसे आप कुछ हैप्पीली गा रहे हो तो सुनने वाले को गाना सुन के समझना चाहिए अरे आप बहुत हैप्पी हो, जैसे आप शराब पी के गाना गा रहे हो तो सुनने वाले को आप बिना शराब पिए गा रहे हो, बट सामने वाले को सुन के लगना चाहिए अरे आप ये शायद बहुत पी के गाना गा रहा है,
0: बिल्कुल
1: वो रो रहा है तो शायद ये अरे दिल से रो रहा है, वो जो एक्सप्रेशन है SP जी की आवाज में। अब फिल्म सागर का गाना सुन लो, सच मेरे यार है,
0: अरे ये तो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है,
1: मेरा भी बहुत फेवरेट है, मतलब वो गाना आप सुनोगे तो पता नहीं क्यों आपकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट होता है आज भी
0: जी। अब आपने अगर इस गाने की बात की ही है डॉक्टर चैतन्य जी, और आप हमारे स्टूडियो में हमारे रूबरू बैठे भी हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गाने की 2 पंक्तियां हमें यहाँ पर सुना दीजिए।
1: जी जरूर। सच मेरे यार है बाकी बेकार है, सच मेरे यार है
0: बस वही प्यार है,
1: प्यार है
0: जिसे

0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब।
1: जी
0: तो अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आप अपने जो आपके इतने फेवरेट सिंगर हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम जी, कि आप उन
1: जी
0: उनसे मिल सकें और उनके साथ बैठ के कोई एक सवाल पूछ सकें, तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे?
1: सर, आप इतना जल्दी क्यों चले गए? एक बार तो मिलना था आपसे। बस कुछ नहीं, आपके पैरों को छूना था, आपके पैर पे माथा रखना था। आप इतना जल्दी क्यों चले गए, यही सवाल पूछूंगा मैं उनसे।
0: जी, बहुत इमोशनल सा माहौल हो गया है और यहाँ पर हम चैतन्य जी का एक प्यारा सा गीत लेते हैं।

0: चैतन्य जी, कोई और एसपीबी जी के साथ जुड़ा हुआ वाकया या कोई किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें?
1: जी जरूर। मैं स्म्यूल, एक एप्लीकेशन है जहाँ पे कराओके ट्रैक्स होते हैं,
0: जी
1: वहाँ पे
0: जी
1: जाना
0: जी
1: स्टार्ट किया।
0: जी
1: तो वहाँ पे डॉक्टर मीनाक्षी जी है, मीनाक्षी आनंत राम,
0: हाँ जी, मैं
1: वहाँ
0: जानती हूँ उनको। हाँ जी
1: जी वो विशाखापट्टनम से है,
0: जी मैं मिली हुई हूँ उनसे। जी
1: जी इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है, तो वो काफी करीब रही है एसपी जी की। तो
0: जी बिल्कुल रही हैं वो। हाँ
1: एसपी जी ने एक लास्ट वीडियो उनका हॉस्पिटल से दिया था लोगों के लिए, उनके फैंस के लिए, कि मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, आपकी लाइफ में आप खुश रहो, इस कुछ मैसेज का वो वीडियो था। वो वीडियो मुझे मीनाक्षी जी ने भेजा था, और वो वीडियो देख के मुझे सच में आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब वो भी काफी भावुक हो गए थे एसपी जी उस टाइम पर। कोविड का वो दौर था।
0: जी, कोविड का वो दौर था। मुझे एक्चुअली इस किस्से के बारे में पता है, क्योंकि मुझसे मीनाक्षी जी ने भी, जब मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। और मीनाक्षी जी खुद भी बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं, और
1: बहुत
0: जितनी
1: बहुत
0: कठिनाइयों से वो निकली हैं और उसके बावजूद वो चेहरे पे जैसे मुस्कुराहट रखती हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया शाइनिंग
1: और दिल में
0: एग्जाम्पल है।
1: बहुत बड़ा इतना दुख का तूफान लिए वो दुनिया
0: जी
1: को हंसाने के काम करती है, दुनिया
0: जी जी
1: को
0: जी
1: एनकरेज करती है
0: जी बहुत ही प्रेरणा मिलती है उनकी
1: बहुत।
0: जिंदगी से। जी तो डॉक्टर साहब, आपके जीवन में जो परिवार है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जैसे अक्सर हम सबके लिए ऐसे ही होता है। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरी पत्नी है और दो बेटियां हैं, हम यहाँ हैदराबाद में रहते हैं, और मेरी माता जी है, वो मेरे होम टाउन पल्टन में रहती है।
0: तो कोई ऐसी सीख या संस्कार जो आपके पिताजी ने आपको दिया हो और जिसे आप अपनी बेटियों तक पहुंचाना चाहते हो?
1: जी जरूर। मेरे पिताजी ने कहा है कि हमेशा अगर आपको कोई मदद करता हो और आप वो मदद करने में सक्षम हो तो जरूर उसकी मदद कीजिए, चाहे फिर वो आर्थिक मदद हो या फिर किसी को हौसला देना हो, किसी का कुछ काम करना हो तो जरूर कीजिए। कभी किसी को टाइम मत बोलिए कि अभी इतना रात में मैं कहाँ आऊंगा, क्या
0: जी
1: करूंगा।
0: जी जी
1: मैं भागता हूँ, भाग जाता हूँ अभी भी। कोई भी मुझे एक कॉल करके कुछ भी मदद मांगता है, मैं आज भी भाग जाता हूँ। किसी की शादी हो, कुछ दुख भरा माहौल हो या फिर और कुछ, तो
0: जी
1: मेरे पिताजी ने कहा कि कभी किसी की शादी या वास्तु शांति में मत जाओ, बट किसी का क्रीमेशन में जरूर जाओ,
0: जी जी
1: क्योंकि वो एक दौर होता है जहाँ पे भावनात्मक रूप से इंसान को एक सपोर्ट की जरूरत होती है। वहां पे बस उस इंसान के साथ में रहो, जो हो सके वो हेल्प करो। तो
0: जी
1: मैं आज भी, मुझे कोई भी इंसान, मतलब जान पहचान का नहीं है और फिर बात मुझे कॉल करके पूछता है कि कुछ हेल्प के लिए, तो मैं ना नहीं मुझसे बोला जाता है। शायद ये मेरा एक ड्रॉबैक है या पिताजी की सीख है, पता नहीं, बट यही मैसेज मैं मेरी बेटियों को भी कन्वे करना चाहूंगा।
0: जी इसे ड्रॉबैक नहीं कहते, बल्कि हम कहेंगे कि आपकी शख्सियत का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, जो कि मैं तो यही कहूंगी कि हर किसी को ये बात सीखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं, हर सफल इंसान के पीछे एक औरत खड़ी होती है, तो मैं
1: जी
0: चाहूंगी कि इस वक्त जब आपका ये प्रोग्राम सारी दुनिया सुन रही है, और निसंदेह आपका परिवार भी सुन रहा होगा, तो यहाँ पर क्या आप अपनी पत्नी के लिए दो शब्द बोलना चाहेंगे?
1: मेरी जिंदगी में दो औरतें हैं,
0: जी
1: सबके पीछे एक होती होगी, मेरी जिंदगी में दो है।
0: जी
1: पहली है मेरी माता जी और दूसरी मेरी पत्नी। माता जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, छोटी छोटी चीजों में बहुत सारी सीख उन्होंने सिखाई। शायद उन्हें याद नहीं होगा, बट छोटी मोटी बातों में उन्होंने उनसे मैं कुछ सीखता रहा सीखता रहा। या फिर कुछ बड़े फैसले हो तो उन्होंने मुझे कभी रोका टोका नहीं है माता जी ने, कि ये मत करो, वो मत करो, तुमको सही लगता है ना, तुम वो चीज संभालने के लिए सक्षम हो ना तो करो, उन्होंने रोका नहीं, मुझे गाइडेंस किया है।
0: जी।
1: और पत्नी का तो हर चीज में सपोर्ट रहता है, उसने मुझे कभी, हाँ, उसको पर्सनली मेरा ये गाना गाना, इवेंट और इवेंट्स में जाना, लोगों से मिलना, वो इतना खास पसंद नहीं है, बट वो मुझे रोकती नहीं है कभी, ठीक है तुमको करना है तो करो, बट मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो बोल के। क्योंकि अभी सर्विस करने में सैटरडे संडे टाइम होता है, तो शी इज वेटिंग अभी कि मुझे टाइम देंगे इस सैटरडे संडे, और मैं कहीं स्टूडियो इवेंट में या फिर दोस्तों के साथ चला जाता हूँ तो थोड़ा सा नाराज हो जाती है,
0: जी
1: बट शी इज नाइस, एक सपोर्ट तो
0: बहुत
1: करती है।
0: बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से आपके साथ रहेंगी कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, और यूं ही आपस में प्यार आप लोगों का बना रहे।

0: तो अंत में मैं आपसे जो सवाल करना चाहती हूँ वो शायद आपकी पूरी जीवन यात्रा का सार हो जाए कि डॉक्टर से कॉर्पोरेट प्रोफेशनल और फिर भी दिल से संगीत के दीवाने चैतन्य, तो अगर आज आप अपने बचपन वाले चैतन्य से मिलेंगे तो उनसे क्या कहेंगे?
1: उनसे कुछ मैं कहूंगा कि जब बुरा दौर था जिंदगी का, पैसों की कमी थी, पैसों की कमी की वजह से कुछ सपने पूरे नहीं हो पाए, खैर वो भी तुमने एक्सपीरियंस कर लिया, अब जब सब कुछ भगवान की दया से ठीक चल रहा है तो अभी इस चीज को एंजॉय करो
0: जी,
1: मत सोचो कि इसके पहले तुमने क्या किया और अब क्या कर रहे हो, जो तुम्हारे सामने लाइफ आई है उसको एंजॉय करो।
0: बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में आप अपने संगीत के साथ के इस सफर को कहां तक ले जा सकते हैं?
1: आगे की तो बात पता नहीं, बट आपके साथ यहाँ स्टूडियो में आकर तो बहुत बहुत मैं बड़ा बन गया हूँ संगीत की दुनिया में, ऐसा लग रहा है। बट आगे मेरा सपना वही रहेगा, स्टेज, माइक और आगे हजारों की ऑडियंस।
0: क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो जाते जाते जश्न सितारा गीत गुफ्तगू के हमारे सभी श्रोताओं के लिए मैं चाहती हूँ कि आप कोई संदेश दें, खासकर उन लोगों के लिए जिनके दिल में कोई सपना या जुनून है लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियों के कारण वे उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
1: जी, अगर वो आपका सपना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात मैं आपको बोलूंगा, सपना वो नहीं है जो सोने के बाद आता है, सपना वो है जो आपको सोने ही नहीं देता। तो कभी भी आपने सपने को छोड़ो मत। हाँ, अभी के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसको थोड़ा साइड में रखो, जो आगे आपकी लाइफ में प्रॉपर प्रायोरिटीज है उसको इंपॉर्टेंस दे दो, वो जिम्मेदारियां निभा दो, बट अपने सपनों को छोड़ो मत कि मैं पूरा नहीं कर पाया। जब कभी भी मौका मिलेगा आप सपनों को फिर से कॉन्सेंट्रेट करो सपनों के ऊपर और उसको जरूर पूरा करो।
0: बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही चैतन्य जी, आपसे बात करके सचमुच ये लगा कि जिंदगी चाहे हमें कितने भी अलग अलग रास्तों पर ले जाए पर अगर दिल में जुनून और संगीत की धुन जिंदा हो तो इंसान अपने सपनों से कभी दूर नहीं होता। आपने अपने संघर्ष, अपने परिवार, अपने माता पिता की बातें और संगीत के प्रति अपने परिवार अपने प्यार को जिस खूबसूरती से हमारे साथ साझा किया है उसके लिए जश्न सितारा गीत गुफ्तगू की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चैतन्य उंडे।
1: धन्यवाद सपना जी।
0: तो दोस्तों, मैं हूँ सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी और अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। यूं ही सुनते रहिए जश्न सितारा गीत गुफ्तगू प्रोग्राम। दोबारा मिलेंगे एक नई आवाज, एक नई कहानी और एक नए नगमे के साथ। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रब राख।
2: क्या जगह है दोस्तों,
3: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम आज के कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं मिलिंद पंडित शिकागो यूएसए से, और आप लेके आए हैं खूबसूरत मुकेश साहब के नगमे। आइए सुनते हैं उनका पहला गीत।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। मुकेश जी की याद में कुछ गीत लेके आए हैं अपने एल्बम से, जयपुर रेडियो के सुपर डुपर सिंगर मनमोहन सिंह रावत। आइए सुनते हैं आज उन्हीं के गाए कुछ गीत।

0: जो हमारे मीत ना होते तो सच में क्यों गाता मैं बेबस घुट के मर जाता मैं।
1: तुझको प्यार किया।
0: मनमोहन सिंह रावत, जयपुर रेडियो के सुपर डुपर सिंगर।

हार्ट टचिंग सॉन्ग, हमने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा उतना। सच में मुकेश जी को हम इतना ही प्यार करते हैं और इससे ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे जयपुर रेडियो के सुपर डुपर सिंगर मनमोहन सिंह रावत, जो उनकी याद में इस तरह गीत गाते हैं। तभी तो जिक्र होता है और जलवों की बात होती है।

सॉलफुल गीत, प्यार की पुकार और प्यारा सा दिल में समाया हुआ गीत, मनमोहन सिंह रावत की आवाज़।

ये जिंदगी मुझे कहाँ पर ले आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और हमारे साथ हैं जयपुर रेडियो के सुपर डुपर सिंगर मनमोहन सिंह रावत जयपुर से ही। आइए सुनते हैं, तेरी निगाहों पे हम क्यों मर गए।

मनमोहन सिंह रावत की आवाज़, जयपुर रेडियो के सुपर डुपर सिंगर, आपकी आवाज़ आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। और ये प्यारे से नगमे आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, आपकी आवाज़ आपकी पहचान प्रोग्राम मुकेश स्पेशल। मुकेश जी की याद में आज जयपुर रेडियो के सुपर डुपर सिंगर मनमोहन सिंह रावत लेके आए हैं कुछ ऐसे यादगार गीत जिनको हम कभी नहीं भुला पाएंगे, भूल भी नहीं सकते, इसलिए गाते हैं और पुरानी यादों में लौट आते हैं। लौट आते हैं क्या ये कहेंगे, लौट जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। अब जो गीत आप सुनेंगे, उस गीत के लिए हमने मनमोहन सिंह रावत साहब से विशेष आग्रह किया कि आपका प्रोग्राम तभी होगा जब आप ये गीत इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, यानी अपनी आवाज़ में गा के हमें ज़रूर भेजिएगा इस प्रोग्राम की खातिर। आइए सुनते हैं वो खास गीत जिसके लिए हमने फरमाइश की। मनमोहन सिंह रावत की आवाज़, आपकी पहचान।

गए हम बीच भंवर में करके 60 पार। आपने सुना ये सुरीला सॉन्ग मुकेश जी की आत्मस्मृति में गा रहे थे जयपुर रेडियो के सुरीले सिंगर मनमोहन सिंह रावत। सच में रावत साहब ने हमारा मन मोह लिया।

इसके सिवा जाना कहाँ। मनमोहन सिंह रावत, जयपुर रेडियो के सुपर डुपर सिंगर, आप सुन रहे हैं मुकेश जी की याद में ये खास प्रोग्राम।

आपने सुना प्रोग्राम मनमोहन सिंह रावत की आवाज़ में, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है।

और अब उन श्रोताओं के नाम हम लेना चाहेंगे जिन्होंने इस प्रोग्राम को सुना और सराहा। मंदाकिनी शाह बड़ौदा गुजरात से, जूनागढ़ गुजरात से फाल्गुनी शाह, श्याम बिहारी शर्मा वेस्ट बंगाल कोलकाता से, स्मृति चतुर्वेदी सियाटल यूएसए से, सुनीता शर्मा जगह का नाम नहीं लिखा है, शुभ्रा भट्टाचार्य आमेर राजस्थान से, मीनाक्षी राहुल पाटनी जयपुर राजस्थान से, तनुजा महेश्वरी मुंद्रा मुंबई महाराष्ट्र से, शशि चालानी जगह का नाम नहीं लिखा है, मृदुल त्यागी भोपाल से, सूरज मल्होत्रा भोपाल से, विक्रम भोपाल से, लीसा आदिक, हीना मनीष मेहता सुरेंद्रनगर गुजरात से, अब्राहम मुंबई महाराष्ट्र से, रीमिया गान जगह का नाम नहीं लिखा है, जर्दले लीमा और विक्रम सारसार, आप सबका आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और अब हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ी देर में हम लेके आ रहे हैं एक और सुरीला पैगाम मुकेश जी के नाम। और ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं हमारे संग शामली यूपी से आदेश शर्मा, आपके साथ को सिंगर होंगे अंजू गोड मुंबई महाराष्ट्र से और सूरत गुजरात से नैना रावल।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और हमारे संग हमारे साथ हैं इस विशेष प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में हम लेके आए हैं आज मुकेश जी के गीत। और हमारे संग हैं तीन सुरीले मेहमान, आदेश शर्मा शामली उत्तर प्रदेश से, अंजू गोड़ मुंबई से, और नैना रावल सूरत गुजरात से। जी हाँ, हम भारतवर्ष में रहते हैं और एक साथ एक प्रोग्राम में हम स्पर्श कर रहे हैं तीन राज्यों का। आइए पहले गीत के साथ आदेश शर्मा की आवाज़।

सुर की गति मैं क्या जानूं, ये कह रहे थे आदेश शर्मा और मुकेश जी के गीत। फिल्म जीना इसी का नाम है से हमने इस गीत को लिया, इस प्रोग्राम को लिया। और अगले गीत में अंजू गोड के साथ क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। आदेश शर्मा और अंजू गोड की आवाज़ें आप सुन रहे हैं, आपकी आवाज आपकी पहचान जयपुर रेडियो पर। बिल्कुल सावन का महीना है,

आपने सुना अंजू गौड़ और आदेश शर्मा की आवाजों में ये युगल गीत, और आज सुनते हैं अब एक एकल गीत आदेश शर्मा की आवाज में।

मुकेश जी के गीतों के सामने हम जला रहे हैं दीप अपनी आवाजों के, अपनी आवाज के दीप में। ये गीत सुन रहे थे आप आदेश शर्मा का, शामली यूपी से इस मंच पर गा रहे थे फिल्म आनंद का ये गीत। और आइए सुनते हैं नैना रावल और आदेश जी की आवाज में ये डुएट। सूरत गुजरात से इस मंच पर आदेश जी का साथ दे रही हैं नैना रावल।

नैना रावल और आदेश शर्मा की आवाजों में आपने सुना ये दोगाना, आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आइए सुनते हैं आदेश शर्मा की आवाज में ये सुरीला सॉन्ग।

और हम आज सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आपकी आवाज, आपकी पहचान और हमारे संग हैं तीन सुरीले मेहमान, शामली यूपी से आदेश शर्मा, मुंबई से अंजू गोड़ और सूरत गुजरात से नैना रावल। आपकी आवाज, आपकी पहचान। और आइए आप सुनते हैं अंजू गोड़ और आदेश शर्मा का ये

और ये सुरीला चुलबुला गीत आपने सुना अंजू गौड़ और आदेश शर्मा की आवाजों में। आइए सुनते हैं अगला सॉन्ग। गा रहे हैं आज के सुरीले मेहमान आदेश शर्मा।

आदेश शर्मा, और आइए अब सुनते हैं एक राजस्थानी दोगाना। गा रहे हैं शामली यूपी के आदेश शर्मा, और साथ दे रही हैं नैना रावल सूरत गुजरात से।

ये सुरीला दुगाना आपने सुना आदेश शर्मा के साथ डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संगीतमय श्रद्धा स्वर मुकेश जी को और इन गीतों को लेके आए हैं शामली यूपी के आदेश शर्मा। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच और पल पल गुजरती ये शाम।

मैं हर एक पल का शायर हूं और हर एक सिंगर मेरी कहानी है। एक सिंगर में तू जीता है, एक सिंगर मेरी कहानी है। और यही कहानी हम दोहराते हैं, गीत गाते हैं और आगे चलते जाते हैं। आपने सुना आदेश शर्मा की आवाज में ये सुरीला सॉन्ग, और आइए आप सुनते हैं ये दो गाना जिसे आवाजें दे रहे हैं मुंबई की अंजू गोर्ड और शामली के आदेश शर्मा।

बिल्कुल हम नहीं रोकेंगे, आप आगे पीछे पीछे आगे चलते रहिए और गीत गाते रहिए। आपने सुना ये अलबेला सा मस्ताना सा गीत अंजू गौड़ और आदेश शर्मा की आवाजों में, और कई सदियां बीत गई हैं लेकिन गीत वही गाए जा रहे हैं जो हमने गाए थे, दोहराए थे और फिर गाते गाते गाते रहेंगे। फिर वही आवाज आदेश जी की, कई सदियों से कई जन्मों से तेरे प्यार को

आजा के अधूरा है अपना मिलन, और ये मिलन पूरा कर रहे हैं अगले गीत में नैना रावल के साथ आदेश शर्मा, बागों में कैसे ये फूल खिलते हैं। आइए ये सुरीला गीत सुनते हैं।

0: खुश हो जाए।
1: बागों में कैसे ये फूल खिलते हैं। नैना रावल सूरत से आवाज दे रही थी आदेश शर्मा के साथ इस गीत में, और अब वो गीत जीना इसी का नाम है, जानते हैं ना आप, जो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। और इस गीत को गा रहे हैं शानदार आवाज लेके आदेश शर्मा।

हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और सच में मिल सके उधार तो लेते रहना। बस जीवन में मुस्कुराना जरूर, यही कह गए थे हमें मुकेश जी अपने गीतों से। और यही बात जीवन का दर्शन है, जीना इसी का नाम है। आपने सुना प्रोग्राम संगीतमय श्रद्धांजलि, सुरीले सिंगर मुकेश जी के नाम। और इस प्रोग्राम में जिन सिंगर्स मेहमान ने हमारे संग आप लोगों के लिए गीत गाए, आप हैं शामली यूपी के आदेश शर्मा, मुंबई महाराष्ट्र की अंजू गोड और सूरत गुजरात की नैना रावल। इसके साथ ही आज का ये सुरीला प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। आप सबका आभार और धन्यवाद।

चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। अर्ची और भूपेंद्र के इस गीत के बाद प्रीत को बनाए रखने वाले वादे के साथ हिदायत नजर ना चुराने की। इस गीत में डॉक्टर हरप्रीत सिंह हैरी आ गए हैं अर्चू रानू का साथ देने।

वीजी विनोद गुप्ता और अर्जुन रानू कह रहे थे, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना क्या सुनना है, समय का ये पल थम सा गया है। थमे हुए इस पल को संजो के रखते हैं और आइए सुनते हैं धनंजय और अर्जुन रानू को दिल की बात कहते हुए।

दिल है कि मानता नहीं, और आप हैं तो शिकवे भी हैं, शिकायत भी है, आपकी नजदीकी भी है और मनाने के अंदाज भी। एक बार फिर धनंजय अर्चुरानू के संग इस प्यारे से गीत में।

धनंजय और अर्चु रानू के इस सुरीले सॉन्ग के बाद स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में।

तेरे होठों से मैं शबनम चुराऊंगा, तेरे होठों से मैं शबनम चुराऊंगा, मेरी नस नस में तू समाई है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। और ये कसमें वादे प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में आप सुन रहे हैं अनुराग की आवाज, इस मंच के मेल सिंगर। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। सड़क फिल्म के इस गीत के बाद आप सुनते हैं अभी अभी जो शायर बने हैं और जिनको देखते ही शायरी आ गई उनकी बात। आवाज फिर वही, इस मंच के मेल सिंगर अनुराग सिन्हा।

प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। जब से देखा और जब से सुना जयपुर रेडियो का ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और गीत बन के आज इस मंच पे इस मंच के मेल सिंगर हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं अनुराग सिन्हा मुंबई महाराष्ट्र से। आपकी आवाज आपकी पहचान, आइए सुनते हैं इसी आवाज को एक बार फिर अगले गीत में।

यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। और हम कहेंगे कसम से बड़ी है कसम प्यार की, और प्यार के गीत गाने की कसम खाई है हमारे अनुराग ने। और इस मंच के मेल सिंगर अनुराग को प्रोग्राम में आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। और अब इस मंच के मेल सिंगर अनुराग सिन्हा मुंबई महाराष्ट्र से कह रहे हैं, जयपुर रेडियो को तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। और हम क्या कहें, आपकी दुहाई है दुहाई है दुहाई है। तो आइए सुनते हैं अनुराग का ये गीत, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, इस प्रोग्राम के तहत

तेरे होठों से मैं शबनम चुराऊंगा, तेरे होठों से मैं शबनम चुराऊंगा, मेरी नस नस में तू समाई है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। और ये कसमें वादे प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में आप सुन रहे हैं अनुराग की आवाज, इस मंच के मेल सिंगर। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। सड़क फिल्म के इस गीत के बाद आप सुनते हैं अभी अभी जो शायर बने हैं और जिनको देखते ही शायरी आ गई उनकी बात। आवाज फिर वही इस मंच के मेल सिंगर अनुराग सिन्हा।

प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। जब से देखा और जब से सुना जयपुर रेडियो का ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और गीत बन के आज इस मंच पे इस मंच के मेल सिंगर हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं अनुराग सिन्हा मुंबई महाराष्ट्र से। आपकी आवाज आपकी पहचान, आइए सुनते हैं इसी आवाज को एक बार फिर अगले गीत में।

0: यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। और हम कहेंगे कसम से बड़ी है कसम प्यार की, और प्यार के गीत गाने की कसम खाई है हमारे अनुराग ने। और इस मंच के मेल सिंगर अनुराग को अभी तक आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए
3: जयपुर रेडियो पे गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम को सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं अमीषा पटेल वडोदरा गुजरात से लेकर आ गई हूँ गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम का एपिसोड नंबर 10। और मेरे साथ है आजय देवेंद्र जी। आजय देवेंद्र जी का मैं स्वागत करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे साथ इस एपिसोड को कंडक्ट कर रहे हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं इस एपिसोड को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी मेरा साथ देने के लिए।
4: बहुत बहुत धन्यवाद अमीषा जी मुझे आपके साथ शामिल करने के लिए, और मैं आभारी हूँ गाता रहे मेरा दिल का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं जयपुर रेडियो में आपका साथ दूं और इस खास प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। थैंक यू सो मच।
3: जैसे कि हमने एपिसोड 9 में भी बताया था कि हमने 19 जुलाई में जो इवेंट हुई थी जिसका थीम था रेन सॉन्ग्स, हमने एपिसोड 9 भी उसी सॉन्ग्स में से लिया था और एपिसोड 10 भी हमने उसी इवेंट के सॉन्ग्स से लिया है। तो श्रोतागणों को एपिसोड 10 में भी सारे रेन सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे। तो आशा करती हूँ आप सबको ये हमारी थीम भी पसंद आएगी और ये एपिसोड भी। मैं गाता रहे मेरा दिल के श्रोतागण और जयपुर रेडियो के श्रोतागण से ये बात कहना चाहूंगी कि हमारा अगला प्रोग्राम यानी कि गाता रहे मेरा दिल इवेंट जो कि वडोदरा में नेक्स्ट होने वाला है वो 6 सितंबर को हो रहा है वास्तविक ऑडिटोरियम में। ये हमारा ऑडिटोरियम में पहला शो है और इसे देखने के लिए सभी श्रोतागण आमंत्रित है क्योंकि इसमें हमने कोई चार्जेस नहीं रखे हैं सुनने के लिए। तो आप सभी जो जयपुर रेडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, गुजारिश है कि 6 सितंबर को वास्तविक ऑडिटोरियम वडोदरा में हमारे जो इवेंट होने जा रहे हैं शाम 4 बजे से 8 बजे का टाइम है और हमारे सिलेक्टिव सिंगर्स उसमें गा रहे हैं। तो आप सभी उस प्रोग्राम को सुनने के लिए ज़रूर आए। जो बड़ोड़ा में रहते हैं वो तो आए ही, लेकिन अगर कहीं और से भी कोई आ पा रहा है सुनने के लिए तो ज़रूर शामिल हो इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। तो आप सबका स्वागत रहेगा 6 सितंबर वास्तविक ऑडिटोरियम शाम 4 बजे से 8 बजे तक। चलिए तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कुछ अलग तरीके से इस बार। जी हाँ दोस्तों, इस बार पहली बार हम लेकर आ रहे हैं गाता रहे मेरा दिल का थीम सॉन्ग जो कि हम हर इवेंट की शुरुआत में गाते हैं। जब भी हमारी इवेंट होती है ये गाना हम सबसे पहले गाते हैं। गाता रहे मेरा दिल का जो टाइटल ट्रैक है वो हमारा थीम सॉन्ग है और हर बार कुछ अलग तरीके से थीम सॉन्ग को प्रस्तुत करते हैं। कभी हम दो ऑर्गेनाइजर मिलकर गाते हैं, कभी हमारे रेगुलर सिंगर्स को भी इसमें शामिल करते हैं। तो 19 जुलाई को जो इवेंट हुई थी इसमें हमने 5 लोगों ने ये थीम सॉन्ग गाया था जिसमें मिस फाल्गुनी, मिस्टर चिराग, मिस निशी, मैं यानी कि अमीषा और मिस्टर जीत वाधवा। तो चलिए सुनते हैं इस खूबसूरत गाने को जो कि

क्या बात है, क्या बात है। गाता रहे मेरा दिल के 10th एपिसोड में आपने ये पहला धमाका किया है जो थीम सॉन्ग को चुना है। फाल्गुनी जी, चिराग जी, निशी जी, जीत वाधवा जी और आप खुद अमीषा जी, क्या जबरदस्त गाया है आपने। चलिए हम आगे वाला गीत सुनते हैं जो लॉफर फिल्म से लिया गया है और इसे रफी साहब ने गाया था। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को लक्ष्मी प्यारे ने संगीतबद्ध किया था और गीत के बोल है आज मौसम बड़ा

क्या बात अनिल जी, बहुत ही खूबसूरत आवाज आपकी और उतना ही खूबसूरत अंदाज रहा गाने का। बहुत ही मजा आया सुनने में इस बारिश के गाने को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे गाने की तरफ। ये जो गाना लेकर आ रही है मिस योगिता। योगिता जी हमारे गाता रहे मेरा दिल इवेंट में पहली बार आई थी और बेहद ही खुशी है कि उनको हमारी इवेंट भी पसंद आई और हमें भी उनकी गायकी उतनी ही पसंद आई। तो इस बार जो गाना हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं योगिता जी की आवाज में, वो है हाय हाय ये मजबूरी। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना है, रोटी कपड़ा और मकान मूवी से लता जी का गाया हुआ। तो चलिए सुनते हैं योगिता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना।

भाई क्या बात है योगिता जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है। सब दर्शकों ने इस गीत को सुना और वाह वाह किया है। आइए सुनते हैं हम मधुर सुल्तानपुरी साहब का लिखा ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और मुकेश जी का गाया हुआ। मंजीत इस गीत को गा रहे हैं और गीत के बोल हैं, तोबा ये मतवारी चाल झुक जाए फूलों की डाल। बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं हम मंजीत जी की आवाज में।

क्या बात, वाह मंजीत जी, मजा आ गया सुनने का। इस गाने को आपने बेहद ही खूबसूरत तरीके से गाने को निभाया, गाया। आशा करती हूँ श्रोतागणों को भी उतना ही मजा आया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और ताल से ताल मिलाते हैं ज्योति जी की आवाज में। जी हाँ दोस्तों, ज्योति जी हमारे ग्रुप की रेगुलर सिंगर है, मेंबर है, और आपने उनको पहले भी सुना होगा जयपुर रेडियो प्रोग्राम में। इस बार वो एक बहुत ही खूबसूरत रेन सॉन्ग को लेकर आ रही है, ताल से ताल मिला, जो कि ताल मूवी से है और मजेदार गाना है और मजेदार सिंगर भी है। तो चलिए सुनते हैं इस खूबसूरत गाने को।

बात है ज्योति जी, आपने तो ताल से ताल मिला ली है और अपने सुरों को और जादू के रूप में बिखेर दिया है। सभी श्रोताओं के दिलों पर ये गीत राज करेगा। ताल से ताल मिला, बहुत खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं प्रमोद जी से निगाहें फिल्म का एक गीत, जिसे आनंद बख्शी साहब ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने संगीतबद्ध किया और इसे मोहम्मद अजीज ने गाया है। बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं प्रमोद जी से।

वाह प्रमोद जी, क्या खूबसूरत गाना सिलेक्ट किया है आपने। एक हटके गाना जो जनरली किसी कैरियोके मीट में हमने सुना नहीं है या सुनने को नहीं मिलता है जल्दी से। लगता है ये हमारी थीम का असर है कि कुछ हटके गाने चुने गए हैं रेन सॉन्ग्स के लिए। तो ये गाना भी वैसा ही था और आपने इस गाने को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया, इसलिए सुनने का भी उतना मजा आया और उम्मीद है हमारे श्रोतागणों ने भी इसे एंजॉय किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले गाने की तरफ, जो है खिलते हैं गुल यहाँ। जी हाँ दोस्तों, इस गाने में बारिश तो हो रही है लेकिन बर्फीली बारिश है। जी हाँ, तो इसमें जो बर्फीला मौसम है और जो स्नोफॉल है उस वजह से इसको भी हमने बारिश के गानों में काउंट किया है। और ये गाना लेकर आ रहे हैं विनोद जी, जो कि हमारे ग्रुप में बहुत ही रेगुलरली गाते भी हैं और एक बढ़िया सिंगर है। तो किशोर कुमार जी का गाया हुआ शर्मिली मूवी से गाना खिलते हैं गुल यहाँ, चलिए सुनते हैं विनोद जी की आवाज में।

उफ विनोद जी, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने इस गीत को गुंजायमान किया है हमारे जयपुर रेडियो के मंच से। दोस्तों, डिजिटल वॉइस फंड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाता रहे मेरे का, गाता रहे मेरा दिल का 10th एपिसोड। आइए हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अर्लिन से एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो शुभा मुद्गल के एल्बम से लिया गया है, आपके सावन ऐसे बरसे। बहुत खूबसूरत गीत है और गीत को सुनाने के लिए आ रही है अर्लिन, आइए सुनते हैं।

वाह अरलिन जी, क्या बात। सुबह मुग्दल का गाना और इस बेहतरीन तरीके से निभाना, सच में आपने एक मुश्किल काम करके दिखाया है और हमें बेहद खुशी है कि आप हमारी इवेंट में उदयपुर से आई और इस खूबसूरत गाने को गाया, निभाया और हमने इसे जयपुर रेडियो में प्रस्तुत किया। तो आपको बहुत सारी बधाइयां इस गाने को गाने के लिए और निभाने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रोग्राम का आखिरी गाना है और इस खूबसूरत गाने को गाया है मिस्टर जवाहर ने। जवाहर जी भी बहुत अच्छे सुरीले सिंगर है और जो गाना वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है बरखा रानी जरा जम के बरसो। जी हाँ दोस्तों, मुकेश जी का गाया हुआ ये खूबसूरत रेन सॉन्ग है। तो चलिए सुनते हैं जवाहर जी की आवाज में अगला गाना।

0: डिजिटल वॉइसपॉड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है वो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं गाता रहे मेरा दिल का 10th एपिसोड। मेरे साथ है अमीषा पटेल जी और मैं हूँ आरजे देव, आप सबका जाना पहचाना।
1: थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत आज का ये सफर रहा गाता रहे मेरा दिल का, जिसे हमने 10th एपिसोड के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत किया। मैं हूँ आरजे देव और मेरे साथ अमीषा पटेल जी। अमीषा जी क्या कहते हैं
2: कार्यक्रम के अंत में? मैं सभी सिंगर्स जो कि गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम में अब तक गा चुके हैं उन सभी सिंगर्स का बहुत शुक्रिया करती हूं कि उन्होंने अपनी गायकी से इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए हैं। और मैं जयपुर रेडियो के श्रोतागणों का भी दिल से धन्यवाद करती हूं हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए। साथ में मैं आरजे देवेंद्र जी का शुक्रिया करती हूं मेरे साथ इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करने के लिए। जयपुर रेडियो के जो भी टीम मेंबर है, जयपुर रेडियो जो चलाते हैं, जैसे कि हरिशंकर व्यास जी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से जयपुर रेडियो से जुड़ने का मौका देने के लिए। और आशा करती हूँ आगे भी हम इस तरह से जुड़े रहेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे ऑर्गेनाइजर मिस्टर जीत वाधवा का जो कि ये पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करने के यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो भी मदद की जरूरत रहती है उसमें मेरी मदद करते हैं। और साथ में हम पूरा जो टीम वर्क करते हैं, एक तरह से ये पूरा जयपुर रेडियो और गाता रहे मेरा दिल का टीम वर्क है, इसमें जो जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो धन्यवाद श्रोतागण इस एपिसोड को सुनने के लिए। जल्द ही मिलते हैं हम दूसरे प्रोग्राम में। धन्यवाद।
3: आपने सुना प्रोग्राम गाता रहे मेरा दिल, और आइए अब सुनते हैं मनमोहन सिंह रावत की आवाज में ये सुरीला नगमा।

जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। और ये सुरीला गीत गा रहे थे जयपुर रेडियो के सुपर सिंगर मनमोहन सिंह रावत। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम गीत लाजवाब, और इस प्रोग्राम को लेके आई हैं सियाटल यूएसए से, यानी सियाटल अमेरिका से, समृद्धि चतुर्वेदी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृद्धि सियाटल से, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के प्रोग्राम जिसका नाम है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब के एपिसोड नंबर 5 में। आज के हमारे एपिसोड का नाम है प्यार की नोकझोंक। आज के गीतों में कोई बड़ी बड़ी मोहब्बत की बातें नहीं होंगी। आज प्यार थोड़ा नखरीला है, थोड़ा शरारती है और खूब सारी नोकझोंक करने वाला है, क्योंकि कभी कभी प्यार की शुरुआत मैं तुमसे प्यार करता हूँ से नहीं होती है, बल्कि शुरुआत होती है तुम ऐसे क्यों हो, और जवाब आता है अच्छा और तुम कौन सी कम हो। तो आज देखते हैं इन सवाल जवाबों के बीच कब शिकायत प्यार में बदल जाती है। तो हमारी कहानी में लड़की की नजर पहली बार इस जनाब पे पड़ती है, और पहली नजर में प्यार बिल्कुल नहीं। पहली नजर में तो बस एक ही फैसला है, उफ ये लड़का है कैसा, कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी, कुछ ज्यादा ही शरारती और शायद कुछ ज्यादा ही ध्यान भी दे रहा है। लेकिन कहानी में एक छोटी सी दिक्कत है, जिस इंसान से हमें कोई मतलब नहीं होता उसकी हरकतों पर इतनी नजर भी नहीं रहती, तो शायद शिकायत के पीछे कहानी कुछ और है। 1977 की हम किसी से कम नहीं के इस गीत में आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत आर डी बर्मन का। चलिए देखते हैं ये दीवाना आखिर इतना दीवाना क्यों है।

अब जब किसी लड़की को लड़के की बात समझ से बाहर लगे तो जनाब भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। लड़के को लगता है मैं ही क्यों समझाऊं, पहले तुम खुद को तो समझो। और बस अब मामला एक तरफा शिकायत से निकलकर दो तरफा बहस बन जाती है। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, दोनों को लगता है सामने वाला अजीब है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, दोनों बातचीत बंद करने की बजाय बातें कर रहे हैं। 2004 की हम तुम का यह गीत अलका याग्निक और शान की आवाजों में है। साथ ही उनका साथ दिया है सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ने, बोल प्रसून जोशी के और संगीत जतिन ललित का। और इस गाने को गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। तो चलिए बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लड़की क्यों न जाने क्यों

0: ऑल द सेम यार, हम अच्छे दोस्त हैं पर उस नजर से तुमको देखा नहीं। वो सब तो ठीक है पर इस बारे में मैंने सोचा नहीं।
1: सबसे अलग है तुम ये कह के पास तुम्हारे आए, और कुछ दिन में तुम में अलग सा कुछ भी ना उसको भाए।
0: ये कैसी शर्ट पहनते हो, ये कैसे बाल कटाते हो, गाड़ी तेज चलाते हो, तुम जल्दी में क्यों खाते हो? गिव मी अ ब्रेक।
1: तुम्हें बदलने को

0: ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले झगड़े जैसे पास पास मंडरा है,
0: बड़ा
1: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टक्कर समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है। दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरे इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: इंटीरियर
1: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?

अब तक दोनों सिर्फ बहस कर रहे थे, लेकिन लगता है बहस का बहाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है, क्योंकि अगली मुलाकात में जनाब जरा और करीब आ गए हैं और उन्हें छेड़ रहे हैं, और वह भी उन्हें रोकने का नाटक कर रही हैं। और फिर अचानक याद आता है, अरे यहाँ और भी तो लोग हैं। अब समस्या छेड़ने से कम है, पकड़े जाने से ज्यादा, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया से छिपाने की कोशिश में उनकी असली मिठास होती है। 1964 की गंगा की लहरें का यह गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है, गीत मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत चित्रगुप्त का। इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

अब जरा तस्वीर देखिए, कहने को तो दोनों की खूब नोकझोंक है, लेकिन फिर वह चली गई और थोड़ी देर बाद जनाब फिर वहीं दिखाई दे गए। अब कोई भी पूछेगा, जब इतनी शिकायत थी तो फिर वापस आए किस लिए? और यही तो इस कहानी का मजा है। कभी कभी हम किसी से मिलने के लिए कोई बहुत अच्छा बहाना ढूंढते हैं, लेकिन सामने वाला उस बहाने को पहचान लेता है। 1971 की कल आज और कल का यह शानदार सवाल जवाब आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है, बोल नीरज के और संगीत शंकर जयकिशन का। तो सुनते हैं मेरे साथ देते हुए पंकज जी को। आप यहाँ

कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। इतनी सारी मुलाकातों के बाद, इतनी बहसों के बाद, इतनी छेड़खानी के बाद, एक दिन इंसान सामने वाले से नहीं खुद से सवाल करने लगता है, मैं आखिर हर बार इसी इंसान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और फिर शायद अपने दिल को समझाने के लिए दुनिया भर के उदाहरण देने लगता है, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। शायद प्यार सच में बहुत अजीब चीज है। इंसान जानता है कि इसमें बेचैनी भी होगी, इंतजार भी होगा, कभी दिल भी दुखेगा, फिर भी जब कोई खास इंसान जिंदगी में आ जाए तो उससे दूर रहना उससे भी मुश्किल लगता है। 2001 की दिल चाहता है का यह गीत उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है, बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। मेरा साथ देते हुए फिर से रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी

और फिर इतनी बहस के बाद भी अगली मुलाकात तो हो ही जाती है। दोनों आमने सामने हैं, पिछली सारी बातें याद है, किसने किसे छेड़ा, किसने किससे नाराजगी दिखाई, सब याद है, लेकिन कोई भी पिछली लड़ाई का जिक्र नहीं करता। बस एक मुस्कान और एक बहुत ही साधारण सा सवाल, हाल कैसा है जनाब का। 1958 की चलती का नाम गाड़ी का यह शानदार गीत आशा भोसले किशोर कुमार ने गाया है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत एसटी बर्मन का है। इस संगीत में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। शायद हमारी आज की कहानी का सबसे प्यारा जवाब भी यही है, प्यार हमेशा इजहार से नहीं पहचाना जाता, कभी कभी किसी का हाल पूछने की बेचैनी भी काफी होती है। तो आइए सुनते हैं हाल।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम गीत लाजवाब, और इस प्रोग्राम को लेके आई हैं सियाटल यूएसए से, यानी सियाटल अमेरिका से, समृद्धि चतुर्वेदी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ समृद्धि सियाटल से, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के प्रोग्राम जिसका नाम है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब के एपिसोड नंबर 5 में। आज के हमारे एपिसोड का नाम है प्यार की नोकझोंक। आज के गीतों में कोई बड़ी बड़ी मोहब्बत की बातें नहीं होंगी। आज प्यार थोड़ा नखरीला है, थोड़ा शरारती है, और खूब सारी नोकझोंक करने वाला है, क्योंकि कभी कभी प्यार की शुरुआत मैं तुमसे प्यार करता हूँ से नहीं होती है, बल्कि शुरुआत होती है तुम ऐसे क्यों हो, और जवाब आता है अच्छा और तुम कौन सी कम हो। तो आज देखते हैं इन सवाल जवाबों के बीच कब शिकायत प्यार में बदल जाती है। तो हमारी कहानी में लड़की की नजर पहली बार इस जनाब पे पड़ती है, और पहली नजर में प्यार बिल्कुल नहीं। पहली नजर में तो बस एक ही फैसला है, उफ ये लड़का है कैसा, कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी, कुछ ज्यादा ही शरारती, और शायद कुछ ज्यादा ही ध्यान भी दे रहा है। लेकिन कहानी में एक छोटी सी दिक्कत है, जिस इंसान से हमें कोई मतलब नहीं होता उसकी हरकतों पर इतनी नजर भी नहीं रहती, तो शायद शिकायत के पीछे कहानी कुछ और है। 1977 की हम किसी से कम नहीं के इस गीत में आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत आरडी बर्मन का। चलिए देखते हैं ये दीवाना आखिर इतना दीवाना क्यों है

अब जब किसी लड़की को लड़के की बात समझ से बाहर लगे तो जनाब भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। लड़के को लगता है मैं ही क्यों समझाऊं, पहले तुम खुद को तो समझो। और बस अब मामला एक तरफा शिकायत से निकलकर दो तरफा बहस बन जाती है। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, दोनों को लगता है सामने वाला अजीब है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह, दोनों बातचीत बंद करने की बजाय बातें कर रहे हैं। 2004 की हम तुम का यह गीत अलका याग्निक और शान की आवाजों में है। साथ ही उनका साथ दिया है सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ने, बोल प्रसून जोशी के और संगीत जतिन ललित का। और इस गाने को गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। तो चलिए बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों

0: ऑल द सेम यार, हम अच्छे दोस्त हैं पर उस नजर से तुमको देखा नहीं। वो सब तो ठीक है पर इस बारे में मैंने सोचा नहीं।
1: सबसे अलग है तुम ये कह के पास तुम्हारे आए, और कुछ दिन में तुम में अलग सा कुछ भी ना उसको भाए।
0: ये कैसी शर्ट पहनते हो, ये कैसे बाल कटाते हो, गाड़ी तेज चलाते हो, तुम जल्दी में क्यों खाते हो, गिव मी अ ब्रेक।
1: तुम्हें

0: ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले झगड़े जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हुई ये कहकर तुमको वो
0: टक्कर।
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है। दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: उसी दिन में नजरें इनकी इधर उधर मर
0: जाए।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: अब तक दोनों सिर्फ बहस कर रहे थे, लेकिन लगता है बहस का बहाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है, क्योंकि अगली मुलाकात में जनाब जरा और करीब आ गए हैं और उन्हें छेड़ रहे हैं, और वह भी उन्हें रोकने का नाटक कर रही हैं। और फिर अचानक याद आता है, अरे यहाँ और भी तो लोग हैं। अब समस्या छेड़ने से कम है, पकड़े जाने से ज्यादा, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया से छिपाने की कोशिश में उनकी असली मिठास होती है। 1964 की गंगा की लहरें का यह गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है, गीत मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत चित्रगुप्त का। इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

अब जरा तस्वीर देखिए, कहने को तो दोनों की खूब नोकझोंक है, लेकिन फिर वह चली गई और थोड़ी देर बाद जनाब फिर वही दिखाई दे गए। अब कोई भी पूछेगा, जब इतनी शिकायत थी तो फिर वापस आए किस लिए? और यही तो इस कहानी का मजा है। कभी कभी हम किसी से मिलने के लिए कोई बहुत अच्छा बहाना ढूंढते हैं, लेकिन सामने वाला उस बहाने को पहचान लेता है। 1971 की कल आज और कल का यह शानदार सवाल जवाब आशा भोंसले और किशोर कुमार ने गाया है, बोल नीरज के और संगीत शंकर जयकिशन का। तो सुनते हैं मेरे साथ देते हुए पंकज जी को। आप यहाँ

कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। इतनी सारी मुलाकातों के बाद, इतनी बहसों के बाद, इतनी छेड़खानी के बाद, एक दिन इंसान सामने वाले से नहीं खुद से सवाल करने लगता है, मैं आखिर हर बार इसी इंसान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और फिर शायद अपने दिल को समझाने के लिए दुनिया भर के उदाहरण देने लगता है, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। शायद प्यार सच में बहुत अजीब चीज है। इंसान जानता है कि इसमें बेचैनी भी होगी, इंतजार भी होगा, कभी दिल भी दुखेगा, फिर भी जब कोई खास इंसान जिंदगी में आ जाए तो उससे दूर रहना उससे भी मुश्किल लगता है। 2001 की दिल चाहता है का यह गीत उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है, बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। मेरा साथ देते हुए फिर से रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी

और फिर इतनी बहस के बाद भी अगली मुलाकात तो हो ही जाती है। दोनों आमने सामने हैं, पिछली सारी बातें याद है, किसने किसे छेड़ा, किसने किससे नाराजगी दिखाई, सब याद है, लेकिन कोई भी पिछली लड़ाई का जिक्र नहीं करता। बस एक मुस्कान और एक बहुत ही साधारण सा सवाल, हाल कैसा है जनाब का। 1958 की चलती का नाम गाड़ी का यह शानदार गीत आशा भोसले किशोर कुमार ने गाया है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत एसटी बर्मन का है। इस संगीत में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। शायद हमारी आज की कहानी का सबसे प्यारा जवाब भी यही है, प्यार हमेशा इजहार से नहीं पहचाना जाता, कभी कभी किसी का हाल पूछने की बेचैनी भी काफी होती है। तो आइए सुनते हैं हाल।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। हमारे संघ हैं, हमारे साथ हैं भोपाल एमपी से, जिसे आप मध्य प्रदेश कहते हैं, मधुलिका सक्सेना, मधु आलोक। हम वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आज एक ऐसी वरिष्ठ साहित्यकार का प्रोग्राम। अभिव्यक्ति के आंचल में हम आज वेलकम कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं मधुलिका सक्सेना का। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। मधुलिका जी भोपाल में रहती हैं और साहित्य जगत में अपनी पहचान रखती हैं। आपने लगभग 3 पुस्तकें अब तक लिखी हैं, पहली मन कही, दूसरी पंखुरी मुस्काई और तीसरी एक ही कश्ती में सवार। जी हाँ, जीवन चलता है किसी नाव में, कश्ती में, और हम बढ़ते हैं, बहते हैं और अनुभव के साथ चलते हैं। तो हम अनुरोध करेंगे कि मधुलिका सक्सेना, मधु आलोक, अपना परिचय हमारे सभी सुनने वालों को दें प्रोग्राम अभिव्यक्ति के आंचल में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर व्यास जी, और जितने भी मेरे साथी सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा सस्नेह सप्रेम सादर नमस्कार। मैं मधुलिका सक्सेना हूँ, भोपाल से हूँ, और मैं प्रिंसिपल थी, और उससे पहले मैंने लगभग 20 साल राज्य शिक्षा संस्थान जो है भोपाल का, जहाँ पर पुस्तकें लिखी जाती हैं और जो एजुकेशन के फील्ड में एक जानी मानी संस्था है, वहाँ पर मैं कार्यरत रही लगभग 20 साल, और उसके बाद मैं प्रिंसिपल हो गई थी एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ। तो 2015 में मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, और उसके बाद से बस अपना जो शौकिया जीवन है वो जी रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से जी रही हूँ।
0: लिखना कब से आरंभ किया? क्योंकि आप सक्सेना हैं, तो जो सक्सेना होते हैं उनका संगीत में तो दक्षता होती ही है, इसके अलावा जो है साहित्य में भी दखल रहता है, और जो कला के क्षेत्र हैं बहुत सारे, उनमें भी उनका अपना योगदान रहता है। तो किन किन क्षेत्रों से आप जुड़ी हुई हैं, हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि आपकी अभिव्यक्ति का आंचल जो है ना, उसमें पूरी दुनिया ढांपी जा सकती है, ढकी जा सकती है। क्या कुछ लिख दिया आपने?
1: अच्छा जी, देखिए आपका बहुत ही सुंदर नाम है अभिव्यक्ति का आंचल। आंचल तो बहुत सी चीजों को समेट लेता है, और जहां पर अभिव्यक्ति की बात हो तो ऐसा विशेष तो नहीं, लेकिन मैं कॉलेज के समय से ही मैंने वहां पर एक संस्था बनाई थी छोटी सी, जिसमें हमारी, अगर हम सबसे पहली कविता कहें कि हम क्या गाते थे, ये बात है 67 की, शायद 1967, जब बच्चन जी बहुत फेमस थे, तो मैं बच्चन जी की मधुशाला, हम लोगों ने एक साहित्य समिति बना ली थी, हिंदी साहित्य समिति, कुछ 5-6 साथियों ने मिलकर, और शाम को 6 बजे के बाद हम लोग हफ्ते में एक दिन मिलते थे और अपना

0: राख पिए, कभी न क्षण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला, पुस्तक मेरी मधुशाला। ये शुरुआत थी।
1: बहुत ही सुंदर शुरुआत हो गई आपकी तो, क्योंकि आपने मधु के मद के साथ जो है और भावों के मद के साथ इस अभिव्यक्ति को पिया भी है, जिया भी है और इसी को जीवन में ढाला है, उतारा है। मैं भी सौभाग्य से कहूँ कि साहित्य का अभ्यर्थी रहा और मुझे उनका एक कविता थी, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, तो उसमें उन्होंने लिखा था, प्रलय की रात में सोचे प्रणय की बात क्या कोई, मगर पड़ प्रेम बंधन में समझ किसने नहीं खोई। तो प्रेम के बंधन को, समझ को और प्रलय की रात को कितना जो है उसमें फर्क है, कितनी कहाँ तो प्रलय है और कहाँ प्रेम है, उनको, उन दोनों को उन्होंने किस तरह से व्यक्त किया है, जोड़ दिया है, तो वो सच में आज तक मेरी जुबान पे ये शब्द रहते हैं कि जब कोई प्रेम में पड़ता है तो मुझे यूँ लगता है कि हाँ, अब तो इसकी समझ कहाँ रही होगी अपनी समझ, क्योंकि इसमें दूसरों की समझ भी तो मिल ही गई होगी। तो प्रेम के बारे में आप क्या कहेंगे, जो विशुद्ध प्रेम है, जो बच्चन जी ने कहा और साहित्य कहता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि प्रसंग ही ऐसा चल पड़ा है, तो हम जानना चाहेंगे आपके अनुभव के माध्यम से।
0: प्रेम के बारे में क्या कहूंगी, मेरी किताब शायद मैं देखूं कि
1: कोई कविता तो होगी उसमें भी।
0: हाँ, मेरी एक कविता है
1: जी,
0: उसका शीर्षक है प्रेम रंग।
1: वाह,
0: उसका शीर्षक है प्रेम रंग। ये मेरी कविता संग्रह है, मन कही उसी में से सुना रही हूँ।
1: जी जरूर,
0: पेज 29 पर है ये कविता।
1: स्वागत।
0: और एक तो सुनिएगा, पहले प्रेम रंग पे सुनाती हूँ, फिर बताती हूँ कि आखिर कविता मेरे लिए क्या है।
1: जी
0: ठीक, तो सुनिएगा कि अवनी से अंबर तक बिखर रहा प्रेम रंग, अवनी से अंबर तक बिखर रहा अवनी से अंबर तक बिखर रहा प्रेम रंग, नैनन झरोखों से झांक उठा है अनंग। आगे सुनाऊं क्या? झांक उठा है अनंग, कामदेव आंखों से झांक उठते हैं। बासंती झोंकों ने छेड़ी मन में तरंग, बासंती झोंकों ने छेड़ी मन में तरंग, बावरिया नाच रही आज मनो पी है भंग, बावरिया नाच रही आज मनो पी है भंग। रक्तिम आकाश हुआ बाजे चहु और चंग, रक्तिम आकाश हुआ बाजे चहु और चंग, धरणी अंगार हुई झूम कर पलाश संग, धरणी अंगार हुई झूम कर पलाश संग।
1: बहुत खूब,
0: आप सुनाओगे?
1: बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए, बहुत ही मजा आ रहा है
0: इसी में। अच्छा, प्रकृति निहार रही दिशा दिशा हुई दंग, प्रकृति निहार रही दिशा दिशा हुई दंग, प्रीत रंग दमक उठा लहक उठा अंग अंग, प्रीत रंग दमक उठा लहक उठा अंग अंग।
1: वाह,
0: धन्यवाद।
1: बहुत ही जो है वो ऋतुराज को आमंत्रित करती ये जो आपकी प्रेम की प्रसंगवश ऐसी जो है रचना बन पड़ी है, वो बहुत जो हमारे प्रोग्राम को सच में उसके अभिव्यक्ति के आंचल में, आपकी जो कढ़ाई बुनाई होती है ना किसी आंचल में, उस तरह शोभित है, तो बहुत अच्छा लग रहा है।

0: हमें आपसे बात करके हम आगे बढ़ें, तो उससे पहले जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक कलाएं हैं, लोक गीत हैं, उसमें आप आपकी जो बोली है, भाषा है, वो किससे जुड़ी है और वो लोक गीत से कहीं ना कहीं जाके जुड़ती होगी, कुछ कहती होगी, तो आप कुछ कहेंगी बताएंगी इस बारे में हमें?
1: अच्छा, लोक गीतों को मैं पीढ़ी दर पीढ़ी संवाद का मानती हूँ साधन।
0: बिल्कुल, उस वक्त कविताएं, वो जो रिकॉर्डर और ये सब जो चीजें हैं वो हुआ नहीं करती थी, तो सिर्फ वाणी के माध्यम से ही हम एक दूसरे को हस्तांतरित करते थे।
1: उसमें सब कुछ होता था, उसमें प्रेम भी होता था, उसमें सारे हमारे जो ये होते हैं रीति रिवाज होते हैं वो होता था, गुस्सा होता था, मनहार होती थी। जीवन का कोई सा ऐसा भाव नहीं है शायद जो कि लोकगीतों में नहीं आया।
0: हाँ बिल्कुल, जैसे सास ससुर आपस में आमने सामने बात नहीं करते थे, लेकिन हमारे राजस्थान में ये है कि यदि कोई गहना चाहिए आपको या कुछ नौलखा चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, जो उस गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया जाता था और फिर वही चीज जो है वो संवाद, वो जो संप्रेषण था वो उस व्यक्ति तक पहुंचता था और वो मजबूर होता था, यदि वो सक्षम है तो उसका इंतजाम भी करता था। तो ये भाव जो हैं वो आज के पुस्तकों में नहीं आ सकते, हम किसी तरह से उन भावों को, उन मनोहारों को रिकॉर्ड करके रख नहीं सकते, संयोजित यदि उन्हें करना है तो वही वाणी के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से ही संरक्षित रह सकते हैं। तो आप क्या कहती हैं?
1: लोक भाषा और लोक गीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आपकी हर बात पहुंचाते हैं, क्योंकि वो लोक से ही संबंधित होते हैं, उसमें दुराव छिपाव कहीं है ही नहीं। तो जिन घरों में ये भाषा बोली जाती है उस अंचल की, उनकी आप मिठास देखिए कितनी है। उनने मतलब काय का हो रहा हो, पूछेंगे बुंदेलखंडी में तो कहेंगे काय का हो रहा हो, तो कहेगा तुम्हारे हार चुर रहे, आपको समझ आया कि क्यों क्या हो रहा है, तू आपसे
0: तुम्हारी
1: हड्डियां गल रही, तुम्हारे हार चुर रहे, मतलब तुम्हारे जो ये है हार, तुम्हारी जो हड्डियां वो गल रही है यहाँ पे, उसको चढ़ाने के लिए वो ये कहेगा काय का हो रहा हो, तुम्हारे हार चुर रहे। तो ये एक व्यंजना है, ये अपनापन है क्या, और ये माहौल को एकदम हल्का कर देता है। कोई सामने वाला अगर गुस्से में भी होगा तो हंस पड़ेगा। तो इस तरह से हर अंचल की भाषा का अपना मजा है ना।
0: तो इस अंचल की कोई लोकगीत कोई जो आप सुनाना चाहें?
1: तो बहुत मैं जैसे गीत में कौन सा सुनाऊं आपको, शुरू में हम लोग गाते थे जिसको बधाई कहते थे ना,
0: जी जी हाँ।
1: तो हम लोग गाते थे कि आज दिन

0: महाराज, इस तरह से गाते थे। ये बधाई है, शुरू में गाई
1: तो
0: जाती
1: ये
0: थी।
1: बधाई जो है उसमें
0: जी,
1: सोने का अभिप्राय जो है वो
0: सोने मतलब सोने जैसा
1: सोने
0: सुंदर
1: जैसा चमकीला
0: अमूल्य
1: सुवर्ण
0: आज का
1: सुवर्ण
0: दिन
1: से है,
0: जो है।
1: जो सुवर्ण की तरह।
0: हाँ,
1: जी
0: आज का दिन सोने सा उत्तम, सोने सा शुद्ध, सोने से प्यारा है, सोने जैसा है। सोने
1: अरे वाह,
0: को हम सबसे अच्छी धातु मानते हैं ना, सबसे कीमती, सबसे प्रिय, सबसे दुर्लभ। सोने
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: को ये
1: बहुत
0: मानते हैं, तो
1: महंगी
0: ये
1: महंगी
0: आज
1: भी
0: दिन
1: है
0: सोने की महंगी भी।
1: आज की
0: तो
1: युग में,
0: आज का
1: महंगा
0: दिन
1: भी है।
0: कैसा है? सोने जैसा है,
1: जी
0: सोने जैसी रात है, सोने जैसा दिन है। तो ये बधाई गाई जाती थी शुरू में कि आज दिन सोने के महाराज।
1: तो
0: और बताइए।
1: हम बात करना चाहेंगे कि जो पुस्तकें आपने लिखी हैं, तो
0: जी
1: तीन पुस्तकों का हमने शुरू में जिक्र किया था, जितना हम नाम जानते थे उसी तरह से, तो
0: जी
1: आप उनके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को अभिव्यक्त करेंगी।
0: अच्छा। हाँ देखिए, एक तो मैंने आपको इसमें से अपनी कविता सुनाई मन कहीं से, और एक जो है मेरी लघु कथाओं की पुस्तक है, उसका नाम है एक ही कश्ती के सवार। ठीक है,
1: जी
0: तो
1: उसमें क्या है, कुछ राज कृपा।
0: उसमें मेरी 72 लघु कथाएं हैं, 72 लघु कथाएं। वो पहली किताब थी मेरी, और मैं देखती हूँ, हम पहले से तैयारी से नहीं बैठे थे, हमें लगा था कल है इंटरव्यू तो लेकिन ठीक है, फिर भी मैं एक ही कश्ती के सवार में से भी शायद आपको एक छोटी सी अगर आप लघु कथा सुना सकती हूँ। और बस मेरे पास पाखुड़ी मुस्काई में से कोई अभी नहीं होगी, मेरी जो बच्ची के लिए मैंने लिखी थी वो बुक शायद ना हो, पर हाँ
1: उसका
0: मैं
1: अभिप्राय जो है, उसका लिखने का, उसके उसको लिखने के पीछे आपका जो उद्देश्य रहा, उसको जरूर बयां कीजिए।
0: अच्छा, मैं पहले आपको लघु कथा सुना देती हूँ तारतम्य में।
1: जी
0: ठीक है, एक
1: जी
0: लघु कथा एक ही कश्ती के सवार से सुनाती हूँ आपको। मेरा थोड़ा जो झुकाव है लेखन का, वो पर्यावरण की तरफ है।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: मतलब पर्यावरण से पूरी दुनिया ही थोड़ा आज किसके बारे में चिंतित है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: मेरी बहुत सारी लघु कथाएं उसमें 72 हैं करीब।
1: मुझे याद
0: और
1: नहीं है, मैंने
0: वो
1: 23-24 में, सन 23-24 में जो है प्रीत का पेड़
0: जी
1: इस नाम से एक प्रोग्राम
0: अच्छा,
1: किया था, रोज़ाना आधे घंटे का प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें
0: अरे वाह,
1: मैंने एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया था, 1 साल तक चलाया मैंने उसको, फिर लोग
0: ओ
1: उबने लग गए
0: वाह,
1: तब मैंने उसको। तो प्रीत का जो पेड़ है, जब हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, अपने
0: जी,
1: अपनों से किसी से भी,
0: समझ
1: तो
0: गई,
1: उसके नाम से आप एक पेड़ लगाएं,
0: क्या
1: तो वो व्यक्ति रहे
0: बात,
1: ना रहे, वो
0: वो
1: प्रीत,
0: रहेगा
1: हाँ वो पेड़ प्रतीक रूप में रहेगा। तो ऐसा
0: एक्जेक्टली।
1: ऐसा ही कुछ था मेरा उद्देश्य, तो आपका जो सोचना
0: ये
1: है वो भी
0: बहुत
1: ऐसा ही
0: ही
1: है।
0: ऐसा ही है, मतलब पेड़ तो आप ये समझिए कि हमारा जीवन है, और
1: बिल्कुल
0: हमारे जो लोग थे वो उस पेड़ के रूप में हमारी पीढ़ी को छाया देते रहेंगे, जो फल फूल हैं वो देते रहेंगे, शुद्ध हवा देते रहेंगे, मतलब उनका आशीर्वाद उस पेड़ के रूप में हमारे पास
1: उपलब्ध
0: है
1: है।
0: ना।
1: जी
0: आप ये देखिए कि आपकी बात से ही बिल्कुल जुड़ा हुआ ये हम ख्याल हैं, लगता है मुझे कि
1: हाँ
0: मेरी लघु कथा जो पहली लघु कथा थी वही मैं आपको सुनाती हूँ आज। ठीक
1: जी
0: है,
1: स्वागत।
0: इसका शीर्षक ही है अगली पीढ़ी। अगली पीढ़ी सुनाती हूँ। तपते मौसम में आज तीसरा दिन है, आंगन सूखा पड़ा है, पेड़ मुरझा चले हैं, नल भैया क्यों नाराज हो गए, पाइप से भी बस बुड़बुड़ की आवाज भर आ रही है, चिड़ा चिड़ा चिंतित स्वर में कह रहा था। हाँ जी, मुझे भी फिक्र हो रही है, पत्तों के मुरझाने से हमारा घोंसला नीचे गिर गया तो अंडों का क्या होगा। चिड़ी भी बहुत परेशान थी, सकोरा भी सूखा पड़ा है, क्यारियां गमलों में भी दरारें पड़ रही हैं, क्या करें हम। हाँ, मैं भी दूर दूर तक देख आया, कहीं पानी का नामो निशान नहीं है, चिड़े की चिंता भी बढ़ती चली जा रही थी। अरे सुनो, पानी के लिए किसी ने बड़ा पाइप तोड़ दिया है। सड़क पर पानी ही पानी बह रहा है। कोयल वहां से गुजरते हुए कह रही थी। पर वो तो सब नष्ट हो जाएगा। चोंच में हम कितना पानी ला पाएंगे? क्या करेंगे? चिड़ा बेचैन हो उठा। अभी वे बात ही कर रहे थे कि तेज आंधी चलने लगी। बगल के नीम के पेड़ ने सूखी जमीन के कारण जड़ों को छोड़ दिया और भरभरा कर जमीन पर आने लगा। देखते ही देखते, गिरते गिरते उसने घोंसले को भी अपनी चपेट में ले लिया। चिड़ा चिड़ी अपनी अगली पीढ़ी को समय से पहले दुनिया से विदा होते देख रहे थे। अश्रुपूरित श्रद्धांजलि के लिए दो बूंद पानी भी उनकी आंखों से न गिर सका। धन्यवाद।
1: बहुत खूब,
0: जी
1: कितनी प्रतीकात्मक रचना है, और
0: जी
1: इसको सुना जाए, समझा जाए तो बहुत सारी बातें आपने इस लघु कविता कहूँ या लघु रचना के माध्यम से आपने व्यक्त की है।
0: जी
1: और उम्मीद है हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी
0: जी
1: निसंकोच हमें अपनी बात
0: जी
1: कहेंगे कि मधुलिका सक्सेना मधु आलोक हमारे संग है, हमारे साथ है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है
0: जी
1: अभिव्यक्ति का आंचल, और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। और हम इस प्रोग्राम में उन मूर्धन्य साहित्यकारों को लेकर आते हैं जिन
0: जी
1: को और जिनका परिचय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारे श्रोताओं के लिए, कि आपको समझ में आए कि इस तरह की सोच रखने वाले, इस तरह की रचनाओं को लिखने वाले अभी हैं। आप चिंता ना करें कि हम इस काम को, इस फर्ज को, इस कर्तव्य को निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमारा साथ दे रही हैं। आज प्रोग्राम अभिव्यक्ति के आंचल में मधुलिका सक्सेना मधु आलोक जयपुर रेडियो वर्ल्ड पे। और हमारा ये प्रोग्राम आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया सुनती है, इसलिए
0: जी
1: इसका फीडबैक भी पूरी दुनिया से आता है हमारे पास। और हम कई बार हम
0: जी
1: उन लोगों को भी शामिल करते हैं जो अपनी राय इस प्रोग्राम के बारे में, आपके बारे में हमें लिख भेजते हैं। मधुलिका जी,
0: जी
1: हम बात कर रहे हैं और साहित्य की बात से शुरू की, और साहित्य ही इस खास प्रोग्राम का मूल उद्देश्य है। तो आज
0: जी
1: साहित्यिक मूल्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आज जो वैल्यूज़ हैं वो आज की नई पीढ़ी में, जो नई पीढ़ी रच रही है, उनमें वो साहित्य में मूल्य का समावेश कर पा रहे हैं या फिर उससे कहीं दूर हट रहे हैं? आप क्या सोचती हैं इस बारे में?
0: व्यास जी, आपने मेरी दुखती रग छेड़ी है। और मेरी ही नहीं, मेरे ख्याल से आज आधी आबादी इस बारे में चिंतित है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो साहित्य के जो संजोने का काम है, जो उसको समझने का कार्य है, उससे दूर जा रही है। बट क्या हमें पीढ़ी को दोष देना चाहिए? नहीं, हमें उन्हें दोष देना चाहिए जो पैसा कमाने के लिए इसका उपयोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, सोशल मीडिया का, और उसे परोस भी रहे हैं। उस पे जो ये आज वैश्विक स्तर पर हम सब एक हैं की बात हो गई है, उसने हमारे मूल्यों पर कुठाराघात किया है। उसमें कहीं न कहीं एक रेखा जो है, डिवाइडिंग लाइन जिसको हम कहते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। और जो आप फेसबुक आदि पे जो कुछ भी उपलब्ध है आज के बच्चों को समय से पहले, वो साहित्य को मृत प्राय बना रहा। ये मेरा मानना है कि बच्चों को हम किस तरह से उससे बचाएं जो कुछ आज आ रहा है, और उनको हम किस तरह से खींच के लाएं अपनी जड़ों की तरफ, जो बहुत ही मतलब भारतीय संस्कृति तो आपकी पूरे विश्व में मानी जाती है, बट आज वो दूषित हो रही है। तो इसका काम हम ही लोग कर सकते हैं जो बैठे हैं उस पदों पर, जो कि कहीं पर एक लक्ष्मण रेखा खींच सकें, जहां पर की उम्र का हो बंधन, और जहां पर की आपकी बुद्धि का देखकर आपके सामने कोई चीज परोसी जाए। आप साल भर के बच्चे को क्या घी कटोरी भर के पिला सकते हैं, क्या एक बाटी खिला सकते हैं? नहीं। लेकिन मुझे याद है मेरे ससुर जी थे, वो कटोरी में घी लेकर ही बैठते थे खाना खाने, क्योंकि
1: जी
0: उनकी उम्र उसी समय पर ही करीब 65-70 साल होगी,
1: जी
0: और वो उसको पच सकते थे। तो साहित्य का भी ऐसा ही है कि गरिष्ठ है अगर साहित्य उसकी तरह से, तो उसके पीछे जो भी इससे संबंधित लोग हैं, मेरी बात काश उन तक पहुंचे कि एक लक्ष्मण रेखा खींचे, एक सीमा बनाए अलग अलग स्तर पे। हम लोगों को याद है कि हम लोगों को बहुत साल तक नॉवल पढ़ने के लिए नहीं दिए जाते थे,
1: बिल्कुल
0: उसके बाद जब हम 11th हमने पास कर लिया, जब एक अटैची में किताबें लेकर आता था एक व्यक्ति, और उसके पास शरद चंद्र जी के नॉवल रहते थे और कुछ मैगजीन्स रहती थी, और वो लेकर आता था, और इस तरह से थोड़ा बहुत हफ्ते में वो देकर जाता था। तब मैंने शिवानी जी को भी पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे। तो
1: वाह
0: इस तरह से हमारा परिचय कराया गया धीरे धीरे करके, एकदम गरिष्ठ भोजन नहीं परता गया हमारे सामने। और वो अटैची में लेकर आता था, ग्रह शोभा वगैरह भी लाता था, सरिता मुक्ता कादम्बिनी, कादम्बिनी आती थी, कादम्बिनी थोड़ी स्तरीय होती थी। तो
1: जी
0: इस तरह से वो उसका हम अर्थ पापा से पूछते थे, माँ से पूछते थे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़े। यही आज के बच्चों को अगर मिल जाए किसी तरह से, तो हमारी अगली पीढ़ी जो आ रही है वो भी जीवन से, समाज से, अपनों से जुड़ सकेगी, वरना तो थोड़ा सा अंधकार में है।
1: बहुत ही जो सलाह सुझाव राय और समझ और जो उद्गार आपने व्यक्त किए हैं वो आज के युग के लिए आज की परिस्थितियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन बाजारवाद जो है हर जगह, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो चाहे साहित्य क्षेत्र हो, उपभोक्तावाद जो है वो बहुत हावी हो गया है और उसके यूज़ टू ही हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ियां हैं, वो उसके ही हिसाब से व्यवहार भी करने लगी हैं। तो उन सबको विचार का प्रभाव हुआ करता था, कभी निराला का, कभी महादेवी वर्मा का, तो कभी दुष्यंत कुमार का। तो वो विचार का प्रवाह और प्रभाव दोनों ही कहीं उनसे दूर होते गए हैं और ये सोशल मीडिया के वजह से हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख पाते हैं। और इतना समय होता था कि हम किताबें भी पढ़ लेते थे, उसके ऊपर चिंतन भी कर लेते थे और उन पे यदा कदा लिख भी लेते थे। लेकिन आज ना तो किसी के पास समय है, घर वालों में घर में बैठे हैं फिर भी एक दूसरे के लिए समय नहीं है। तो इसके लिए हम कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में आपको चिंता होती है क्या कभी? मुझे तो बहुत
0: मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ी चिंता है कि हमारी पीढ़ी को हम अपनी जड़ से लगा के कैसे रखें। ये आज का सबसे बड़ा प्रश्न है कि वे जाने कि हम कहाँ से निकले हैं,
1: जी
0: जो कि कठिन हो रहा है। और आज हर कमरे में अलग टीवी है, हर कमरे में अलग एसी है, ये सब चीजें एक दूसरे से अलग कर रही हैं। जिस बच्चे के कमरे में जो टीवी है और जो मोबाइल है, उसमें वो जो चाह रहा है वो देख रहा है। और मुझे सबसे बड़ा इसमें वो ये लगा, मतलब चिंता की बात, कि आज मोबाइल पे होमवर्क दिए जा रहे हैं। मोबाइल पे जब होमवर्क मिलता है, तो कंप्यूटर पे बच्चा जब होमवर्क करता है, तो आप वो कुछ भी देखता है, जो चाहता है वो देखता है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: मोबाइल
0: हमारी
1: उसके हाथ
0: पीढ़ी
1: में आ
0: को
1: गया फिर तो वो सब कुछ करेगा ही।
0: सब कुछ करता है
1: जब
0: और
1: आपने
0: सब कुछ
1: रिमोट ही
0: मोबाइल पे
1: उसके
0: हम
1: हाथ में
0: देखते
1: दे दिया, हमारे साथ जो आपने
0: हैं।
1: कहा ना कि नावल पढ़ने के लिए एक उम्र होती थी, 16-17 के हो गए तो आप पढ़ सकते हो, शरद चंद्र को पढ़ सकते हो, गुलशन नंदा को पढ़ सकते हो, लेकिन आज तो जब जो चाहे वो पढ़ सकता है और मोबाइल में ही सब चीज़ें उपलब्ध हैं। उसके पास जो इतने विकल्प हैं, इतने विकल्प हैं कि उसे हमें सुनने की फुर्सत नहीं है, तो हम कैसे उसे सुनाएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे जताएंगे और कैसे वो जीवन का निर्वाह करे, उस जीवन मूल्यों को कहाँ जगह दे पाएंगे, कहाँ रख पाएंगे हम, ये सोच के बड़ा डर लगता है। क्या कहती हैं आप?
0: मैं ये चाहती हूँ कि जो कुछ आपने कहा वही मैं भी कह रही हूँ, और हम, आप, हमारा पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, सब हमारी उम्र के जो लोग हैं, यही चिंता है सबकी। आपने हम सबके भावों को शब्द दे दिए, चिंताओं को। अब हमें रास्ता निकालना है कि हम क्या करें इससे, आखिर कैसे। तो अभी जैसे एक छोटा मोबाइल मेरे नाती को दिया गया है, उसको ये नहीं दिया गया है, बड़ा मोबाइल, वो 9th क्लास में आ गया है, ठीक है
1: जी।
0: तो उसको जो कुछ भी होमवर्क मिलता है उसको हम लोग सामने बैठ के कराते, ताकि उसके पास मोबाइल ज्यादा देर नहीं रहे। दूसरे, टीवी पे हमने सारे चैनल्स नहीं लिए, हमें अगर देखना है तो हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं, बट टीवी के कुछ चैनल्स हमने हटा दिए हैं अगर वो भी देखता है तो। और इसी तरह से मोबाइल का भी यूज लिमिटेड कर दिया है, और किताबें लेकर मैं उसके साथ बैठती हूँ, और मुझे, मैं उसमें से उससे कहती हूँ कुछ तुम पढ़ो, कुछ हम पढ़ेंगे। तो घर में आज जहाँ बच्चे, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी पे जाते हैं और उनको फुर्सत नहीं है, लेकिन वो इतवार के रोज सब काम छोड़ के बच्चे के लिए टाइम निकालें और कुछ इस तरह की एक्टिविटी शुरू करें, क्रियाकलाप की, कुछ ड्राइंग हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो, विषय दिया जाए, लिखने को दिया जाए, इस तरह से किया जाए। पहले हम लोगों को कितने निबंध लिखवाए जाते थे, तो इस तरह से ये जो मेरे ख्याल से कुछ हमारे पुराने समय से भी लेकर हम इस नए समय के जीवनचर्या में जब जोड़ देंगे और इसमें से कुछ घटा देंगे तो अभी देर नहीं हुई है, ऐसा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, भारत अभी भी अपनी संस्कृति को लेकर विश्व में अपनी पताका फहरा रहा है, ऐसा नहीं है।
1: बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, और उसको जो लगना चाहिए कि हाँ, नजर के सामने, नजर के पास मुझे कोई देख रहा है, तो इस तरह से वो जो एक अनजाना सा परछाई उसके इर्द गिर्द उसको लगता है, तो वो सही रास्ते पर रहेगा। तो उसके लिए अनुशासन और डिसिप्लिन जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और
0: जैसे मैं अपना उदाहरण दूं आपको, मेरी बेटी भी यही कर रही है, फर्नीचर का बिजनेस है उसका, इंटीरियर डेकोरेशन का उसका बिजनेस है, उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का घर डेकोरेट किया, अपने जो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
1: बधाई हमारी ओर से,
0: इंटीरियर डिजाइनर जी, इंटीरियर डिजाइनर है वो, तो उसने, और मजा ये कि केवल उन्होंने उसका एड्रेस देखा सोशल मीडिया पे और कॉल किया उसको कि ये एड्रेस है और यहाँ पर आपको आना है। जब वो वहां पहुंची तो उसने उनका नाम लिखा देखा, उसको नहीं पता था कि वो वहां जा रही है।
1: अच्छा,
0: उसने वहां जब उनका नाम देखा तो थोड़ा उसने दोबारा से चेक किया कि ये मुझे क्यों बुलाएंगे, इनको क्या चीज नहीं मिलती, तो उसने दोबारा से चेक किया और तब देखा कि वो उन्हीं का घर था, और फिर उसने उनके यहाँ पर कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का काम किया। खुशबू है मेरी बेटी का नाम, और कासानोना उसकी कंपनी है, कासानोना के नाम से।
1: बहुत बढ़िया, तो बहुत ही बधाई
0: जी। और छोटी बेटी आर्किटेक्ट है, तो दोनों बच्चे मिलके एक घर बनाता है, दूसरा उसको सजाता है।
1: हाँ,
0: तो मेरा मतलब ये है कि लो प्रोफाइल में रह के भी आप जब काम अच्छा करते हैं, ये मेरे आज की जनरेशन से कहना है, और बच्चों को जड़ों से जोड़ के रखते हैं, खाना साथ में खाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए शाम का, ये हमारे समय से चला रहा है और अभी उसके घर में भी है, दोनों घरों में, हमारे सब घरों में
1: बिल्कुल ऐसा तो होना ही चाहिए। उस वक्त जो है वो जरूरी बातें हो जाती हैं, और
0: ये
1: कुछ संवाद ऐसे होते हैं जो अनकहे रह जाते हैं, वो उस वक्त पूरे किए जा सकते हैं।
0: माँ बाप पढ़ लेते हैं कि बच्चा कहाँ से गुजरा है आज दिन में,
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो चेहरा, वो शक्ल अपने आप में आईना होता है,
0: और पढ़ने
1: वाले की आंखें जो होती है वो बहुत पारखी और अनुभवी होती है, बस उसी से वो दूर भागते हैं,
0: जो दूर भागते हैं, लेकिन इसी तरह से जोड़ा जाता है, क्या वो पेपर साथ में पढ़ रहे हैं, एक कहानी सुना रहे हैं, है ना, और साथ में खाना खा रहे हैं। एक टहलने जरूर जाते हैं बच्चों के साथ, खाना खाने के बाद 10 मिनट चलो टहलने, ये मेरे बेटा बेटी दामाद करते हैं। खाना खाने के बाद वो केवल 10 मिनट के लिए टहलने जाते हैं अपनी कॉलोनी में और बच्चे को भी ले जाते हैं।
1: गुड हैबिट, बहुत ही, हाँ बहुत ही अच्छी आदत
0: ये आपको रास्ते निकालना पड़ते हैं, जो भी समस्याएं हैं, अनसुलझा कुछ नहीं रहता जीवन में, ऐसा हमारा मानना, ठीक है ना।
1: जी। तो आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज़ आपकी पहचान, प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल आप सुन रहे हैं।
0: जी
1: और उसमें हमारे संग है, हमारे साथ हैं। हमारे श्रोताओं को हम बता देते हैं कि मधुलिका सक्सेना मधु आलोक, और आप बहुत अच्छी साहित्यकार, चिंतक, विचारक, और आपने अब तक जो भी बातें सुनी हैं वो सच में सार्थक हैं और बहुत उपयोगी है जीवन में हमारे, आपके और हम सबके। तो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आप जब साहित्य से जुड़े हैं तो संगीत का भी कुछ ना कुछ योगदान आपके साथ रहा होगा। आप संगीत को कितना स्थान देती हैं अपने जीवन में, और क्या कुछ आपने बॉलीवुड या फिल्म संगीत को भी कभी ट्राई किया है, और कौन सा गीत आपको सबसे अच्छा लगता है, भाता है, वो सुनना चाहेंगे हम।
0: बॉलीवुड किसको नहीं अच्छा लगता, और फिल्मी संगीत तो मैंने आपको बताया 10 से 10:30 छाया गीत सुन के ही सोना होता था। छाया गीत मेरी उम्र के लोग जानते होंगे कि विविध भारती पे
1: बिल्कुल
0: किसी खास विषय को लेकर गीत आते थे उसमें। अभी तो रेडियो शायद कहीं गुम हो गया है, जिसको
1: बिल्कुल
0: नहीं होना चाहिए,
1: बिल्कुल वो
0: है ना।
1: चीजें नहीं रही जो
0: हाँ,
1: छाया गीत हुआ करता था। उसमें एक विषय को, एक विधा को, एक ऐसे
0: हाँ
1: ऐसे पत्र को जो है, जो प्रेम की पाती होती थी या फिर
0: जी
1: विरह की थाती होती
0: हाँ
1: थी, होता जरूर था उसमें कुछ, और
0: बिल्कुल
1: वो ही गीतों की माला हुआ करती थी, जिसको
0: बिल्कुल
1: जिसको हम जब
0: उसको
1: सुनना
0: सुन।
1: शुरू कर देते थे तो उसके बाद फिर रुकते नहीं थे, और अचानक यदि कभी ब्रेकडाउन आ जाए तो यूं लगता था कि ये क्या खो गया हमारे हाथ से, कुछ हमने पकड़ रखा था उसको किसने छीन लिया है, छूट गया है। तो क्या कुछ उनको सुन के आप गाया करती थी मन ही मन, वो आज थोड़ा सा हम सुनेंगे, उसके बाद तो हम उसको प्ले कर देंगे यहाँ से। तो कौन सा गीत आप
0: देखिए,
1: बताएंगे?
0: 70 पार हो गए, अब 70 पार हो गए,
1: पार तो
0: आवाज में तो
1: जब
0: कुछ
1: तक हम इस
0: जान नहीं
1: दुनिया
0: है।
1: के द्वार पे हैं तो कहीं पार नहीं है, हम आर पार जा सकते हैं, इस दुनिया के द्वार पे हैं हम।
0: मैं तो एक गाना गाती थी शुरू से ही,
1: जी
0: हालांकि गाने तो मैंने आपको बताया कि गाती थी मैं। एक तो गाती थी आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, तो और एक दो ही गाने इस वक्त याद हैं कि आपके बरस भेज भैया को बाबुल, सावन ने लीजो बुलाए जी।
1: बिल्कुल, देखो संयोग कितना है अच्छा कि हम
0: जी
1: सावन में ही इस प्रोग्राम को
0: जी
1: रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम अपने श्रोताओं को अब के बरस वाला गीत सुनाना चाहेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं है। तो आइए सुनते हैं हम मिलके ये
0: हाँ बताइए
1: ये सॉन्ग, और यदि आप इसकी दो लाइनें गुनगुना सकती हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा।
0: देखिए, ये गाना बहुत ही बारीक गाना है, मतलब लता जी की आवाज में है।
1: बिल्कुल क्लासिकल
0: उसको
1: है।
0: गाना उसको गाना तो मेरे शायद मैं गाऊंगी तो आपके मुंह का स्वाद खराब ना हो, कहीं बस यही सोचती हूँ कोशिश कर लेती हूँ, है
1: जी
0: ना।
1: जी जरूर।
0: लग नहीं रहा है क्योंकि बहुत दिनों से तो गाया भी नहीं है

0: आपने तो कमाल कर दिया, 17 साल की जो बहना है वो भी इतना अच्छा नहीं गा सकती जितना आपने गाया है, और आप कह रही थी कि मुझसे गाया नहीं जाता, तो हम सुनते हैं पहले इस पूरे गीत को और फिर आपसे मिलते हैं।
1: अच्छा,

0: इतना प्यारा सा गीत आपने सुना अब के बरस मेरे भैया को, और ये गीत सामयिक भी है और सुरीला भी। मधुलिका सक्सेना मधु आलोक इस गीत को लेके आई प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल में। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। मधुलिका जी हमसे बात कर रही हैं और हम जीवन के, साहित्य के, कला के जो भी आयाम है उनको छूने का, स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आपके जीवन में जब से आपने लिखना शुरू किया, कहना शुरू किया और लोगों से जुड़ना शुरू किया, तो कैसा लगा आपको ये सब कि हम लोगों को अपनी बात कहते हैं, लोग हमें अपनी बात कहते हैं और वहीं आगे चल के वही कोई कहानी बन जाती है, कोई कविता बन जाती है, कोई विचार बन जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उनको आप किस तरह से अपने लेखनी में उतारती हैं, लेती हैं?
1: लोगों को अपनी बात कहते हैं, लोग अपनी बात हमें कहते हैं।
0: जी ठीक
1: है
0: जी जी,
1: देखने में कैसे आता है ना?
0: बिल्कुल, वो एक विचार बनता है, वो एक कहानी बनती है, एक कथा बनती है, एक कविता बनती है, एक रचना बनती है। तो हम आप उनको किस तरह से अपने भीतर, अपने साहित्य के अभिव्यक्ति के भीतर कैसे उतारती हैं?
1: बहुत छोटी सी घटना है एक बुढ़िया सी थी और वो हमारे घर के आसपास घूमती रहती थी, ठीक है
0: जी।
1: और चाहे जब आके थोड़ी देर गेट पे बैठ जाती थी तो मैं उसको कभी रोटी दे दी, कभी कुछ दे दिया और उससे बात करना मुझे अच्छा लगता था, ठीक है ना। तो वो झोला लेके चलती थी, जिसने जो दे दिया उसमें डाल लेती थी
0: जी,
1: ठीक है। और वो झोला हमारे जीवन में भी है, अगर धीरे धीरे वो झोला जाने कब पॉलिथिन में बदल गया,
0: आहा
1: ठीक है, जाने कब वो गुम गया और पॉलिथिन में बदल गया। हर एक के पास ढेरों पॉलिथिन है। उस पर से मैंने एक कविता लिखी थी, पर अब वो इस वक्त मेरे पास है कि नहीं मैं देखती हूँ। उसका वो है, मतलब उसकी पहली लाइन ही, एक बूढ़ी काकी आती थी एक झोला संग में लाती थी। जितना याद है उतना सुना देती हूँ। मैं कविता की किताब में, शायद आपको ज्यादा देर तो नहीं होगी ना, मैं देख रही हूँ अगर मैं मन से जितना याद है सुनाती हूँ, इस किताब में वो शामिल नहीं हुई शायद ठीक है, तो सुनाती हूँ आपको जितनी भी याद आ जाए, बट वो मेरे बहुत दिल के करीब है। एक बूढ़ी काकी आती थी एक झोला संग में लाती थी, एक बूढ़ी काकी आती थी एक झोला संग में लाती थी, था एक पिटारा वह फैला रहता था कुछ मैला मैला, पर उसमें दुनिया बसती थी, पर उसमें दुनिया बसती थी जो हमको बड़ा लुभाती थी, खैनी की डब्बी रहती थी एक खुशबू सी महकाती थी, पर उसमें दुनिया रहती थी, खैनी की डब्बी रहती थी एक खुशबू सी महकाती थी जो हमको बड़ा लुभाती थी। कुछ सिक्के खनखन बजते थे, उनको हसरत से तकते थे, आलू बैंगन छोटी अमिया, वो आलू बैंगन छोटी अमिया ऐसे कुछ था, आखिरी था बस उसका, बहुत लंबी है, पर वो थैला जाने कहाँ गया, वो थैला जाने कहाँ गया, जाने कब हमसे रूठ गया, वह थैला जाने कहाँ गया, जाने कब हमसे रूठ गया, हम ढूंढ रहे बेकल होकर, वह पॉलीथीन से ठगा गया, वह पॉलीथीन से ठगा गया, वह पॉलीथीन से ठगा गया। इतना ही याद,
0: बहुत ही खूबसूरत और संदेश भी है उसमें, जो संदेश आप देना चाहती हैं पर्यावरण पे। आपने इतना अच्छा काम किया है, इतनी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, तो उस पे जो है उसका सार समझिए। और ये आज के निस्सार जीवन में जहाँ पॉलीथीन हर जगह आ गया है, यानी
1: हाँ मैं आपको भेजूंगी ये
0: बिल्कुल
1: पूरी कविता,
0: जब बच्चा
1: बहुत
0: पैदा होता
1: लंबी
0: है
1: कविता है।
0: तो वो हाथों में
1: जी
0: वो नर्स जो पहनी हुई होती हैं, डॉक्टर पहने हुए होते हैं
1: ग्लव्स,
0: ग्लव्स, वहाँ से लेके और
1: जी
0: जब उसको ले जाया जाता है किसी शव को, तो उसमें भी पॉलीथिन पीछे पीछे पॉलीथिन की जो थैलियां हैं उसमें कोई
1: जी
0: सामान डाल के ले जाया
1: जी
0: जाता देखा जा सकता
1: बिल्कुल
0: है। तो वो बहुत ही ऐसा, ये कौन सा युग आ गया और ये क्या करने
1: जी
0: वाला है, और अब तो पॉलीथिन हमारे भीतर भी प्रवेश कर गया है हमारे शरीर में भी,
1: बिल्कुल
0: और
1: ब्लड
0: उसी की वजह है कि ऐसे ऐसे रोग हमारे सामने आ गए हैं कि हम उनका
1: बिल्कुल
0: बयान नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल। अभी मैंने एक कविता और लिखी थी, उसका नाम ही क्षमा याचना है, अगर आप कहें तो सुना दूं, आप सुना
0: सुनाइए,
1: सकते हो?
0: जरूर सुनाइए, आप तो जो आपके मन में है वो तो जरूर सुनाई दीजिए हम।
1: तो वही कविता थी, वो पूरी बहुत सुंदर, अगर होगी तो भेजूंगी आपको, कहीं मिलेगी तो। पर अभी ये जो है, इस कविता का शीर्षक ही है क्षमा याचना। मेरी मन कहीं पुस्तक में से ही सुना रही हूँ कि
0: जी सुनाइए, जरूर सुनाइए।
1: रही लुटाती वरद हस्त से, अंजुरी भर भर पूर्ण हृदय से, रही लुटाती वरद हस्त से, अंजुरी भर भर पूर्ण हृदय से, धन संपदा अपना, शैशव माणिक मुक्ता अपना वैभव, पावन जल अपनी नदियों का दान दिया हमको पीढ़ी का, पावन जल अपनी नदियों का दान दिया हमको पीढ़ी का, छाओ सघन सुंदर जंगल की, दी बयार मरियानल की, मैदा अपने अपने पठार, मैदा अपने अपने पठार, ना छोड़ा तुमने एक दयार, हम नादा थे जी भर लूटा, एक पल भर को ना कल का सोचा, एक पल भी ना कल का सोचा, फसलें काटी जंगल काटे, नदियों के धारे मोड़ दिए, फसलें काटी जंगल काटे, नदियों के धारे मोड़ दिए, कूड़े कचरे के किए ढेर, प्लास्टिक फेंका ना करी देर, कूड़े कचरे के किए ढेर, प्लास्टिक फेंका ना करी देर, अब क्या हुआ उससे, भूकंप बाढ़ से थर्रा कर तुम भी थक गई है पछता कर, भूकंप बाढ़ से थर्रा कर तुम भी थक गई है पछता कर, आगाह किया तब मानव को, बोली रोको तुम तांडव को, बोली रोको तुम तांडव को, जी भर कर जीने दो मुझको, ये पृथ्वी कह रही है, वरना मैं ना बख्शूंगी तुमको, वरना ना बख्शूंगी तुमको, अब मानवता चित्कार उठी, रानी प्रकृति तुम क्यों रूठी, अब मानवता चित्कार उठी, रानी प्रकृति तुम क्यों रूठी, मिल रही सजा अब भूलों की, चुभ रही गलतियां शूलों सी, मिल रही सजा अब भूलों की, चुभ रही गलतियां शूलों सी, हे धरती माँ मन साफ करो, मेरी भूलों को माफ करो, हे माँ धरती मन साफ करो, मेरी भूलों को माफ करो।
0: और हम
1: धन्यवाद
0: आपसे कहेंगे कि हमारी भूलों को भी आप माफ़ करें, क्योंकि हमने बहुत समय लिया है आपका।
1: जी, ये वर्तमान को कह रही है बस, जो भी हमारा वर्तमान है, तो आपको कितना धन्यवाद दूं, आज मुझे अपने मन की बातें किसी ने सुनी, और पूरा 1 घंटा, 1.5 घंटा करीब, 1.25 घंटा होने वाला है,
0: बिल्कुल
1: ऐसा श्रोता
0: बिल्कुल,
1: मुझको फिर
0: अरे
1: मिलता है,
0: ऐसा
1: ऐसा
0: श्रोता नहीं
1: श्रोता मिलना
0: मिलता, और ऐसा
1: सौभाग्य
0: हम ये कहेंगे कि ऐसा अनुभवी सृजक कहाँ मिलता है जो अनुभव के साथ
1: है।
0: कहता है। और
1: आज मुझे अपने दिल की बातें करते हुए आपके बहुत अच्छा लग रहा है
0: बहुत ही,
1: सर,
0: पर
1: आपसे
0: मैं ये कहना
1: मिलकर।
0: चाहूँगा अब कि आपको कि वो बात जो मैंने नहीं पूछी और आप बताना चाहती हैं, क्योंकि हम बिल्कुल आमने सामने तो है नहीं, इसलिए
1: बताइए।
0: ऐसी नहीं,
1: हाँ
0: ऐसी वो बात जो आपके जीवन
1: जी
0: में सदा अनकही रही हो, या आप उस बात को शेयर करना चाहती हैं, चाहे वो साहित्य की हो, चाहे वो कला की हो, चाहे प्रेम की हो, सौंदर्य की हो, रचना की हो, सृष्टि की हो, वृष्टि की हो, जो भी हो ज़रूर कहिए, ताकि हमारे श्रोता समझें कि आप पर्यावरण लेखिका तो हैं ही, इसके अलावा आपके मन में बहुत सारी बातों से तो वो समझ ही गए हैं, लेकिन और भी जो कुछ
1: हाँ,
0: मेरे
1: आपसे
0: से छूट गया हो, चूक गया हो, वो जरूर बताइए।
1: तो कुछ भी नहीं छूटा, पर क्योंकि आप कुरेद रहे हैं बार बार कि जो आप नहीं कह सकती अनकही है ना,
0: बिल्कुल
1: तो क्या कहूँ, जो नई पीढ़ी है हमारी, उसका जो पहनावा है, उससे मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे अपने परिवार में भी छोटे बच्चे पहनते हैं, लेकिन मेरा बस नहीं है, क्योंकि उन्हें उस दुनिया में रहना है, नहीं तो वे वहां से बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसा वो मैं वो उस ये मैं महसूस करती हूँ कि ये कपड़े अच्छे नहीं है, ये पहनावा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो मेरे हिसाब से कपड़े पहनेंगे तो केवल बुद्धि के बल पे वो उस जग में शामिल नहीं हो सकेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। इसलिए कई बार अपने मन महसूस के रह जाती हूँ और कुछ नहीं कहती हूँ इस बारे में।
0: बिल्कुल, हम भी आपकी बात से 100 से ज़्यादा कितना हो सकता है वहाँ तक सहमत हैं, लेकिन मैंने और शायद लोग मेरे समकक्ष जो भी लोग हैं वो ये महसूस करते होंगे कि कहने से या बताने से शायद वो बदलने वाले नहीं हैं जब तक उनको खुद को इस चीज़ का भान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं आएगी, तब तक तो बहुत मुश्किल है। तो मैं तो मेरा नाम जैसे है वैसे मैं व्यंग कर देता हूँ कि ये छोटा कहाँ है, ये तो काफ़ी बड़ा है, थोड़ा वो छोटा होना चाहिए था। तो हम बुद्धि से छोटे होते जा रहे हैं, वहाँ यदि हम अपना दिमाग अपना ज्ञान जरा सा भी लगा लें तो हो सकता है कि जो आपकी व्यथा है वो कथा ना बने और समाज के लिए उपयोगी हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेना चाहेंगे और आपको आराम देना चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपने सुना डिजिटल वॉइस फॉर जयपुर रेडियो से प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल, और आज की खास मेहमान रही मधुलिका सक्सेना मधु आलोक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।

0: प्रोग्राम किस लिए, इसलिए बात कुछ बन ही गई, इसलिए आइए सुनते हैं समृद्धि चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत ये खास प्रोग्राम।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं समृद्धि सियाटल से जयपुर रेडियो के श्रोता गणों का फिर से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं गीतों के सवाल और गीतों के जवाब प्रोग्राम का तीसरा अंक, जहाँ हर गीत अपने साथ एक सवाल लेकर आता है और अगला गीत उस सवाल का कोई एहसास भरा जवाब दे जाता है। आज की हमारी महफिल समर्पित है उन भूले बिसरे गीतों को, उन नगमों को जिनकी धुनों में एक पूरा दौर बसा हुआ है। पुराने गीतों की एक खूबसूरती होती है, इनमें प्यार का शोर नहीं होता, बस एक धीमी सी आहट होती है, एक नजर, एक मुस्कान, एक अधूरी सी बात, और उन्हीं में पूरी कहानी छुपी होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक मुलाकात जो कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह गई, फिर एक सफर शुरू हुआ, कुछ ख्वाब जागे, कुछ सवाल उठे, कुछ यादें बन गईं, और अंत में कुछ एहसास हमेशा के लिए दिल में रह गए। तो आइए चलते हैं उन सुनहरे दौर की ओर, जहां गीत सिर्फ गाए नहीं जाते थे, जिए जाते थे।

जब दिल किसी का हाथ थाम ले तो मंजिल से ज्यादा भरोसा उस साथी पर होता है। रास्ते अनजान हो तो भी डर नहीं लगता, क्योंकि साथ किसी अपने का होता है। फिर भी मन का एक कोना मासूमियत से यह पूछ ही बैठता है सवाल, सिर्फ मंजिल का नहीं, उस सफर के साथ निभाने वाले का भी होता है। कहां

और जब दिल किसी के साथ चल ही पड़ता है तो ख्वाब भी जागने लगते हैं, फिर रातें छोटी लगती हैं, इंतजार लंबा हो जाता है, आंखों में नींद कम और उम्मीदें ज्यादा होती हैं। मोहब्बत का वह पहला मौसम जब दिल हर पल किसी खास एहसास में डूबा रहता है और यह सोचता है कि अब भला कैसे नींद आए। आइए सुनते हैं जब

प्यार चाहे कितनी भी खामोशी से क्यों ना हो, उसकी आहट दुनिया तक पहुंच ही जाती है। फिर निगाहें सवाल पूछती हैं, मुस्कुराहटें इशारा करती हैं, और लोग जानना चाहते हैं कि मुलाकात हुई क्या बात हुई। इस गाने में मेरा साथ देते हुए हैं रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी।

हर कहानी में कुछ ऐसे पल होते हैं जिन्हें इंसान अपने दिल में के किसी कोने में संभाल कर रखता है। कभी पहली मुलाकात, कभी पहली मुस्कान, कभी वो पल जब लगा था कि शायद यही रिश्ता जिंदगी भर का साथ बन जाएगा। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ रास्ते साथ चलते हैं और कुछ रास्ते धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। ऐसे में दिल पीछे मुड़कर कुछ सवाल पूछता है। इसमें शिकायत नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस एक उम्मीद है कि जिस मुलाकात ने मेरे दिल में इतनी गहरी जगह बनाई, शायद उसकी कोई हल्की सी परछाई तुम्हारी यादों में भी बाकी हो। सुनिए मेरा साथ देते हुए पंकज जी को रांची से, और ये खूबसूरत नगमा, तुम्हें याद होगा कभी हम।

क्योंकि हर प्रेम कहानी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं होती। कुछ कहानियां हमें जिंदगी के बड़े सवालों से भी मिला देती हैं। क्यों कुछ लोगों को उनका प्यार मिल जाता है और क्यों कुछ लोगों के दिल इंतजार करते रह जाते हैं। क्यों किसी के हिस्से में खुशियां आती हैं और किसी के हिस्से में सिर्फ यादें। साहिर लुधियानवी का यह गीत किसी एक इंसान की शिकायत नहीं है, यह उन तमाम दिलों की आवाज है जिन्होंने मोहब्बत को महसूस किया लेकिन उसकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। शायद इसीलिए यह गीत आज भी उतना ही अपना लगता है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा सवाल जरूर आता होगा, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। आइए सुनते हैं पंकज चतुर्वेदी की आवाज में।

0: जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: जयपुर रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों का मैं प्रेरणा, आपकी आज की होस्ट, लफ्जों की गुजारिश में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीवानेपन की, दीवानगी की, दीवानों की। कोई सर्द मौसम का दीवाना होता है, कोई खुली हवाओं का, किसी को बरखा बहार दीवानी कर देती है और किसी को सावन की घटा। एक बादल की दीवानगी को दिखलाने के लिए मैं स्वागत करूंगी नीरज और रानी अय्यर जी का, जो फिल्म कश्मीर की कली का ये सदाबहार गीत दीवाना हुआ बादल गाएंगे।

भाई वाह, हम तो आपकी आवाज के दीवाने हो गए। आंखें मिलती हैं, इकरार होता है और प्यार की उमंगे अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। उषा जी और ऋषि कुमार जी शायद हमें यही बताने आ रहे हैं इस गीत के साथ, जिसके बोल हैं, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, जिसे 1950 में बनी फिल्म बाबुल के लिए तलत महमूद साहब और शमशाद बेगम जी ने गाया था। आइए सुनते हैं।

आहा, किसी ने सच ही कहा है, ओल्ड इज गोल्ड। जब दीवानेपन की बात होती है तब दिल की दीवानगी को कैसे भला नजरअंदाज किया जाए। ये दिल जब किसी के प्यार में पागल होता है तो क्या होता है, शायद बिनीता जी और राहुल वर्मा जी हमसे यही बताने आ रहे हैं। गीत के बोल हैं, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।

दोस्तों, क्या आपको जयपुर रेडियो की खासियत पता है? जयपुर रेडियो के माध्यम से हम आप तक ऐसे गीत भी पहुंचाते हैं जो आम तौर से कहीं गाए नहीं जाते, पर बेहद खास होते हैं। ऐसे ही कुछ दिलवाले दीवानों की अनसुनी कहानी सुनाएंगे हैरी जी और मनीषा जी फिल्म सितमगर के इस गीत के साथ।

वाह मजा आ गया। कॉलेज में मस्ती करते हुए, धूम मचाते हुए, दोस्तों में दीवानों के किस्से तो बन ही जाते हैं। आइए बुलाएं रेक्स जी और समीना जी को इस प्यारी सी नोकझोंक के साथ। ये लड़का है दीवाना, है दीवाना।

जरूरी नहीं इश्क में बाहों के सहारे ही मिले, किसी का दीवाना बन के रहना भी मोहब्बत ही होती है जनाब। बुलाना चाहूंगी राजेश पारकर जी, जो मेरे साथ यानी आपकी आज की होस्ट प्रेरणा के साथ ये गीत गाएंगे। तुझमें क्या है दीवाने, आइए सुनते हैं।

0: इस गीत के साथ ही आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है श्रोताओं। सच कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, हम संगीत के दीवानों के लिए भी नहीं। मैं तो दोबारा मिलने का वादा जरूर पूरा करूंगी, पर आप सब भी जयपुर रेडियो सुनते रहने का वादा जरूर निभाइएगा, क्योंकि यही है आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब। अपनी

0: की यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है इसलिए किस लिए, अपनी सिंगिंग और अपनी शानदार एंकरिंग के साथ इस प्रोग्राम में हमारे संग रहेंगी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं ये खास प्रोग्राम किस लिए इसलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, जयपुर रेडियो के श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं समृद्धि सियाटल से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दूसरा अंक किस लिए इसलिए प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम हमने जो बनाया है, इसमें हमने कोशिश की है कि हमारे मन में जो तरह तरह के विचार आते हैं, जो प्रश्न होते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किसका, क्यों, उसके उत्तर हम गीतों के जरिए दे सकें। हमारे गीत ही जवाब देंगे, हमारे गीत ही प्रश्न करेंगे। आशा करती हूं कि हमारी ये पेशकश आपको पसंद आएगी। अक्सर रिश्तों की शुरुआत छोटी सी शिकायत से होती है। शिकायत भी ऐसी जिसमें नाराजगी कम और अपनापन ज्यादा हो। जैसे यूं मानो कि आपने तो मुझे बुलाया नहीं, पर क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। शुरुआत करते हैं आज की कड़ी की इस प्यारे से नटखट से गाने के साथ।

कई बार हम चाहते हुए भी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला सकते या वैसा बिहेव नहीं कर सकते, एटलीस्ट पब्लिक में, जैसा हम सच में करना चाहते हो। यही तो खास बात है पुराने हिंदी गीतों की कि हर सिचुएशन को उसने इतने अच्छे से कैप्चर किया हुआ है कि आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है किसी ना किसी प्यारे से गीत में। तो आइए सुनते हैं। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, आहा, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

जिसका हमें इंतजार था, या फिर शायद हमें पता ही नहीं था कि हमें इंतजार किसका है। जब ऐसा कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है तो दिल में आहट तो होती है और आंखों में चमक उठ जाती है, दिल में झनकार बज जाती है और दिल आपसे कुछ ऐसे बात करता है कि

कई बार सिर्फ हमें किसी साथी के मिल जाने से हमारी तलाश पूरी नहीं होती। कई बार लाइफ या जिंदगी के सवाल और गंभीर होते हैं, केवल प्यार इश्क मोहब्बत तक नहीं रह जाते। कई बार इंसान को समझ नहीं आता है कि उसे आखिर चाहिए क्या है। और ऐसी ही सिचुएशन के लिए, ऐसी ही बात को याद करते हुए एक बहुत ही प्यारा गीत।

दिल आपसे सवाल सिर्फ दुखी होके या उतावला होके नहीं पूछता, कभी कभी खुशी में भी सवाल पूछ बैठता है कि वाह क्या कहना। कई बार जब आप अपने परिवार वालों से घिरे हो, जब अपने प्यार करने वालों से घिरे हो, जब आपका घर पूरा हो, तब दिल खुशी से पूछ बैठता है, ए दिल।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब। अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए, अपनी सिंगिंग और अपनी शानदार एंकरिंग के साथ इस प्रोग्राम में हमारे संग रहेंगी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं ये खास प्रोग्राम किस लिए इसलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, जयपुर रेडियो के श्रोता गणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं समृद्धि सियाटल से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दूसरा अंक किस लिए इसलिए प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम हमने जो बनाया है, इसमें हमने कोशिश की है कि हमारे मन में जो तरह तरह के विचार आते हैं, जो प्रश्न होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, क्यों, उसके उत्तर हम गीतों के जरिए दे सकें। हमारे गीत ही जवाब देंगे, हमारे गीत ही प्रश्न करेंगे। आशा करती हूँ कि हमारी ये पेशकश आपको पसंद आएगी। अक्सर रिश्तों की शुरुआत छोटी सी शिकायत से होती है, शिकायत भी ऐसी जिसमें नाराजगी कम और अपनापन ज्यादा हो। जैसे यूं मानो कि आपने तो मुझे बुलाया नहीं, पर क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। शुरुआत करते हैं आज की कड़ी की इस प्यारे से नटखट से गाने के साथ। माना जनाब ने पुकारा नहीं,

0: कई बार हम चाहते हुए भी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला सकते या वैसा बिहेव नहीं कर सकते, एटलीस्ट पब्लिक में, जैसा हम सच में करना चाहते हो। यही तो खास बात है पुराने हिंदी गीतों की कि हर सिचुएशन को उसने इतने अच्छे से कैप्चर किया हुआ है कि आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है किसी न किसी प्यारे से गीत में। तो आइए सुनते हैं। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, आहा, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।
1: इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

हंसी मजाक की बातें कब दिल में घर कर जाती हैं पता ही नहीं चलता। जब मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है तो हर वक्त बस एक ही ख्याल रहता है कि हम अपने चाहने वाले के साथ हों, वो कहाँ हैं। और इसी बात पे एक और प्यारा सा गीत प्रश्न से भरा मुझे जो याद आ रहा है वो है

जिसका हमें इंतजार था, या फिर शायद हमें पता ही नहीं था कि हमें इंतजार किसका है। जब ऐसा कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है तो दिल में आहट तो होती है और आंखों में चमक उठ जाती है, दिल में झनकार बज जाती है और दिल आपसे कुछ ऐसे बात करता है कि

कई बार सिर्फ हमें किसी साथी के मिल जाने से हमारी तलाश पूरी नहीं होती। कई बार लाइफ या जिंदगी के सवाल और गंभीर होते हैं, केवल प्यार इश्क मोहब्बत तक नहीं रह जाते। कई बार इंसान को समझ नहीं आता है कि उसे आखिर चाहिए क्या है, और ऐसी ही सिचुएशन के लिए ऐसी ही बात को याद करते हुए एक बहुत ही प्यारा गीत

आपसे सवाल सिर्फ दुखी होके या उतावला होके नहीं पूछता, कभी कभी खुशी में भी सवाल पूछ बैठता है कि वाह क्या कहना। कई बार जब आप अपने परिवार वालों से घिरे हों, जब अपने प्यार करने वालों से घिरे हो, जब आपका घर पूरा हो, तब दिल खुशी से पूछ बैठता है, ए दिल।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान, नई आवाज नई पहचान में आज हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से। शीतल बहुत ही अच्छा गाती हैं, हमने एक गीत सुना है उसी से हम कह रहे हैं, उसी आधार पे कह रहे हैं। और जब हम बात करेंगे शीतल से और आप उनकी शीतल सी वॉइस को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे बाप रे बहुत अच्छा गाती हैं। तो वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। और हमारे संग हमारे साथ अपने परिचय के साथ शीतल वापरे। शीतल क्या कहेंगी हमारे श्रोताओं को अपने परिचय के रूप में?
1: धन्यवाद गाइस और धन्यवाद व्यास हरिशंकर जी, आपने मुझे जयपुर रेडियो प्रोग्राम के लिए पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेडियो पे आज मेरे रेडियो पे प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम है। हाँ,
0: और अपने बारे में बताएं कि आप कब से गा रही हैं और क्यों गा रही हैं?
1: मुझे बचपन से ही सिंगिंग का शौक है, मेरी सिंगिंग की शुरुआत ही मेरे भजन से हुई है और उस वक्त पता नहीं चला था कि मैं इतना अच्छा गा सकती हूँ।
0: अच्छा, और भजन, ये प्रेरणा मुझे में भजन,
1: हाँ,
0: से
1: भजन से हुई।
0: तो कौन सा भजन था, उसके बोल भी हम सुनना चाहेंगे?
1: छोटे बच्चों के लिए बालोपासना, बेलगांव जो शहर है सिटी, उसमें श्री कलावती देवी, उनके भजन मैं गाती थी छोटे बच्चों के लिए बालोपासना। तो मेरी आवाज सुनकर उन्होंने मुझे माइक में ये बालोपासना का जो भजन है वो बोलने का अवसर दिया। तो
0: उसकी दो लाइनें हम सुनना चाहेंगे, कैसा था वो?
1: मराठी में है।
0: जी जी।
1: श्री गणपते विघ्न नाशना मंगल मूर्ते मुषक वाहना,
0: क्या बात,
1: तिमिरे नाशिषी निज ज्ञान देवनी। बस इतना है, बहुत बड़ा है, मैं अभी इतना ही गा सकती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो हम यही सुनना चाह रहे थे कि उससे, उसके नाम से, विघ्न विनाशक के नाम से शुरू हो तो हमारा प्रोग्राम भी अच्छा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हम विनायक विघ्ननाशक उस
1: गणपति बप्पा
0: को प्रणाम करते हुए आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। और कौन सा गीत हम सुनाएं आपको, कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? पहला गीत
1: मैं पहले ये गाना सुनाना चाहती हूँ दर्शकों को।
0: जी,
1: दशावतार मूवी हो गया था तेलुगु भाषा में, तो उसका हिंदी रिमेक था कमल हसन का, तो उसमें कृष्ण का जो गीत है वो मैं सुनाना चाहती हूँ।
0: उसके थोड़े से बोल गाके सुनाएंगे।
1: मुकुंदा मुकुंदा मुझे मुकुंदा मुकुंदा ही होते हैं स्पेशल।
0: मुकुंदा मुकुंदा, जी हाँ, तो मुकुंदा को याद करते हुए हम ये सॉन्ग

0: नजदीकियां, और सच में आवाज की नजदीकियां जो होती हैं वो माइक के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचती है, और हम गाते हैं। हमारी आवाज, नई आवाज, नई पहचान, एक ऐसी पहचान बन जाती है जिसे कहते हैं शीतल वापरे। शीतल वापरे हमारे साथ हैं आज इस प्रोग्राम में, और शीतल, बहुत ही सुरीला सॉन्ग हमने आपकी आवाज में सुना, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप हमें और हमारे श्रोताओं को? आप गीतों से बहुत,
1: मेरा गाना बहुत, मेरे गाना, मैंने जो गाना गाया है वो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आवाज?
0: वो तो हमारे श्रोता है बताएंगे। हमने तो पहला गीत सुना तभी हम नजदीक आ गए, और ये नजदीकियां जो है वो और सुरीली हो गई, और आज की शाम जो है वो आपके गीतों से महक गई, यही कहेंगे। और श्रोताओं को जिन्होंने अभी अभी जयपुर रेडियो ऑन किया है उनको बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है वो आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, और हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से। बहुत ही सुरीली गाती हैं, और अभी शीतल सुना होगा कि जो सोना है जिसको महिलाएं बहुत पसंद करती हैं, और जो लेडीज हैं वो गले में चैन वैन भी पहनती है, तो सोने के भाव बहुत ही आसमान छू गए। तो वो एक गाना भी है ना, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना, तो ऐसा गाना कोई है याद आपके जहन में और वो सुनाएंगी हमें, क्योंकि
1: हाँ है ना, तीसरी मंजिल का गाना है शम्मी कपूर जी और आशा आशा जी का, मैंने गाया है, आपको भेजा है मैंने।
0: बिल्कुल, आप थोड़ा सा सुनाएं वैसे तो अच्छा लगेगा।
1: ये जो गाना है वो अपने जो क्या बोलते प्रेमी है उसको मनाने के लिए बोला है आशा पारेख जी ने।
0: अच्छा, वो वाला
1: आशा
0: भोगी
1: की आवाज में। अच्छा, वो वाला सोना नहीं है, अपने जो मन

0: मैंने तुझे जरा देर में जाना रे, हुआ कसूर खपा मत होना रे। शीतल मी मराठी, शीतल वापरे हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर, आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच। और शीतल का ये गाना, ये गीत आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आपके फीडबैक की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हम यदि समय पर फीडबैक मिल जाते हैं तो हम उनको इसी लाइव शो में शामिल भी करेंगे, इसलिए आप जरूर अपना फीडबैक लिखना देना ना भूलें। शीतल वेलकम है फिर से एक बार। अब इस गीत के बाद क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, कोई बात जो हमने ना पूछी हो?
1: ऐसी कोई बात नहीं सर, लेकिन ये गाना गाने की प्रेरणा है ये मेरी बुआ से मिली है, यानी कि मेरे पापा की बड़ी बहन।
0: अरे वाह,
1: आज वो होती तो बहुत, आज वो इस दुनिया में नहीं है, होती तो बहुत उसको बहुत खुशी होती कि मेरे प्रोग्राम हो रहा है, मेरे रेडियो पे भी प्रोग्राम हो रहा है। वो होती तो बड़े चाव से वो सुनती, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है।
0: वो मुझे भी आ रही है उनकी, और उनकी आत्मा, उनकी रूह जो है ना, वो आपके गीत को सुन रही है, हमारी बातचीत भी सुन रही है, क्योंकि हम कहते हैं आवाज ही पहचान है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा,
1: बदल जाएगा,
0: मेरी आवाज ही पहचान है। तो जहाँ तुम्हारी बुआ है वो आवाज भी इस यूनिवर्स में ही है, कहीं नहीं गई है, और वही आवाज, वही आवाज जो है वो आज एक रूह के रूप में आपकी आवाज को सुन रही है, पहचान रही है, और वो कह रही है कि शीतल गा रही है, और उसकी शीतल सी बयार मेरे पास आ रही है। वो

सुन रही है, बहुत ही मनोयोग से मन से सुन रही है और मुझे तो यही कह रही है कि आप शीतल का एक गीत और सुना दीजिए ना, तो हम सुना ही देते हैं आपको आपका ये गीत हमारे सभी श्रोताओं को। आइए सुनते हैं सब मिलके इस गीत को, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: बहुत सुरीली सुरीली सुरीली बहुत ही स्वीट वॉइस शीतल की हमारे साथ हैं आज लाइव इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। शीतल, आवाज सुन के ऐसे लगता है कि एक स्केल पे गाती हैं आप, और आपका वॉइस पे जो कंट्रोल है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। यानी इसमें कोई चीखना चिल्लाना नहीं है, जो ऊंचा स्वर है उसको भी आप अपने सलीके से अपने कंट्रोल से उसको काबू में रखती हैं और फिर उसको गा लेती हैं। तो ये रियाज और ये सब जो चीजें हैं वो आपने कब सीखी, कैसे आई, इसके बारे में कुछ बताएंगे?
1: जी, गाना गाने के लिए मैं गाना गानी रहती, और मेरी एक स्पेशलिटी है कि मैं गाना ठीक से सुनती हूँ, क्योंकि कोई भी गाना उसी तरह से गाना हो तो ठीक तरह से सुनना चाहिए। उसका जो चढ़ाव उतार जो है, हरकतें हैं, वो ठीक तरह से आनी चाहिए। और ऐसी कोई बात नहीं कि जो सिंगर है उसी की आवाज से ही गाना है, वो कैसे गा रहा है, वो किस तरह से गा रहा है, वो देखना चाहिए, वो सुनना चाहिए। मुझे हमेशा कोई पूछेगा कि आप कोई तो बताओ कि हम कैसे गा सकते हैं, क्या करना, तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप पूरा गाना जो आपको गाना है वो पूरा ठीक तरह से सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि हम भी यही सलाह देते हैं जो इस मंच पे आते हैं उनको, कि कम से कम उस गीत को आप गाने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले,
1: उसके जो बोल है कुछ किधर रुकना है, किधर बढ़ाना है, वो ठीक तरह से सुनना चाहिए। और थोड़ा सा मतलब ये भी चाहिए कि याद भी होना चाहिए कि हम लोग सामने थोड़ी मतलब म्यूजिक रहता है, तो हमको जो याद होगा जो गाना वो अपने आप भी आना चाहिए।
0: बिल्कुल, देख के गाना भी एक अपने आप में अपराध ही है सिंगर के लिए। यानी उसे गीत याद होना चाहिए। हम देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, तो उसमें सामने मोबाइल लेके और गाना शुरू कर दिया, तो वो गाना जो है वो गाना नहीं होता। बल्कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम और आप दोनों मिलके सबको कहना चाहेंगे कि गाना ऐसा होना चाहिए जो आपको याद हो। आप उसको देख रहे हैं तो उसको बांच रही है, उसको पढ़ रही हैं, उसको पढ़ के आप सुना रही हैं। जैसे चिट्ठी आई है तो चिट्ठी को आप पढ़ते हैं, लेटर को पढ़ते हैं, उसी तरह से वो पढ़ना नहीं है, रीड करना नहीं है, गाना है। उसमें अपनी आत्मा को, अपनी आवाज को मिला देना है, एक साम्य होना चाहिए। ऐसा यदि
1: जैसे कि किसी को सिर्फ गाना सुनने का शौक होता है
0: जी,
1: किसी को गाना गाने का शौक होता है, किसी को सिर्फ गाने का शौक होता है।
0: बिल्कुल, तो कुछ होते हैं जिसको गाने सुनने का शौक होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको गुनगुनाने का शौक होता है, कुछ ऐसा होता है उनको गाने का शौक होता है पर सुनाने का नहीं होता। अगर आप सुनाना चाहते हैं, अगर आप सच में एक सिंगर बनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो आपकी वॉइस में हमें ऐसा नहीं लगा कि आपने कहीं कोई चीज को छोड़ा है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने अपनी आवाज को पहचान दी है। तो आइए सुनते हैं आपका ये अगला सुरीला सॉन्ग जिसे आपने गाया है, यानी हमारी आज की सिंगर मेहमान शीतल वापरे, बहुत ही सुरीली आवाज की धनी है, इनकी आवाज ही अपने

ये दम चल के जो अचल भी डल के बताओ चले कोई कैसे संभल के अताओं की नरमी निगाहों की गर्मी से दल बिकले और बैठ के दिल बहुत से फंसाने बहुत से तराने सुनाने को आए हैं तेरे दीवाने जा दिलों पे समझ तू है जाने जाने के मिल।

नंजा नीरा हमें है तुमने कहा में ये दिल जो मेरा है सच है कि तेरा इससे उजाला है वरना अंधेरा है तू है तो फिर क्या है कम मगर फिर भी मुझको ये तुझसे गिला है कि दोनों में अब तक ये क्यों फासला है ये दूरी मिटा दे ये पर्दे हटा दे कि अब एक हो जाए हम

0: थैंक यू, जय हो पंचम।
1: आज मुलाकात है, होने को पहचान है, और सच में मुलाकात हम करवा रहे हैं आपकी पुणे महाराष्ट्र की शीतल वापरे। नई आवाज नई पहचान, पहली बार जयपुर रेडियो के इस मंच पर आना तो इनको पहले ही चाहिए था, लेकिन बहुत देर से आई। क्या कारण रहा, क्या वजह रही, ये तो शीतल ही बताएंगी। शीतल क्या कहेंगी गीतों के बारे में, और किस तरह की गीत आप पसंद करती हैं? जैसा कि आपने बताया कि आप भजन से आपने शुरुआत की, गणपति बप्पा के, और उसके बाद आपने कौन से गीत गुनगुनाए, फिर गाए, फिर हमें सुनाए, तो इसके बारे में, इस यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे?
2: आज तक मैंने बहुत बॉलीवुड सॉन्ग गाए, मराठी भी सॉन्ग गाए हैं, और हिंदी, तेलुगु और नेपाली भाषा में भी मैंने गीत गाया है।
1: अरे वाह।
2: लेकिन मैंने शो नहीं किया है, सिर्फ एक स्टार मेकर का ऐप है उसमें ही गाया है
1: जी।
2: और लेकिन मैं मराठी गाना बहुत पसंद करती हूँ, और मराठी, और मुझे गजल सॉन्ग भी पसंद है, मराठी में जो लवली सॉन्ग है वो भी पसंद है, और ऐसा गाना गाना है कि जो इसमें वेरिएशन हो, जैसे कि अभी लेट श्रीमती आशा भोसले ने जी नहीं है हमारे यहाँ, तो उन्होंने जो जिस तरह से गाने गाए हैं वैसे गाने गाने की मैं इच्छा रखती हूँ।
1: तो मतलब ये कि आप एक वर्सटाइल सिंगर हैं, आपको कहा जा सकता है ना, आप पे ये मोहर लगाई जा सकती है कि आप हर तरह के गीत गा सकती हैं।
2: जिस जो भाषा मुझे अच्छी लगे, मधुर लगे
1: जी,
2: गुनगुनाती हूँ, तो अपने आप वो अब मन से उसको बोलना चाहिए कि हाँ मैं गा सकती, ये इस भाषा में मैं गा सकती हूँ। वैसे ही भाषा मैंने तेलुगु, नेपाली, तमिल में भी गाया है, लेकिन किसी को सुनाया नहीं अब तक अपने, मतलब
1: अब आपको, मेरे आपको मंच मिल गया है, अब आप सुनाइए और सुनाते रहिएगा। हमें तो आज मालूम हुआ कि आप तेलुगु, तमिल, नेपाली, मराठी, हिंदी और इतनी भाषाओं में गीत गाती हैं, और फिर इतनी लेट आती हैं, ये जो है ना गजब, अजब गजब बात है।
2: उनमें से तेलुगु और नेपाली भाषा बहुत फिट है, मतलब वो गाना गाने के लिए बहुत, मतलब ऐसे, मतलब हिंदी मराठी जैसा नहीं है, अपने आप मुंह में मुझे ओठों पे आ जाता है वो गाना, उसका जो शब्द है वो अपने आप आ जाता है।
1: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, ये जो मराठी या नेपाली में या तेलुगु तमिल में गाना चाहते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत ही हार्ड होगा, बहुत मुश्किल होगा गाना, लेकिन आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं आपकी बात और सुनते हैं ये आपका एक अजब गजब गीत, रात अकेली है। आपने जो जिक्र किया कि हर तरह का चैलेंज आप स्वीकार करती हैं, तो इस गीत में देखते हैं आपकी आवाज।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान में हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से।

0: कानों में कुछ कहूं और कहना है सब सुनने वालों को कि शीतल बहुत अच्छा गाती है और शीतल हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं पुणे महाराष्ट्र से और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान की हमारी आज की मेहमान को शीतल वापरे
1: जी
0: क्या कहेंगे हमारे जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं लिसनर्स वो उनके मैसेज आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या सच में आपकी आज की सिंगर मेहमान की आवाज है इस गीत को सुनने के बाद तो हमसे प्रश्न किए जा रहे हैं तो उन प्रश्नों का आप ही उत्तर दीजिए और कौन कौन से सिंगर
1: आप ही बता दीजिए सर
0: कौन कौन से सिंगर्स हैं जिनको आप गाती हैं लाइक करती हैं
1: वैसे तो सबकी आवाज अच्छी है जैसे कि लता जी साधना आशा भोसले अलका याग्निक प्रिय घोषाल सोनू निगम एस पी बालसुब्रमण्यम और बहुत है लेकिन मुझे आशा जी की आवाज बहुत अच्छी लगती है और वो मेरी फेवरेट भी है थी और उसपे आडे जी का जो म्यूजिक है वो बहुत उनकी म्यूजिक भी मैं पसंद करती हूँ सब म्यूजिक मैं पसंद करती हूँ
0: तो हमारी बात हुई थी मुकुंदा से और मुकुंदा जो गीत है उसको हम थोड़ा सा आपकी आवाज में वैसे सुनना चाहेंगे ताकि हमें लगे कि हाँ ये शीतल की आवाज से मैच करता है
1: लाइव में क्या
0: हाँ लाइव जी थोड़ा सा गा के दो लाइनें गा के सुनाइए ताकि पता लगे जी हमारे सुनने वालों को यकीन हो जाए कि हाँ एक वर्सेटाइल सिंगर जो है हमारे आज इस मंच पर है हमारे साथ
1: ये दशावतार फिल्म है तमिल में भी हुई थी और तेलुगु में भी हुई थी कमल हसन उसके लीड हीरो है
0: जी
1: और असीम एक्टर्स है
0: जी
1: तो मैं उनका जो गाना है वो उस तेलुगु और तमिल भाषा में तो बहुत अच्छा है लेकिन साधना सरगम ने जो गाया है

0: वाह आनंद आ गया मुकुंदा, आनंद देने वाला शीतल की आवाज, शीतल सी हमने सुनी इस सुरीले सॉन्ग में। क्या कहें, समझ में नहीं आता, हम निःशब्द हो गए। इतना सुरीला गान ये तो आपके अलावा कौन गा सकता है। क्या कहेंगे शीतल, आप गाने तो गाती हैं, सिंगिंग करती हैं, सिंगिंग की आज की हमारी मेहमान हैं, और सुनने वालों को बता दें कि आज नई आवाज नई पहचान में हमारे संग हमारे साथ हैं शीतल वापरे, पुणे महाराष्ट्र से बहुत ही सुरीली आवाज लेकर इस मंच पर उपस्थित हैं। तो सिंगिंग के अलावा क्या क्या शौक हैं आपके और क्या करती हैं, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग है?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, रीडिंग भी करती हूँ और मुझे खाना बनाने का भी शौक है।
0: क्या क्या बना लेती हैं वैसे, आजकल तो बनाती नहीं है आजकल की महिलाएं?
1: सब,
0: तो
1: सब वेज नॉन वेज सब
0: सब बना लेती हैं जी। बहुत अच्छी बात है। और गाना कितनी देर गाती हैं दिन में, आप कितना समय देती हैं गीत?
1: नहीं, समय मिलता है वैसे गा लेती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ थोड़ा बहुत, तो मतलब माइक में, मतलब कराओके मैं थोड़ा सा गाती हूँ अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से केजे यशोदास सिंगर है वो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो संगीत के इतिहास में सबसे महान गायकों में से वो माना जाता है। बहुत भाषा में भी उन्होंने गाना गाया है, उनकी मधुर दिव्य आवाज को सम्मान में उन्हें गान गंधर्व मतलब स्वर्गीय आवाज कहते हैं, मराठी में कहते हैं कि देवांचा आवाज, ये उपाधि उन्हें मिली है। बहुत अच्छी तरह से मैंने उनके गाने भी सुने हैं, सदमा का जो गाना है रुमई अखियों से, बहुत मुझे अच्छा लगता है।
0: बहुत ही
1: अपने पराए जो फिल्म है हिंदी, उसमें श्याम रंग रंगारे जो बंगाली थोड़ा सा सॉन्ग है लेकिन बंगाली म्यूजिक है उसमें, वो भी अच्छी लगती है।
0: आइए सुनते हैं
1: तुझे मेरे सुर में,
0: सदमा का ये सुरीला सॉन्ग जो आपने गाया है।

बदन में सांप चलते हैं तेरे बिना।

0: बहुत ही सुरीला प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। नई आवाज, नई पहचान, और हमारा मन नहीं करता कि हम इस प्रोग्राम को ब्रेक करें, लेकिन समय जो है वो कहता है कि आखिरी गीत सुन लिया जाए। तो शीतल हमारे साथ हैं। शीतल सुन ले, हम इजाजत है आपकी इस गीत के लिए।
1: जी जी,
0: तो आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग, मार गई मुझे तेरी जुदाई। और उसके बाद शीतल क्या कहेंगी वो इस गीत के बाद हम सुनेंगे।

0: और समय ने अंगड़ाई ले ली है, फिर भी हम शीतल को कहेंगे कि जाते जाते चलते चलते क्या कहेंगी आप?
1: मैं बचपन से गाती हूँ, लेकिन कभी इतने लाइमलाइट में नहीं रही। यूं ही दोस्तों के बीच और रिश्तेदारों के बीच मैं मुंबई में रहती थी। शादी के बाद पुणे आई। कुछ साल बाद मुझे ये स्टेज शो करने का अवसर मिला, स्टूडियो में गाने का मौका मिला
0: जी।
1: मैंने कराओके शो भी किए, चैरिटी शो भी किया, मध्य प्रदेश के रेडियो प्रोग्राम में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था दो साल पहले
0: जी।
1: और ये सब करने के लिए मेरे पति ने बहुत मुझे सपोर्ट किया।
0: वेरी गुड।
1: उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक यू संजय, क्योंकि हर किसी को इतना मोरल सपोर्ट नहीं मिलता घर से।
0: बिल्कुल, और नहीं मिलता तो फिर वो नहीं कर सकता। और
1: नहीं कर सकते सर, उनके सपोर्ट के बिना मैं कर ही नहीं सकती।
0: बिल्कुल।
1: उनको भी गाना, उनको गाना गाना नहीं आता, लेकिन वो गाना पसंद करते हैं, मेरा गाना सुनते हैं और मुझे वो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताते भी है
0: कि इसको यहाँ से ठीक
1: करो, ऐसा बराबर यहाँ से ठीक करो, वहाँ से ठीक करो, क्योंकि पहला गाना मैं उनको ही सुनाती हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: वो बोलते मुझे ये सजा क्यों, लेकिन आप ने मुझे चांस दिया तो आप ही मेरा गाना सुनेंगे पहले।
0: ये सजा नहीं है, ये तो सजा नहीं, क्योंकि ये तो मजा है संगीत
1: ये
0: का।
1: प्यार है, ये प्यार है,
0: ये प्यार भी है और ये संगीत का मजा भी है, तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने।
1: और सर आपको भी धन्यवाद,
0: हमारे को प्रोग्राम, हमारा धन्यवाद तो हमारे श्रोता देंगे हमें, और आप आई इस मंच पे और हमारे साथ इतनी बातचीत की, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रिया कहेंगे, आभार कहेंगे, नमस्कार कहेंगे और इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। बहुत धन्यवाद शीतल वापरे, हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से रही, प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान में बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं गीता दर्शन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। अभिव्यक्ति का आंचल, और इस क्रम में आज हमारे साथ हैं इंदौर मध्य प्रदेश की सोनम उपाध्याय नोमी। सोनम जी जो हैं वो एक अच्छी रचनाकार हैं और कविताएं लिखती हैं, चिंतक है, विचारशील हैं, और बचपन से लेके अब तक जो भी अनुभव आपने अपने विचारों में शब्दों के द्वारा उतारे हैं वो कविताएं बन गईं, और उन्हीं के माध्यम से आज देश विदेश में अपना नाम और अपनी रचनाएं पहुंचा रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर हमारे साथ सोनम उपाध्याय नोमी हैं। जी हाँ सोनम जी, वेलकम है आपका, स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके बारे में जितना हम जानते थे वो तो हमने परोस दिया है हमारे श्रोताओं के समक्ष, अब आप बताएं और रूबरू हैं आप हमारे श्रोताओं से।
2: नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत आभार, और इतना अच्छा अवसर आज मुझे मिला है कि मैं अपनी भावनाएं आप सभी के सामने अभिव्यक्त कर सकूं। और मुझे ऐसा लगता है कि कविता बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने मन की भावनाएं, देश के प्रति अपनी भावनाएं, किसी रिश्ते के प्रति आप क्या सोचते हैं उसे व्यक्त करने का। और कविता एक अलग ही तरह का सुकून आत्मा को देती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कविता शब्द है और शब्द एक सुकून जैसा काम करता है। जब कोई भी व्यक्ति हताश महसूस करता है और कुछ शब्द किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे कह दिए जाते हैं कि उससे एक सुरक्षा का भाव निर्मित होता है, एक आकांक्षा फिर से पैदा होती है, एक आशा मिलती है किसी व्यक्ति को। और मुझे ऐसा लगता है कि कविता सबसे अच्छा माध्यम है, उसका सबसे सशक्त माध्यम है, और आज के समय में साहित्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हर व्यक्ति को।
0: तो कविता के बारे में आपने कहा कि अपने को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है कविता रचना। और सोनम हमारे साथ हैं, नाम सोनम है आपका, और सोने का भाव तो आजकल बहुत ज्यादा उछाल खा रहे हैं है? तो ये सोनम और उपाध्याय और उसके बाद नोमी, तो इनका क्या सामंजस्य है, जरा हमारे श्रोताओं को इसकी व्याख्या करके बताएंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कहाँ रहती हैं सोनम? कहाँ रहती
2: हूँ? इंदौर रहती हूँ, इंदौर में रहती हूँ
0: जी। भारत का दिल है ना
2: जी? बिल्कुल। और दिल हमेशा भावनाओं से घिरा रहता है, उसमें दिमाग बहुत कम काम करता है और दिल बहुत ही ज्यादा भावुक होता है।
0: तो आज
2: ऐसा लगता है कि शायद
0: आज से हमें भी रख लीजिए और हमारे जयपुर रेडियो को भी रख लीजिए अपने दिल में।
2: बिल्कुल जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, जरा सी जगह दीजिएगा जी।
2: हाँ जी हाँ जी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ आज। और सोनम मेरा नाम है और नौमी मेरी बेटी का नाम है, नौमी का नाम है उसका, घर का नाम नौमी है। मेरी इंस्पिरेशन है वो, तो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, तो मैं उसको एक देवी के रूप में अपने जीवन का हिस्सा मानती हूँ, तो उसी के लिए मैंने अपने नाम के आगे नौमी लगाया है।
0: वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये एक ऐसा उदाहरण है जो अपने आप में अनूठा है। बहुत लोग अपने पति का नाम लगाते हैं या पिता का नाम लगाते हैं, पर आपने उस देवी का जो इस सृष्टि की वृद्धि में आपके साथ बढ़ रही हैं और आपकी देखरेख में बढ़ रही हैं, तो हम उसका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं इस नाम का, कि इस तरह से भी लोग सोचते हैं और उस सोच को सच में अपनी प्रक्रियाओं में कार्यशैली में ढालते हैं। ये जान के बहुत ही अच्छा लगा। तो सोनम जी, कविता के बारे में आपने बताया, रचनाओं के बारे में बताया, कविता और रचनाओं के अलावा भी आप किसी क्षेत्र में अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं, व्यक्त करती हैं, चित्रकारी में या कहीं लेखन में, चिंतन में, किसी और दिशा में, खेल कूद में, इसके बारे में बताएंगे?
2: हाँ जी बिल्कुल, मेरा बहुत ज्यादा लगाव बचपन से ही रहा है साहित्य को लेके, कला को लेके। हमारे देश का, हमारे देश की जो धरोहर है, जो हमारे देश का इतिहास है, इतना स्वर्णिम इतिहास है, तो जो हमारे पूर्वज हैं इतने ज्यादा वीर रहे, इतने कलाकार हमारे देश में हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे बताने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान में कैसी कैसी विभूतियों ने जन्म लिया है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो कलाकार होते हैं वो भगवान के सबसे प्रिय बच्चे होते हैं, मतलब भगवान कभी भेदभाव नहीं करते अपने बच्चों में, लेकिन जिनको वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनको वो कलाकार बना देते हैं, क्योंकि भगवान भी सृजन करते हैं, सृष्टि का सृजन किया है, हम सबका सृजन किया, और एक कलाकार भी सृजन करता है दिन प्रतिदिन। तो ये सोच है मेरी, और कहीं कभी किसी कोने में किसी हताश व्यक्ति, किसी निराश व्यक्ति को अगर हमारी कविताएं, हमारे शब्द, हमारी रचना के माध्यम से जीवन फिर से जीने की एक दिशा अगर मिल जाए, तो हमारा लिखना अभिभूत हो जाता है, हमारा लिखना सार्थक हो जाता है।
0: बहुत ही सुरीली और सजीव सोच है आपकी, और इसी का परिदृश्य आपकी कविताओं में देखने को मिलेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो हो जाए एक रचना आपकी अपनी जुबानी सोनम।
2: मेरी बहुत उपाध्याय, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी बहुत ही प्यारी रचना है और कई लोगों को पसंद आती है, कई स्टेजेस पे मैं हमेशा यही सुनाती हूँ सबसे पहले। तो ये इस तरह से है कि यूना मायूस होकर आंसू बहाते रहिए, कि यूना मायूस होकर आंसू बहाते रहिए, और उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए।
0: बहुत खूब।
2: और आशा नहीं है, धन्यवाद, आशा नहीं है यो गर्दिशों को झेल पाना, आशा नहीं है यो गर्दिशों को झेल पाना, फिर भी मुश्किलों के आगे नहीं सिर झुकाते रहिए, और जो तूफान में भी साहिल को, और जो तूफान में भी कश्ती को साहिल तक ले जाए, जो तूफान में भी कश्ती को साहिल तक ले जाए, उस माझी से हिम्मत का गीत गुनगुनाते रहिए, उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए।
0: उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए। और मुस्कुराते मुस्कुराते आपने ये सजीव सी, सजीली सी कविताएं सुनाई, जो जीवन का दर्शन भी है और जीने के ढंग को प्रतिपादित करती है आपकी रचना। बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई हमारे श्रोताओं को। अब आगे बढ़ते हैं इस बातचीत में और जानना चाहेंगे कि आप कौन से रचनाकारों को पसंद करती हैं, किन कवियों को, कवित्रियों को, किन को सबसे ज्यादा लाइक करती हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, प्रेमचंद के लेखन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है।
0: यथार्थ लेखन और बिल्कुल
2: हम इसके अलावा जो निराला जी हैं, समय बिल्कुल कम पड़ जाएगा और जी बिल्कुल, और परसाई जी हुए, हरिवंश राय जी हुए
0: जी,
2: जिनके जितनी जितने भी नाम लो उतने कम है। सब जब भी लेखन मेरे सामने आता है, अभी कुछ नवीन लेखन भी बहुत अच्छा सब लोग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान के साक्षात भेजे हुए फरिश्ते हैं सब। जितना पढ़ा जाए उतना डेप्थ, मतलब इतनी गंभीरता, इतनी गहराई कि जब इन्हें पढ़ा जाता है इनकी रचनाओं को, तो ऐसा लगता है कि आपके सामने सब कुछ चल रहा है, चित्रण बिल्कुल आपके सामने होता है, तो वही असली कविता है, मुझे ऐसा लगता है।
0: चित्र आपके सामने बहुत, बहुत सही बात आपने कही। और जो भी पढ़ता है ना, जैसे आपने पढ़ी तो आपके समक्ष एक एक परिकल्पना आपके दिमाग में एक नई सी फिल्म बनेगी, और दूसरा पढ़ेगा उसके दिमाग में उसके सोच उसके शब्दों के अनुकूल दूसरी रचना और दूसरा दृश्य परिदृश्य होगा, और तीसरा पढ़ेगा तो उसी रचना का एक तीसरा परिदृश्य होगा। इसी तरह से निरंतर बहुत सारी कल्पनाएं जो हैं वो सृजित होती हैं। और निराला जी की आपने बात की तो निराला जी की एक कविता मुझे याद आ रही है, सखी वसंत आया भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया, किसले वसना नवल वय लतिका मिली मधु तरु अरी पतिका। यानी लता और तरु जो है, वृक्ष और लता जो आपस में मिले हुए हैं, उसका इतना सुंदर कोमल दृश्य बनता है उस रचना को पढ़ के। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वसंत ऋतु है और इस ऋतु में हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अपने आप ही अनुकूल हो गया है मौसम के, प्रकृति के। और आपने जिन रचनाकारों का नाम लिया है वो सच में अमूल्य है, और उनकी रचनाएं जो हैं हमारे जीवन के लिए सच में मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। उन रचनाओं को हम हमेशा याद रख सकते हैं और उनको जी सकते हैं, और जिंदा रहने की ताकत उनमें रहती है। तो ये तो रचनाकारों की बात हुई, देश के राष्ट्रवीरों की, राष्ट्रभक्तों की बात भी कर ली ही जाए, क्योंकि आप एक विचारशील हैं।
2: जी बिल्कुल, मैं लिखती हूँ जी, बिल्कुल मैं लिखती हूँ, और जब भी लिखने बैठती हूँ तो अपने माता पिता, मेरी बेटी, कुछ ऐसे रिश्ते हैं, अनमोल दोस्ती, और सबसे पहले मुझे अपने वीर सैनिकों की ही याद आती है कि इनसे ज्यादा किसी और के बारे में क्या लिखा जा सकता है। तो बहुत ही मेरी एक भावुक कर देने वाली रचना है, जो मैं जब भी पढ़ती हूँ या सुनती हूँ अपने जब पुराने वीडियोस, तो मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं रो भी देती हूँ।
0: संवेदनशील
2: तो इस तरह से है इस तरह से है कि कभी सोचा है कि हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे, कि कभी सोचा है कि हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे, और देश की रक्षा के लिए लाल रंग से नहा जाते होंगे, कि कभी सोचा है, और पिचकारी के नाम पे सिर्फ गोलियां आती होंगी, पिचकारी के नाम पे सिर्फ गोलियां आती होंगी, और गुब्बारों के नाम पे सिर्फ बम खाते होंगे, कि कभी सोचा है हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे, और याद तक नहीं होगा उन्हें कि कब परिवार के साथ होली मनाई है, याद तक नहीं होगा कि कब परिवार के साथ

0: आले को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, विवश कर दिया है। और सच में ये सोचना बहुत जरूरी है। और होली को आपने कहां जाके किस तरह से संयुक्त किया है, जोड़ा है और उसको अभिव्यक्त किया है, ये निर्लय ही बिरले ही लोग कर पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी ये रही और सच में यथार्थ का बोध कराने वाली, क्योंकि हम घरों में बैठ के पेन कागज पर कितने भी संवेदनशील हों सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन एक कठोर यथार्थ का सामना हमारे सैनिक, हमारे वीर सैनिक, हमारे राष्ट्र के रक्षक करते हैं। और इस ओर आपने सोचा और इसको बयां किया अपनी रचना के माध्यम से, ये बहुत ही खूबसूरत रचना है सच में। आगे बढ़ते हैं और हमने तो आपको देखा नहीं है, सिर्फ बातों में ही देखा है और बातों से बहुत सारा जो रूप स्वरूप और अभिव्यक्त होता है वो आईना है। तो कुछ और बताएं अपने बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, और कब से आपने लिखना शुरू किया। श्रोता सुन रहे हैं प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल और हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं सोनम उपाध्याय इंदौर एमपी से।
1: जी बिल्कुल, बचपन से ही लिखती हूँ मैं। माता पिता को बहुत ज्यादा साहित्य का बहुत ज्यादा ज्ञान भी था, मम्मी पापा को सुनते देखा घर में, संगीत वाला भी माहौल था। तो धीरे धीरे पता नहीं कब ऐसे चला, नहीं पता कि कब मेरा भी लेखन के प्रति, मैं लिखने लगी, पढ़ने लगी साहित्य। और पेपर कटिंग उस टाइम पे पेपर में रचनाएं आती थी, तो आज तक मेरे पास, मैंने संभाल के रखी है वो पेपर कटिंग्स। और जब सबसे पहले मुझे ऐसी मेरे मन में भावना आई कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने लिखना शुरू किया। शायद मैं सेवेंथ या एट्थ क्लास में थी उस समय, तो सातवीं आठवीं कक्षा से शुरू कर दिया था लिखना। जी फिर स्कूल में भाषण प्रतियोगिता है, कुछ वाद विवाद है, तो उसमें थोड़ा कुछ अपनी लाइंस ऐड कर दी। फिर जब युवा उत्सव हुए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो वहां फिर समय के साथ ऐसा अवसर हमेशा प्राप्त होता गया कि मेरी रचनाएं बाहर आती गई। और फिर लोगों से इतना प्यार मिला, तो असली हकदार जो मेरे क्या बोलूं मैं आपको, मेरे मित्र कह लीजिए, मेरे परिवार वाले कह लीजिए, समाज, तो हमेशा उन्होंने मेरी रचना को सराहा। तो मुझे वो प्रोत्साहन मिला कि मैं कुछ सही कर रही हूँ। और आज भी अगर मैं अपनी रचना नहीं लिखती हूँ कुछ नया, तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं या परिवार वाले हैं, तो वो पूछते हैं कि नया क्या लिखा है इस बार। तो धीरे धीरे धीरे बढ़ता गया।
0: तो वो पहली रचना जो आपने बड़ी संकुचाते हुए बोली होगी कि सुन के लोग क्या कहेंगे, वो यदि याद हो तो हम सुनना चाहेंगे।
1: हाँ, बहुत ज्यादा याद नहीं है, पर वो ऐसा था कि एक प्यारा निराला ख्वाब मैंने देखा था, एक ये थी। और इसके पहले मुझे ऐसा याद है कि मैंने माँ के बारे में लिखा था कि जिसे प्रथम बार देखा वो माँ थी, जिसे प्रथम बार छुआ वो माँ थी, ऐसा पूरा कुछ सीरीज है उसमें जी। और फिर उसका कंक्लूजन मैंने ऐसे किया है, जिसे पहली बार महसूस किया वो माँ थी, जिन्होंने पहली बार चलना सिखाया, जिन्होंने पहली बार अपना हाथ बढ़ाया वो माँ थी, और समय के साथ धीरे धीरे आभास हुआ कि वो माँ नहीं, माँ के रूप में ईश्वर की मुझ पे कृपा थी, ईश्वर की मुझ पे दया थी। ये पहली कविता
0: बहुत ही खूबसूरत रचना, वो पहली रचना जो अनुभूत करती है हमारे को ईश्वर के साथ जोड़ती है, इससे बड़ी और इससे घनत्व वाली कविता हो नहीं सकती। जिसमें माँ हो उसमें सब कुछ होता है, पूरी सृष्टि, पूरा संसार। तो जी, इसके अलावा आप कोई रचना हमें और सुनाना चाहेंगे?
1: हाँ जी, मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाती हूँ कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को, नारी शक्ति को समर्पित मेरी कविता, मातृशक्ति को समर्पित। कि आप खुद भी अगर सोचेंगे तो आपको कई ऐसी नारियां अपने जीवन में दिखेंगी, आपकी बहन, माँ, आपकी कई दोस्त, पत्नी, कोई भी, आपकी बेटी, की कितनी शक्ति है उनमें कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को जैसे कभी किसी ने संभाला ही नहीं, कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को जैसे कभी किसी ने संभाला ही नहीं। और इस तरह बेखौफ दौड़ रही है वो, और इस तरह बेखौफ दौड़ रही है वो जैसे उसके पैरों में कोई छाला ही नहीं। कि कितना जागी है वो, कि कितना जागी है वो तुम्हें रातों रात सुलाने में, कितना भागी है वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने में, और बिखरती रही ताकि तुम्हें जोड़ सके, और किसी में हिम्मत नहीं कि मेरी माँ का हौसला तोड़ सके।

0: और सुबह से जोड़ा बांधा है, सुबह से जोड़ा बांधा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जोड़ा बांधने का जो जो प्रक्रिया है कि वो अपने सारे सपने अपने आप को समेट के ना, मतलब ऐसे जैसे युद्ध पे कोई जाता है अपने आप को पूरा समेट के अपना सर्वस्व परिवार के लिए
1: अपनी सारी जी जो, जी उनको बांध लिया,
0: बिल्कुल बिल्कुल बांध लिया है कि सुबह से जूड़ा बांधा है, वो बाल बनाना भूल गई, इतना मुझे उलझ गई, कहीं आना जाना भूल गई, और बिन काले काजल के बिन उसकी आंखें काली है, और चूल्हे में तपी है वो, तभी आज मनी दिवाली है, और किया ही क्या है मेरे लिए, तुम तनक कर बोल गए, वो उस मंदिर की देवी है जहां तुम दीप जलाना भूल गए।
1: सच में रोने का मन है, सच में इतनी अनुभूति परख जो है आपकी रचना के, आपने सच में बिल्कुल स्पर्श किया है, छू लिया है माँ के दिल को, आपने सच में छू लिया है। और सच में ऐसा अनुभव, ऐसा ऐसी प्रेरणा जो है वो सच में दिल से ही आती है, और दिल से ही जागती है, और दिल से ही बोलती है। बहुत सुरीली सजीली रचना आपने हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाई। आप बात कर रही थी कि संगीत और साहित्य से आपके परिवार का रिश्ता रहा है, तो कहीं आप भी संगीत से जुड़ी कुछ गाती हैं? और
0: हाँ जी, मेरे परदादा जी के पास सारे वाद्य यंत्र हुआ करते थे, तो पिताजी ने मुझे बताया, हमेशा बताते थे वो, कि बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड, जिसको कहते हैं हम लोग, कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, कला साहित्य प्रकृति प्रभु हमारी हमारी संस्कृति हमारी हमारी ईश्वर में भक्ति जिसको कह लीजिए, आस्था कह लीजिए। तो जो एक सही इंसान जो होता है, जिसे कहते हैं ना कि इमोशनल फूल जैसे कहा जाता है कुछ इमोशनल लोगों को,
1: आजकल ये मुझे
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, हर आर्टिस्ट होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच्चा इंसान वही है जो भावनाओं से भरा हुआ है, और जो भावना से भरा नहीं है वो पत्थर है। तो सही इंसान होने की पहली शर्त है कि आप में भावनाएं हो। आप उसको कितना ही मैनिपुलेट कर दें आज के समय में, लेकिन भावनाएं आपको ईश्वर से, ईश्वर प्रदत्त है, वो आपकी कला ईश्वर प्रदत्त है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फूल्स हैं, तो बोलते ना कि भोले का भगवान होता है, तो भगवान सबसे पहले भोले लोगों को ही मिलने वाले हैं।
1: मिलने वाले हैं, बहुत सही, बहुत ही जी, बहुत सही बात कही आपने। और कौन से गीत संगीत सुनते हैं आजकल जो चल रहे हैं, पुराने वाले जो गीत हैं उसमें आप?
0: सुकून तो पुराने वाले ही जो बोल है, जो हाँ जी बिल्कुल रूट जिसको बोलते हैं, कि जड़े तो वही है हमारी, शास्त्रीय संगीत में मुझे पसंद है। बाकी पुराने जितने भी सारे गाने हैं हमारे, किशोरदा की आवाज ले लीजिए आप, लता जी ले लीजिए, तो वो तो रफी साहब, तो इनका तो मतलब कोई सानी ही नहीं है।
1: तो कभी कभी गुनगुनाती होंगे सारे गाने, थोड़ी सी दो लाइन आप गा के सुनाएंगे हमें?
0: मुझे ऐसा लगता है कि मैं गा अच्छा नहीं सकती हूँ।
1: नहीं, वो तो सबको लगता है, पर वो दो लाइन जो है जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो जरूर हम सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे कि आपकी पसंद संगीत में कैसी है, वो भी हमारे श्रोताओं तक पहुंचे।
0: कोशिश करती हूँ मैं
1: जी,
0: और मैं बहुत इसको गुनगुनाती हूँ जब भी मन होता है मेरा।
1: हाँ,
0: कोई किसी की मुस्कुराहटों पे हो नसा, किसी का दर्द मिल सके तो ले, उधर बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी के वास्ते होते मेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। जीने का जो दर्शन है, जीने का जो कला है, वो इस गीत के माध्यम से है, और इसीलिए आप एक अच्छी रचनाकार हैं, कवयित्री हैं, और संवेदनशील हैं प्रकृति को और उसके आसपास, जहां इन पांच तत्वों में हम जीते हैं उनको आप सच में स्पर्श करती हैं, हमारी सांसें उनको छूती हैं, और इसीलिए आप इतनी अच्छी रचनाएं लिखती हैं। तो
0: धन्यवाद,
1: एक रचना चलते चलते और हो जाए तो
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके माध्यम से अपनी ये कविता कई दिलों तक पहुंचा पाऊंगी, और आप ये समझ लीजिए कि ये वो कविता है कि ईश्वर आपसे क्या कह रहा है, कि आप कौन है, ये हर व्यक्ति के हृदय तक जाएगी। तो ईश्वर ये कहते हैं कि तुम असीम अनंत ऊंचाइयों वाला आकाश हो। कि तुम कौन हो? कि तुम असीम अनंत ऊंचाइयों वाला आकाश हो। कि तुम जीवन के अंधेरों को चीरता सा प्रकाश हो। कि तुम ज्ञान से, तुम कर्म से, तुम अपने मन मंदिर में श्री कृष्ण से और तुम अपने हाथों की लकीरों से कई आगे निकल चुका भाग हो। और तुम सुंदर चमकीले रंगों से लिखना अपनी किस्मत। तुम सुंदर चमकीले रंगों से लिखना अपनी किस्मत। हीरा हो तुम, हीरा हो तुम, हीरा हो तुम। सिर्फ जौहरी ही समझेगा तुम्हारी कीमत। और सुनिए कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम निज फल की इच्छा त्याग, सिर्फ कर्म ही करते रहना। कर्म ही तुम्हारा धर्म है, कर्म ही तुम्हारा कर्म है। तुम जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना, कर्म करते रहना।
1: अद्भुत अनुपम
0: सर, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत प्रेरणाप्रद है आपकी ये रचना। और सच में सारी रचनाएं और सारी बातचीत भी सुनने वाले का उत्साह, हौसला और ज्ञान में, उसके सुजान में वृद्धि करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगी अपने बारे में? यदि हमसे कुछ छूट गया हो तो आप बताना चाहें तो आपका वेलकम है।
0: बस यही संदेश मैं सबको देना चाहती हूँ कि इस दुनिया में जहाँ किसी को किसी के लिए वक्त नहीं, हमें सबके लिए वक्त निकालना चाहिए। और एक कविता ऐसे ही मैंने लिख दी थी, आधी आधी सी याद है मुझे, कि तुम समंदर से भी गर्जा मिलो। सो ऐसा था कि आप अपनी प्योरिटी मत छोड़िए, आप अपनी वास्तविकता मत छोड़िए। कितना धुआं धुआं, कि कितना धुआं धुआं, इस धुएं में निश्चल आसमा रहना तुम। इतने धुएं धुएं में निश्चल आसमा रहना तुम। और समंदर से भी अगर जा मिलो, समंदर से भी यदि जा मिलो तो भी नदी की पावन मुस्कान रहना तुम। और दिखावट, बनावट, छलावट वाली इस दुनिया में तुम वो बनना कि एक आदमी तुमसे हंसकर गले मिल सके, एक आदमी तुमसे गले मिलकर रो सके। कम से कम इतने तो इंसान रहना तुम, इतने तो इंसान रहना तुम। ऐसी एक कविता है मेरी,
1: बहुत बहुत
0: मुझे याद आ गई।
1: बहुत ही मानवीय धरातल को संभालती ये रचना है। और सच में हमें ऐसा ही बनना चाहिए कि हम बेबाक, बेलाग, बेलौंस किसी से मानवीय धरातल पर गले मिल सकें, हक कर सकें उसे, और
0: जी,
1: अपने सुख दुख को शेयर कर सकें। तभी तो मानव मानव के लिए है, और तभी ये संसार है, ये दुनिया है और ये कायनात है।
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगा। सोनम उपाध्याय नौमी हमारे साथ रही इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अभिव्यक्ति का आंचल। हम तो बीच में बताना ही भूल गए कि हमारे श्रोता क्या सुन रहे हैं, किस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद सोनम जी आपका।
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और इस खूबसूरत बातचीत के बाद आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग।

0: श्रोता सुन रहे थे प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल, और इस प्रोग्राम में हमारी आज की मेहमान रही सोनम उपाध्याय नोमी, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: स्वागत है दोस्तों आपका जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान के वीकली शो लफ्जों की गुजारिश में। मैं आपकी होस्ट रति भार्गव अपने आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के कलाकारों के साथ। एक जमाना था बहुत बहुत बहुत युग पहले, जब हमारे देश में लड़का और लड़की के बीच अपार्थेड से भी कट्टर सेग्रीगेशन था। मिलना नामुमकिन, इजाजत के बिना घर से निकलना नियायती मुश्किल, और इसीलिए बाय चांस भी ओपोजिट जेंडर की नाक हाथ कान आँख कुछ भी दिख जाए मोहब्बत अनिवार्य थी। केस इन पॉइंट, मेरे महबूब तुम्हें मोहब्बत की कसम, सर से बुरखे में ढकी लड़की की आंखें और तेरी मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, वॉज क्वाइट इनफ फॉर लाइफ लॉन्ग इश्मुश। उसके बाद जमाना बदला, सिनेमा बदला, थोड़े ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस और बढ़े। अमेरिका से चाचा जी कुछ इंग्लिश मूवीज के वीएचएस टेप्स जो लाते थे, ग्रीस से लेके घोस्ट से लेके टॉप गन तक सब देख ली, और दिमाग के सारी खिड़की दरवाजे खुल गए। तब तक माँ बाप हल्के प्रोग्रेसिव टाइप हो गए थे, या उनको होना पड़ गया था, तो सडनली इट वॉज ओके टू मीट अ फ्रेंड ऑफ द ऑपोजिट सेक्स फॉर कॉफी, स्वीट कॉर्न सूप 1/2 या सड़क वाली चाउमीन वगैरह वगैरह। पर तब भी ये तो तय था, ग्रुप में मिल रहे हो तो अलग बात है, मिक्स जेंडर फ्रेंडशिप काफी नॉर्मल सी बात हो गई थी तब तक, बट अकेले वन ऑन वन अगर मिल रहे हो तो फिर बेबी लोग बाबा लोग उस मुलाकात को कुछ खास मुलाकात कहेंगे। हमारे आज का एपिसोड है मुलाकात किससे कब कहां, ये बताने आ रहे हैं मेरे आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के खजाने से मेरे कोहिनूर। सुनते हैं हमारा आज का पहला नगमा संतोष जी और सीमा जी से।

लता मंगेशकर, खयाम, नक्श लैलपुरी है ना, क्लासिक बुलसाई, रोमांटिक रेट्रो हिट भी, मासूम भी है, विकेट भी है, मेलोडियस भी है, अपबीट भी है, जेंटल भी है, नॉटी भी है। उफ, सच सच बताइए, दिल पे हाथ रख के, बिना खुद से झूठ बोले, बिना वो सबसे अच्छा बच्चा वाला हेलो स्विच ऑन करके, बिल्कुल बिना किसी झूठ के, ये बताइए वो कौन सा चेहरा है जिसे आप सबसे पहले देखना चाहेंगे, वो कौन सा इंसान है जिससे आप सबसे पहले मिलना चाहेंगे, इस जिंदगी के भागम भाग से दूर भाग के। ओए हैंग ऑन, आई डिडंट से शुड मीट, मीट टू मीट, ऑट टू मीट और मस्ट मीट, आई सेड वांट टू मीट। मुझे भी पता है, जैसे ही हम अपने बायो बबल यानी कि इस मास से बिल्कुल दूर हट जाएंगे, अनिवार्य है हमें इन सब से मिलना, चाहे फिर वो क्यों ना हो, काम की खातिर, जिम्मेदारियों की खातिर, आउट ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, कंपल्शन। पर वो है कौन जिनसे सबसे पहले आप मिलना चाहोगे, हो सकता है मिलना मुमकिन भी ना हो या डेफर करनी पड़े दूसरी प्रायोरिटीज के आगे, पर दिल में कौन सा चेहरा है ये तो बताइए। आइए सुनते हैं अगला गीत, जय सरकार और पूर्णा की मधुर आवाज।

हमारी पूरी कोशिश रहती है कि चलो ड्राइव ना सही, एक फ्लाइट ही सही। अगर एक डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट की दूरी पे भी हो तो हम मिलने का पूरा प्रयास करते हैं। पॉइंट ये है, अगर मिलना मुनासिब है तो अधिकतर लोग वो एफर्ट जरूर करते हैं। एंड स्पेशली आफ्टर टाइम लाइक दिस व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड बाय आवर ओन मोर्टैलिटी, वी विल डेफिनेटली गो दैट एक्स्ट्रा माइल टू मीट द वन वी लव।

गाना सुना रहे थे आपको राहुल और गायत्री अपनी मधुर आवाज में। कीजिए कीजिए मिस कीजिए उन्हें जिनसे मिलने की इच्छा है पर क्षमता नहीं। क्या आप उसी सोच शंका शको शुभा में घुसे हुए हैं आप कि तब मिलेंगे ऐसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे, उनकी जिंदगी कहीं दूर और मेरी कहीं और। वैसे तो बातचीत हालचाल पूछना सब होता ही है दूर से, हैप्पी बर्थडे से हैप्पी दिवाली तक, कभी स्टिकर वाली विश तो कभी मोटिवेशनल फॉरवर्ड। फेसबुक से तो सब पता चल ही जाता है कि उधर सब ठीक ठाक है, उनके हाल अच्छे हैं, खुश हैं, मामला अंडर कंट्रोल है। तो फिर आप क्यों अंडर कंट्रोल है उस मुलाकात के लिए? वर्क फ्रॉम होम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, होम स्कूलिंग, न्यूज फीड, ऑनलाइन चैलेंजेस, कुकिंग क्लीनिंग, 50 मिनट्स वर्कआउट, ईट रिपीट, म्यूजिक एप्स, वेब सीरीज मूवीज, बिंजिंग, गेमिंग एप्स के बीच में भी उस मुलाकात का ख्याल आता है। सुनाने आ रहे हैं हमारा ये अगला गाना श्रीपद और विद्या अपनी सुरीली आवाज़।

वाह, ख्याली पुलाव तो पक्के बिरयानी बन चुकी है। मन है कि जा बसा है अनजान के नगर में, कुछ खोजता है पागल खोए हुए डगर में। इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बिचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। लिखा शैलेंद्र ने, लेकिन कोस आप रहे हैं कि हाउ डज दिस पोएट लिरिसिस्ट डू इट एवरी टाइम रीच इनटू योर हार्ट एंड क्रश योर इमोशंस इनटू इंक। सुनते हैं हमारा आज का ये आखिरी गाना कविता और अजय जी से।

रात का आज आया कैसे? ऐसा नहीं कि सबका सीक्रेट है या सबके मन में है, पर यह हकीकत है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस के समय हमारे जहन में कई बार ऐसी यादें, ऐसी बातें और ऐसे लोग आते हैं जो उन उम्र नहीं आते, नीचे कहीं मन की गहराई में दबे रहते हैं। और जब हम इतने मसरूफ होते हैं, हर वक्त लोगों की भीड़ में नहीं होते, क्यूबिकल से कैबिन, कैबिन से कॉफी मशीन, लिफ्ट से पार्किंग लॉट, पार्किंग से ट्रैफिक, इन सब एक्टिविटीज ट्रैप में नहीं होते, तो हम निहत्ते होते हैं खुद ही के सामने। कल की मुलाकात का वादा करते हुए आज इजाजत लेती हूँ मैं आपसे, रति भार्गव, अपने आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के कलाकारों के साथ।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देवगुप्ता और मेरे साथ है टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी मुस्कान जितनी खूबसूरत है उतना ही सुरीला है उनका सफर। उत्तर प्रदेश की नवाबी नगरी लखनऊ से लेकर माया नगरी मुंबई तक का सफर, एक सफल प्रोफेशनल, एक समर्पित गृहिणी और सबसे बढ़कर संगीत से दिल की गहराइयों तक जुड़ी हुई एक प्यारी सी गायिका। आइए जोरदार स्वागत करते हैं हम आज की विशेष अतिथि मुंबई से, मिनाली लाल जी का। मिनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो की स्टूडियो में। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा।
2: सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी एंड जगदीश जी, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आप लोग के संपर्क में आई, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अपने आप को, अपने बारे में, अपने संगीत के प्रेम को आपके सामने संपर्क दे सकती हूँ।
1: जी बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बेताब हैं इतनी प्यारी गायिका के गीत और उनके जीवन के सफर के बारे में सुनने के लिए। तो मिनाली जी, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो लखनऊ की गलियों से मुंबई तक का जो आपका खूबसूरत सफर रहा है वो कैसा रहा है? क्या कोई आज भी लखनऊ की कोई ऐसी याद है जो आपके दिल के बेहद करीब हो?
2: लखनऊ से मुंबई तक का सफर मेरे लिए तो एक सीख, संघर्ष और नए अवसरों से भरा रहा। लखनऊ ने मुझे संस्कार, अपनापन और बहुत कुछ सिखाया, जबकि मुंबई ने मुझे बड़े बड़े सपने देखने के लिए एक जगह दिया, उन्हें पूरा करने का एक हौसला दिया, और दोनों शहरों ने मेरी जिंदगी को एक अलग अलग तरीके से समृद्ध किया है।
1: जी,
2: अगर लखनऊ की सबसे प्यारी याद की बात करूं तो मुझे वहां का अपनापन, परिवार के साथ बिताया मेरा बचपन, मेरे कॉलेज डेज, शाम की गंजिंग की सैर जो वहां का बहुत बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ हर जगह हर प्राण में कहीं भी आप पूछेंगे तो ये गंज वर्ड जो है वो बहुत वहाँ पे फेमस है।
1: अच्छा अच्छा।
2: और वहाँ की तहजीब आज भी मेरे दिल में बहुत करीब है।
1: जी, लखनऊ के खान पान की भी बहुत तारीफ की जाती है, वहाँ के कबाब और वहाँ के पान
2: बहुत,
1: और एक वहाँ के शर्मा जी की हेरिटेज दुकान है, अगर मैं गलत
2: बिल्कुल
1: नहीं हूँ, जहाँ समोसे बड़े फेमस है।
2: लखनऊ में तीन चार चीजें जो खान पान, जिसको आपने अभी मेंशन किया है, मतलब चाट, लखनऊ की फेमस चाट जिसको आप समोसे बोलिए, एक शर्मा की चाट भी है
1: जी,
2: ये आज से नहीं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सॉरी पिछले 50 सालों से चल रही है।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
2: और एक मक्खन मलाई, ये आपने पता नहीं
1: जी,
2: हाँ, सुना है,
1: सुना
2: कि
1: है,
2: नहीं?
1: सुना है, बहुत सुना।
2: तो ये लखनऊ की, मतलब ये सर्दियों के समय की ही एक बनावट है जो गर्मी या बारिशों में और किसी सीजन में नहीं मिलेगा, एक और ठंड में, तो इसका मजा अलग है। और बिरयानी तो आप जानते हैं, कबाब और बिरयानी, टुंडे के कबाब, बिरयानी, ये सब तो वहाँ के बहुत ही मशहूर लजीज क्विजींस हैं।
1: जी,
2: तो इसके लिए तो मैं आपको, मैं बोलती जाऊंगी तो अंत ही नहीं।
1: तो लखनऊ के खान पान और मुंबई के खान पान में क्या फर्क लगा?
2: डेफिनेटली खान पान में अंतर तो है, मतलब मैं चूंकि लखनऊ से हूँ, मैं लखनऊ से, खाना बनाने का मुझे शौक भी है और हम लोग ने इतना कुछ खाया है, सीखा है, तो वो मैं अपना के मुंबई तो ले आई, बट यहाँ पे, यहाँ के खान पान में बहुत कुछ अंतर इसलिए है, बिकॉज सही बात बोलूँ तो मसाले यहाँ का मीडियम, यहाँ का जो तड़के हैं वो सब बहुत फर्क है। आप मतलब हम कुछ भी मीट, मटन, चिकन, कुछ भी हम यहाँ का प्रेपरेशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फर्क दिखेगा, जो हम मसालों का जो फ्लेवर, जो हम लखनवी जिसको वर्ड यूज करते हैं, वो आपको लखनऊ के मसाले से यहाँ बहुत अंतर दिखेगा,
1: बहुत अंतर दिखेगा। जी,
2: मतलब वो कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारा इसलिए मैं तो प्रेफर ही करती हूँ कि मैं अपने घर का ही बनाया हुआ खाऊं,
1: जी बिल्कुल, क्योंकि
2: मुझे
1: हालांकि हर एक प्रांत का एक अपना स्वाद होता
2: अलग
1: है,
2: रहता है। नो
1: पर
2: डाउट
1: जहां
2: नो
1: पर
2: डाउट।
1: हम बेस्ड होते हैं वहां के हम कुछ मसाले, कुछ यादें, कुछ बनाने के तरीके अपने साथ, हमारे
2: अलग ही
1: वो
2: है।
1: जी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और हर जगह हम अपने साथ ले जाते हैं।
2: बिल्कुल
1: बहुत खूब, तो इसी के साथ मीनाली जी हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: तो बातचीत को और आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला प्रश्न रहेगा मीनाली जी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और उसके बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में आप लगभग 13 वर्षों तक आपने एक लीडिंग भूमिका निभाई है, तो उस दौर को, उस दौर जो आपके जीवन को उस दौर ने सबसे बड़ा सबक क्या दिया?
1: मेरे लिए एयरलाइन इंडस्ट्री में बिताए लगभग 13 वर्ष एक नौकरी ही नहीं बल्कि जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण पाठशाला रही। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, नेतृत्व का वास्तविक अर्थ केवल टीम का नेतृत्व करना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लेना, लोगों के साथ लेकर चलना, क्योंकि मैं एचआर डिपार्टमेंट में थी और इस पर्टिकुलर विभाग में हर तरीके का इंटरेक्शन रहता है लोगों से
0: जी।
1: और लोगों को बीच में अपने टीम को कैसे विश्वास दिलाना, कैसे टीम वर्क सिखाना, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है मेरे लिए
0: जी।
1: एयरलाइंस तो आप जानते हैं कि बेहद ही एक चुनौतीपूर्ण जगह रहता है हमेशा,
0: बिल्कुल,
1: जहां हर दिन नई नई परिस्थितियां आती थीं। लेकिन हम एचआर के होके बहुत डायरेक्ट नहीं आते थे बट हमारा लोगों से संपर्क रहता था जो एयर होस्टेसेस थी या कस्टमर्स रिलेशंस थी, तो वहां भी मैंने बहुत डिसिप्लिन और समय का टाइम मैनेजमेंट, समय का सम्मान करना, कैसे कैसे टीम वर्क में लोगों के साथ रहना, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाया भी।
0: तो मीनाली जी, जैसे आजकल अक्सर न्यूज में हम पढ़ते रहते हैं कि फलानी एयरलाइंस में या फलानी फ्लाइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, उनको लैंड करना पड़ा, या जो एक बहुत ही दुखद भरी फ्लाइट थी जो अहमदाबाद से चली थी वो क्रैश हो गई थी, या फिर इस तरह के इंसिडेंट्स आजकल बहुत आते हैं, तो इसके साथ, ऐसे इंसिडेंट्स के साथ आपका बीइंग एन एचआर लीडर क्या इसमें आपका इंटरेक्शन रहता था?
1: सौभाग्य बोलिए, मतलब सौभाग्य से उस

0: तनख्वाह भी बराबर रहे या उनके रिक्वायरमेंट्स या उनके वो, मैं मेरा रोल कुछ उसमें ज्यादा ही था, तो वो पीरियड मेरा बहुत एक्सटेंसिव पीरियड रहा। अदरवाइज क्रैशेस, कुछ मिसमैनेजमेंट तो छोटे मोटे तो थे, बट दैट वाज
1: दैट
0: नॉट
1: इज ऑल
0: इन
1: अ पार्ट ऑफ
0: कंसिडरेशन,
1: लाइफ,
0: या
1: राइट।
0: उतना
1: इस
0: कंसिडर नहीं किया हमने।
1: जी, बहुत ही रोचक पूर्ण आपके किस्से हैं, और हम वापस इन किस्सों में आएंगे। इससे पहले हम आपका

0: मिनाली जी, एक सफल प्रोफेशनल से पूर्णकालिक गृहिणी बनने का निर्णय किसी के लिए भी आसान नहीं होता
1: जी।
0: इस बदलाव के दौरान आपने स्वयं को कैसे पॉजिटिव बनाए रखा, कैसे हमेशा सकारात्मक बनाए रखा?
1: सच कहूँ तो ये डिसीशन, ये निर्णय आसान नहीं था। एक लंबे समय तक प्रोफेशनल जीवन के जीने के बाद अचानक, यस यस, जिसमें से 8 वर्ष मैंने मुंबई में किया और बाकी मैंने लखनऊ से ही स्टार्ट किया था
0: जी।
1: तो ये सफर बहुत ही एकदम सडन, प्रोफेशनल जीवन को जीने के बाद अचानक घर पे और परिवार को समय देना अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। मुझे शुरुआत में मेरे को ऐसा लगा कि मेरी पहचान सिर्फ मेरे काम से जुड़ी थी हुई, क्योंकि हम इतने काम में लीन रहते थे और एचआर का काम ही इतना है कि वो एक टोटल इन्वॉल्वमेंट विद पीपल अराउंड, तो वो हमें लोगों के बीच में ही रहता था, तो मेरा समय इतना निकलता था कि मुझे कभी और कुछ सोचने का समय का ध्यान ही नहीं आता था। फिर ऑब्वियसली जब हमारी शादी हुई या हम मैरिज के बाद हम बॉम्बे आए, बच्चे हुए, तो बच्चों के साथ टाइम ज्यादा मिलना जरूरी हो गया, बिकॉज प्रोफेशन ऐसा है कि देखिए काम तो हर के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है,
0: बिल्कुल,
1: और जो झाड़ू तो सबका ही नेचर रहता है, मतलब हम फीमेल्स का हैबिट ही, हम लोग का आदत ही है कि कोई काम पकड़ो तो उसको एकदम अंजाम दे के रहो।
0: बिल्कुल,
1: तो मेरा
0: एक्चुअली डबल
1: लखनऊ से,
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना हमारी अगर हम प्रोफेशन
1: टोटली
0: में हैं
1: टोटली
0: तो। हाँ जी, हाँ जी।
1: तो फिर बच्चे छोटे एंड

0: उसी दौरान मेरे हस्बैंड को भी आउट ऑफ इंडिया प्लेसमेंट हो गया, तो ही वाज आउट फॉर ऑलमोस्ट 6 इयर्स, उनको बाहर रहना पड़ा. ही वाज इन दुबई. तो
1: अच्छा
0: फिर जॉब भी, और फिर मेरी एक बुजुर्ग, मेरी सासू माँ थी जो मेरे
1: जी
0: साथ
1: जी
0: रहती थी,
1: जी
0: तो फिर उनको देखना. और मेरे बच्चे छोटे ही थे, मतलब मेरा बेटा उस समय 9 साल का था, बेटी तो 5 साल की ही थी, तो
1: जी
0: बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मैनेज करना. फिर मेरा नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग था, तो मैंने, चूंकि हम एचआर वाले हैं, हम लोग का रिक्रूटमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो
1: जी
0: मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था. प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स बहुत सारे मेरे साथ अटैच थे, तो मैंने यही प्लान किया था कि मैं आफ्टर, मतलब अगर मैंने सबैटिकल लिया, मैंने छोड़ा बीच में, तो मैं वो कंटिन्यू करूंगी. बट कुछ ऐसा हुआ कि वो चीजें होते होते डेवलप कुछ महीने चली, बट फिर आगे नहीं हो पाया, तो फिर रह ही गया. और फिर आप जब आप परिवार के साथ रहते हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो एक अलग ही भूमिका हम निभा रहे हैं.
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो फिर, बट मुझे ऐसे बोलेंगे कि मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे मतलब अच्छे लोगों के साथ रहे कि जो मैंने सीखा था, तो मैंने अनुशासन भी सीखा था, कैसे निर्णय लेना सीखा था. तो ये मेरा गृहिणी होने पर भी मैंने ये भूमिका बहुत अच्छे से निभाई.
1: जी बिल्कुल
0: और फिर दोनों को मिलाकर एक बेहतर, एक मैं अपने बोल सकते हैं कि मेरे बच्चों पे मैंने जितना डाइवर्ट किया टाइम, तो मुझे आज अपने पर इस बात पे फक्र
1: फक्र
0: है कि
1: है।
0: मैं
1: जी जी जी
0: बिल्कुल
1: एक्चुअली जो
0: समझ.
1: हमारे बच्चे जब अच्छे सेटल हो जाते हैं, अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं, तो उससे बड़ा इनाम हमारे लिए कोई
0: यस
1: नहीं
0: यस
1: होता।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी,
0: बहुत
1: तो
0: बड़ी बात
1: एक
0: होती
1: ऐसा
0: है.
1: फिर दौर आया था जब कोविड ने हम सबकी
0: जी
1: जिंदगी तहस नहस कर दी थी, ऊपर से नीचे सब हिल गए थे।
0: पूरे पूरे पूरे.
1: जी, तो उस वक्त फिर आपकी लाइफ में क्या चेंज आया?
0: देखिए, मैं संगीत से तो हमेशा से जुड़ी हुई थी, ऐसा नहीं
1: जी
0: है कि मैं नहीं गाती थी. मेरे कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में, मतलब इनफैक्ट आई वाज, मेरे को बोला जाता था कि नाइटिंगेल ऑफ द स्कूल,
1: क्या
0: और
1: बात
0: ऐसे
1: है,
0: करके
1: क्या बात है।
0: तो बोला जाता था. तो लेकिन फिर पढ़ाई, फिर बहुत कुछ करते करते वो थोड़ा साइड ट्रैक हो गया. फिर ग्रेजुएशन आया, फिर हमने शादी हो गई, फिर हम छोटे छोटे, मेरे उस समय भी मैं प्रोग्राम्स करती थी, बट ये इस स्केल पे नहीं करती थी. कोविड
1: जी
0: के टाइम पे हम जब इतना लंबा सफर घर में रह गए, बाहर निकल ही नहीं पाए, तो हमें स्टार मेकर और स्म्यूल मिला. वो मेरी एक सिस्टर है, कजन सिस्टर, वो यूएस में थी,
1: जी
0: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था स्टार मेकर में, और हम गाते थे साथ में. बट वो धीरे धीरे, वो भी इसलिए कम होने लगा बिकॉज वो, उन लोग का टाइमिंग मैच नहीं होता था मेरे से, वो
1: जी
0: लेट नाइट वाले और हम दिन वाले. तो फिर स्म्यूल आया, स्म्यूल से भी मैंने एक इंटरेक्शन शुरू किया. मेरे सोसाइटी में बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो स्म्यूल में हैं, उन
1: जी
0: लोग ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, सिखाया. और फिर जब उससे सिलसिले से मैं ज्वाइन हुई, गाना शुरू
1: देर वॉज
0: किया,
1: नो लुकिंग
0: देयर वॉज नो लुकिंग बैक, अब
1: बैक।
0: तक चल ही रहा है. मतलब वो
1: जी
0: अब उसके वजह से मैं, मेरा एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट जाग गया. एंड प्रॉबेबली मैं ये बोलूंगी कि उससे लोगों ने मेरी, मतलब मेरे को पहचाना, और लोगों ने पहचाना मुंबई में, क्योंकि
1: जी
0: यहाँ पे
1: जी
0: भी मैं आज की डेट में लाइव शोज कंटिन्यूअसली, मेरा ये अभी ये महीना, नेक्स्ट मंथ पूरा पैक्ड है. मतलब आई हैव सो मेनी शोज
1: वाह
0: कमिंग अप,
1: वाह।
0: और कराओके शोज तो ऐसे नॉर्मल तो करती ही रहती हूँ,
1: जी
0: बट
1: जी
0: लाइव
1: जी
0: शोज विद म्यूजिशियंस करना, ये अभी मेरा बहुत फोटे हो गया है.
1: जी
0: किए
1: जी
0: मैंने
1: जी
0: बहुत सारे. मैं जनरली, लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि आप डालते नहीं हो पर वीडियोस, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ डाल दू, बट उसमें थोड़ा सा मैं पीछे रहती हूँ. बट अदरवाइज मैं, मेरे बहुत सारे मैं शोज अभी तक तो कर चुकी हूँ, मतलब
1: जी
0: एंड आई हैव ग्रोन विद दैट, वो एनवायरमेंट में मैं बहुत अभी आजकल एक्टिव हो गई हूँ,
1: बहुत खूब
0: तो
1: बहुत खूब।
0: यही चल रहा है बस अभी.
1: जी, तो इसी के साथ हम आपका एक और खूबसूरत गीत लेते हैं।

0: मीनाली जी, जैसे आपने बताया कि आपको तो लोग पहले से ही नाइटिंगेल का खिताब दे चुके थे और आप पहले से ही स्टेजेस पर गाती आई हैं। कोविड के दिनों में आपने कैरियोके ऐप्स को काफ़ी यूज़ किया और एक तरह से कैरियोके की वजह से कहा जाए तो आपके टैलेंट को पंख लग गए, है ना। तो
1: बिल्कुल
0: जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक स्म्यूल या किसी भी कैरियोके सिंगिंग का जो गेट टुगेदर होता है वो लाइव सिंगिंग से बहुत अलग होता है।
1: बिल्कुल
0: तो कोई आपके ऐसी खास याद अपनी लाइव परफॉर्मेंस के साथ जो अभी तक आपके दिल के साथ जुड़ी हुई हो और जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ?
1: हाँ, मेरा पहला लाइव शो था जिसमें मतलब मैंने स्टूडियो में पहले गाया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि द शो का जो शुरुआत में वंदना करते हैं
0: जी जी जी
1: वो आपको ही करना है। अब वो तो मैंने तो अभी शो स्टार्ट करना ही शुरू किया था, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि अभी शो का एक वंदना स्टार्ट करना। फिर वो वंदना भी मतलब मैंने कभी जीवन में सुना ही नहीं था, वो बिल्कुल नया था मेरे लिए।
0: जी जी
1: फिर वो एक चैलेंज, ऐसा एक दूसरा चैलेंज ये हो गया कि अब ये वंदना को पहले लर्न करो, फिर उसके पूरे पूरे सिस्टम में लाना है, क्योंकि मुझे गाना है उसके अंतरे बराबर होने चाहिए, क्योंकि लोगों ने सुना हुआ है बट मैंने बहुत बाद में, मैंने मतलब मैंने
0: अच्छा,
1: बहुत
0: तो आपने
1: लेटली
0: वो
1: सुना
0: अकेले
1: था।
0: गाना था?
1: जी,
0: हाँ जी।
1: तो हिच बहुत हो गया था, डर बहुत था, घबराहट बहुत थी कि कैसे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़े हरकतें थी थोड़े,
0: जी जी जी जी जी
1: लेकिन मुझे दो बार मतलब मैंने प्रैक्टिस स्टूडियो में अलग से उन्होंने करवाया मुझे कि नहीं आप पहले इधर गा के देख लीजिए कि आपको कैसा। फिर
0: जी
1: मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, आप रात दिन मैंने घर पे बहुत प्रैक्टिस किया, मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि अरे ठीक है वंदना है गाना है गा लेंगे वैसा, लेकिन वो नहीं हुआ मेरे साथ। मुझे काफी बार उसको सुनना पड़ा, फिर उसमें वो ट्रैक में भी कुछ प्रॉब्लम था तो मुझे बहुत सारा चेंजेस करवाना पड़ा, मतलब जो ट्रैक मेकर थे। फिर फाइनली जब आया है निखर के तो देवर अराउंड मेरा उस पर्टिकुलर शो में ऑलमोस्ट 500 प्लस लोग थे,
0: वाह।
1: और जब मैंने स्टार्ट किया जो अलाप करके फिर उसमें अंतरा, तो इतना अप्लॉड मिला मुझे, इतनी वाहवाही मिली उस पर्टिकुलर वंदना से, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। तो आगे जो भी शोज होते थे मुझे बुलाया जाता था कि नहीं पहले वंदना यही गाएंगी तो मुझे
0: दरअसल
1: वो
0: जो
1: अभी तक
0: श्रोताओं का,
1: बैठ गई।
0: हाँ, जो श्रोताओं का जो प्यार मिलता है वो एक कलाकार की
1: बिल्कुल,
0: असली जो खुराक
1: असली
0: होती है
1: पहचान
0: वही
1: है,
0: होती
1: एक्चुअली वही है,
0: है ना।
1: वही बात है।
0: बहुत खूब। तो अगर आपको अपने जीवन को
1: जी
0: किसी एक पुराने सदाबहार गीत के माध्यम से व्यक्त करना तो आप
1: हाँ हाँ
0: कौन सा गीत उसके लिए चुनेंगी और क्यों?
1: मैं तो बोलूंगी, देखिए मेरे हिसाब से अगर अगर आप सबसे पहले बोलेंगे तो लगेगा कि जिंदगी में, जिंदगी वाला जो एक शब्द है
0: जी।
1: तो वो जिंदगी एक सफर है सुहाना वाला जो गीत है,
0: यहाँ कल क्या
1: या
0: हो किसने जाना।
1: हाँ ये है, और प्लस जीवन से भरी तेरी आंखें, मुझे ये लगता है ये दोनों गानों में इतनी गहराई है, मतलब हर चीज दोनों गानों में ये समझा रहा है कि आप लाइफ में आपने क्या सीखा, कैसा सफर गुजर गया क्या गुजरेगा। वो एक आदमी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, जो हम कहाँ से किस लेवल से उठ के हम किस लेवल पे आज की डेट पे आए हैं,
0: जी
1: क्योंकि देखिए
0: जी
1: सपनों का तो कोई उम्र होती नहीं है, जीवन
0: नहीं।
1: में जिम्मेदारियां हमेशा रहेंगी, लेकिन हम थोड़ा सा समय जो अपने जुनून के लिए निकाल लेते हैं या उसको जिंदा रखते हैं तो वो जो खुशी या वो जो ऊर्जा हमको मिलती है वो, अब गाने तो कोई अनलिमिटेड है, उसके तो कोई सीमा ही नहीं है,
0: जी बिल्कुल। किसी एक गाने को नहीं हम चुन सकते बताने के
1: हम
0: लिए
1: नहीं
0: कि
1: बता
0: हमारे जीवन
1: सकते।
0: का सफर कैसा
1: बिल्कुल
0: रहा।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: लेकिन फिर भी ये दो गाने ऐसे लगते हैं मुझे कि ये बहुत मीनिंगफुल गाने हैं, बहुत ही इसमें बहुत मन से भरा हुआ
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल किसी का पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं
0: बिल्कुल
1: वही सोचती हूँ कि गाने का तो कोई अंत नहीं है। आप अपने, मैं तो जैसे मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मैं अपने इस शौक को पूरा कर रही हूँ, और भगवान की दया से साईं बाबा की तरफ से मैं, जो कि अब मैं यहाँ रह गई हूँ तो मुझे साईं बाबा पे बहुत विश्वास है, तो
0: जी
1: और गणपति बप्पा मेरे चूंकि
0: जी
1: हम घर पे भी अपने गणपति लाते हैं तो
0: लाते
1: उनकी
0: हैं।
1: कृपा से हम, मेरा जो अपना सफर चल रहा है भगवान करे वैसे ही मेरी उम्मीदें जैसे हैं, मैं चाहती हूँ कि हाँ मैंने बहुत उम्मीद नहीं रखा है कि मैं बहुत बड़ा कुछ फिल्म स्टार के रोल पे, वैसा वाला रोल तो नहीं होता है,
0: जी।
1: बट मेरा ये पैशन है जिसको मैंने जारी रखा है, और मैं जितना गा पाऊं अपने पैशन को निभा पाऊं इतना
0: जी
1: ही मेरा
0: मिनाली जी,
1: इच्छा।
0: देखा जाए तो हर कोई अपने अपनी जगह अपनी अपनी फैमिली में एक नायक या नायिका का ही रोल अदा कर रहा होता
1: डेफिनेटली, बिल्कुल
0: है ना
1: बिल्कुल।
0: जी। तो कार्यक्रम के अंत में क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगी, कोई प्रेरणादायक शब्द उन लोगों के लिए जो कि अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं?
1: देखिए मैं बिल्कुल जरूर बोलूंगी अपने श्रोताओं को कि देखिए सपनों को मत छोड़िए, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, और छोटे छोटे कदम भी एक बड़ी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं, जैसे मुझे आज यहाँ पे पहुंचाया है।
0: जी
1: और बस सबसे बड़ी बात है कि एक अपनी तुलना किसी और से मत करिए, मतलब
0: जी ये
1: अगर
0: बहुत
1: हमने
0: जरूरी है।
1: कंपेयर किया तो अपनी यात्रा और हमारी यात्रा और किसी और की यात्रा में बहुत अंतर है, तो इस तुलना को करके जीवन चलेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। तो अपनी खुशियों को अपनाइए, यदि यदि आपके मन में अच्छी सच्ची लगन है, विश्वास है, धैर्य है, तो रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं।
0: बहुत ही खूबसूरत संदेश मिनाली जी, आज
1: थैंक
0: आपने
1: यू।
0: अपनी सादगी, अपनी सकारात्मक सोच और संगीत के प्रति अपने समर्पण से इस बातचीत को बेहद खूबसूरत बना दिया। आपका
1: थैंक
0: बहुत
1: यू,
0: बहुत धन्यवाद कि आपने
1: बहुत
0: अपने
1: बहुत
0: जीवन के इतने
1: शुक्रिया,
0: सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा किए।
1: बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोग सबसे बात
0: जी
1: करके।
0: तो दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में अगर कोई चीज हमें फिर से मुस्कुराना सिखाती है तो वह है अपने दिल की आवाज को सुनना। और मिनाली जी ने ये साबित कर दिया है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। फिर मिलेंगे जश्न सितारा गीत गुफ्तगू के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रब राखा।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम आज के कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से जगदीश अरोड़ा साहब। वेलकम है जगदीश जी आपका इस प्रोग्राम में। आज कुछ खास करने जा रहे हैं जगदीश जी, कुछ अलग तरह के गीत, कुछ हटके और कुछ इनके गीतों के खटके। आपकी आवाज आपकी पहचान, जगदीश अरोड़ा, पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से।

तू है कभी जवा कोई तो है तेरा, तू ढूंढ ले उसे दिल दीवाने। तू है कभी जवा कोई तो है तेरा, तू ढूंढ ले उसे।

जी हाँ, ये सलाह दे रहे थे हमारे आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा पंजाब से। आपकी आवाज, आपकी पहचान और इस सलाह के बाद हवा क्या कहती है, हवा का रुख क्या है, आइए ये भी जान देते हैं। आपकी आवाज में, आपकी आवाज, आपकी पहचान।

हवाओं की बातें हवाओं से बातें, जी हाँ, हवाओं की बातें हवाओं से बातें बातें कर रहे हैं आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। और तेरी आंखों में क्या है वो भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। आवाज जगदीश अरोड़ा की।

इसमें मेरा कसूर क्या है सनम? आपने सुना हमारे आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा जी को, आपकी आवाज आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं आज के कलाकार प्रोग्राम।

आपकी आवाज आपकी पहचान आप सुन रहे हैं आज के कलाकार प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं जगदीश अरोड़ा पंजाब गोविंदगंज मंडी से, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं जगदीश अरोड़ा के कुछ हटके नए गीत।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज के कलाकार। हमारे आज के कलाकार रहे जगदीश अरोड़ा, पंजाब गोविंदगढ़ से। आपको जगदीश जी के गीत कैसे लगे हमें जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मातु गोद लेतु दशरथ की रानियां, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल है, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्याशंकर, गायत्री जगन्नाथन, आभा माथुर, शर्मिष्ठा सारंगी और स्वयं मैं लक्ष्मी बालाजी।

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठे खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठे खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाए तो एक चीज हमारे बीच स्वरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, एमडी त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मुंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
4: आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न तो कोई आरंभ है और न कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर भई अब जागो शंभू।